अपना जिस ना ही सोचन कदिए पिता को अपना आप ही लेखा संडिए जा रहना ही अत जगता कालित गारी भांडिए मंदा किसे ना के पढ़ अखर ए हो बुझिए मूर्खे ना लालुजिए मूर्खे ना लालुजिए।

जिन पटंदरदार गुजरते पले संसार इन्हें हो लगा रब से थी देखने बिचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज

0: आप गोए सेवा करे ताक्ष पाए मान, नानक जिसम लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा।
1: जो जी होए सो गए मुका गया, बीजे भिख मंगे अमृत देखो एहो महला दूजा। नाले आने दोस्ती कदे ना बैदास, जिहा जाने ते होर ते देखो को निर्जास। वस्तु अंदर वसमा वे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास। कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा।
0: नाल आने दोस्ती वडारू सोने हो, पानी अंदर लिख ज्यो जिसका थाओ ना थे हो महला दूजा।

0: एक ने ही दाता पुस्ति जो पाई है नानक सकरमात साहिब उठे जो मिले महला दूजा
1: एक ने ही चकरी
0: फोकस ना जाए नानक सेव कर दिया जिसे ती खसन समाय पड़ी नानक।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस 9870 किलो हर्ट्ज से बुधी रहा है सवाए आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट रिश्ते बुधी सकता है। प्रोग्राम शुरू थी चुका है, डिटेल्स को जनत रहें थोड़ी देर में तमाम भगत कलाम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम बुधंदा तैखा पोए तबसरो पेश कंदा पोए तमाम भगत जी से बुधंदा तेवी अमां भगत लछुराम ऐं भगत घनश्याम ऐं ॿियनि खे ॿुधंदा। न्यूज़ हेडलाइंस प्रोग्राम जे आख़िर में ब्रॉडकास्ट कई वेंदियूं या त असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कलाम साहब खे ॿुधूं।

ውህት ከነም ሳብጀኝ ስለባር አዋስ ሚቀላም ድረ ያካሽማን እጂ ስንት ሰርሳኝር በሻይ ታብስሮ ታይ ጁን በሰር ቸቢ ያንኪ ቡዳር ቢሃርቴ ባርቸ ፕሪዳንመንትሪ ሽሪ ነረንደር ሞዲ ਭਾਰਤ ਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤਾਈ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੌਰ 4399 ਦੀਆਂ ਆਫਿਸ ਮੇ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਖਾਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਮੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇ ਗਰੀਬਨ ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਖਾਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਮਾਣ ਜੇ ਵਿਭਿਗ ਦੇ ਲਾਏ ਗਰੀਬ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲਾਈ ਮੇ प्रधानमंत्री एक कमाते लगा है मानज बहबुक की मान के वजह में असर करें सबने शहर के लाजमी ए जरूरी सेवान जो लंग में असर कराएं तय करें इनमें हैर की गाल को तो मुल्क तमाम ही फैसलेदार ध्यान रखड़ कंपेशनेट सरवाई कर रहा है इन तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत जो लंबे अरसे खां चूंडल प्रधानमंत्री थी रहा है ऐतिहासिक माइलस्टोन 10 जून 2026 ते हासिल कर वियो या भारत जे चुनल लोकशाही जी एक अहम हासिलात है मुल्क सही फैसलो कंदे श्री मोदी सरकार के साल 2014 में हुकूमत में आंदो जो उन वक्त असन जी एक तसदद पूरी हालत में हुई उन वक्त हलंदड़ घोटालन ते ए तकरारन ते अवाम जो गुस्सो जाहिर थी रहो एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार उन ध्यान रखो तो 810 मिलियन मानन के मुफ्त में खाद खुराक ला राशन दिनों वालों राशन दिनों वाले तेरे खा अलावा 580 मिलियन मानन के मानी तो शुमार कंदे सदन जनधन बैंक खाता खोला गया इसके अलावा 160 मिलियन घरन के नल के जरिए पानी जो कनेक्शन दिनों वियो आयुष्मान भारत जेका के आलम जी वडी में वडी सेहत जी बीमा स्कीम है तेमें 120 मिलियन कुटुंबन के 5 लखे ताई मुफ्त इलाज दिनों पे वे प्रधानमंत्री बयान दिनों तो गुजरे 12 साल दौरान सरकार आवाम जे फायदे ए बहबूद के लाए भरोसे मंद कम करवाए प्रधानमंत्री ध्यान चुकाये तो खेस 140 करोड़ भारतन जी आशीर्वाद है श्री मोदी जा चुका सांस लगातार कोशिशों सबब आज मुल्क आलम भर में पैंजी का नई सुजाण पर कायम कई है बुनियादी ढांचे का वी करे डिजिटल इनकलाब ताई विकसित भारत जे दूरांदेशी के ए सपने के साकार करने लाए प्रधानमंत्री बीहर दोहराया है तो सरकार इन डिस में हर को मुमकिन कदम खणी रही है तैयारी सेवाओं सुठी हुकूमत ए खुशहाली पण शुमार है सरकार जे 12 साल जे हुकूमत नई दिल्ली में एनडीए प्रोग्राम कर मीटिंग में अलायंस के बेन घणन साथी ने हिस्सों वरतो वड़ा वजीर तैमें नायब सरबराह ए बया घणा ही शुमार हुआ इन गडजाणी में हलंदड़ तरक्याती प्रोग्राम ए बड़े दिन अचे जे प्रोग्राम जो जायजो पण वरतो वियो जैसा मुल्क साल 2047 ताईं तरक्की याफ्ता मुल्क बणबो प्रधानमंत्री के आलम भर में घणाई वादन जा न्यापा मिलिया दुनिया भर में सरबराहन अगवानन प्रधानमंत्री के संदस तब्दीली आनीदड़ हुकूमत लाए आदमी रखने लाए सलाह डेण लाए ए सभी के शुमार करण लाए खेस वादियां डिनी श्रीलंका के सदर श्री अरोड़ा कुमारा दस नायक प्रधानमंत्री के पैंजे लिखल एक खत में बधाई डिनियो ए यो माइल स्टोन बुधाए तो भारतीय जो पैंजी सरकार में केतरो नकीदो है ए आलम जी वडी वडी लोकशाही होने तहत पूरे आलम जो तहां जे सरबराही में अकीदो है पकवान ने जिनवा जे प्रधानमंत्री श्री जेम्स मारापे पैंजे एक शख्सी वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक रोल मॉडल ए सरबराही जो एक मिसाल करे कोठो है उन्होंने चयो है तो 200 मिलियन मानन के गुर्बत मां हटाए करे यह एक तमाम वड़ी हासिलत है ट्रिनिडेड ए टोबैगो जे प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद बिस्नर पिण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन मौके ते

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेश आहे भॻत जसम, अचो त सभ खां ॿुधूं भॻत लच्छूराम खे।

0: जो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करते हैं और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पुष्पा रानी मित्रा के गाए कुछ भजन। आपके साथ शांति रहे हैं बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, तबले पर प्रदीप महाराणा और सितार पर अकील अहमद। आइए सबसे पहले सुनते हैं स्वामी रायदास की रचना मूल हरि चंचल है गति मेरी, आवाज पुष्पा रानी मित्रा की।

संगीते का कार्यक्रम में आप सुन रही हैं पुष्पावली मित्रा के गाए भजन। आइए अब सुनते हैं कबीरदास की ये रचना।

गोविंद लीनु बोल। आइए अब सुनते हैं मीराबाई की रचना स्वर।

कुवेंडलिनो मूल। अगर आपने मीराबाई की लिखी ये पारंपरिक रचना सुनी। संगीतिका कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे पुष्पारानी मित्रा के गाए कुछ भजन। आपके साथ संगीत कर रहे थे बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, तबले पर प्रदीप्ता और सितार पर अकील अहमद। इसके साथ ही संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर आ गई हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। सुप्रभात, खमा घड़ी, नमस्ते और गुड मॉर्निंग आपके अपने पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम यानी कि गुड मॉर्निंग गीतों भरी। दोस्तों, जहां शब्द समाप्त होता है वहां संगीत शुरू होता है। कुछ मीठी चुनी हुई और बेहतरीन गीतों के साथ आज का हमारा यह खास सफर संगीत के नाम।

आने वाला पल जाने वाला है। जी दोस्तों, कितना सुंदर और गहरा संदेश देता है ये गीत। सचमुच समय कभी रुकता नहीं, हर पल हमारे जीवन में कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ जाता है। इसलिए हर क्षण को खुशी, प्रेम और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की फिक्र में आज की खूबसूरती को खो देना समझदारी नहीं। जो पल हमारे पास अभी है वही सबसे अनमोल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए इस नई सुबह का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करें, अपने सपनों को नई उड़ान दें, जीवन के हर पल का भरपूर आनंद लें और सुनते रहें गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ दोस्तों, संगीत के साथ पूरा दिन खिल उठता है। आज के सफर का आपने जो ये गीत सुना, उम्मीद है आपको तरोताजा कर गया होगा। और ये जो संगीत का जादू होता है ना दोस्तों, ये हर पल को खास बना देता है। जब हम खुश होते हैं तो गीत गाते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो भी संगीत ही हमें सुकून देता है, हमें ताजगी प्रदान करता है और हमारे गमों को भुलाने में मदद करता है। तो चलिए इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। बहुत ही प्यारे गीत और नगमे लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं संगीत की। संगीत हमारे जीवन में खुशियों की तरह है। चाहे घर का काम कर रहे हो, सफर पे हो या कोई और घर के काम कर रहे हो, अगर साथ में संगीत बज रहा हो हमारा मन पसंद, तो वो काम करने में और सुकून आता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा काम यूं चुटकियों में हो जाता है। जी हाँ, यही संगीत का जादू है। हर नई सुबह एक नई शुरुआत है दोस्तों। जो बीत गया वो कल था और आज की सुबह एक नई किताब है। तो इस नई सुबह को, इस नई किताब को ऐसा लिखें जो आप बाद में जब पढ़ें तो आपको बहुत खुशी हो। और संगीत के साथ साथ हम बहुत कुछ और यादें समझो सकते हैं, बहुत सारी यादें समेट सकते हैं और बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि संगीत में जादू ही ऐसा होता है। संगीत हमें हमारे मन को सुकून देता है। संगीत ऐसा है कि हम जो हमारा जो संगीत मनपसंद संगीत होता है उसको यदि हम सुनते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो आइए इसी सफर को जारी रखते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संगीत की। कहते हैं कि कभी मैं कोई तान छेड़ूं, कभी तुम गुनगुनाओ, ये जीवन संगीत बस यूं ही चलता रहे। संगीत में किसी को गाने का हुनर मिलता है तो किसी को सुनने का हुनर, दोनों ही भगवान की देन है।

हाँ दोस्तों, संगीत जब साथ में होता है तो हम अपनी ही धुन में होते हैं। हर सुर अपने अंदर एक एहसास लेकर आता है जो हर किसी के दिल में अलग तरह से बस जाता है। संगीत वही है जो खामोशी में भी कुछ कह जाता है।

दोस्तों, हर खूबसूरत गीत की तरह इस शो का वक्त भी पूरा होने जा रहा है, लेकिन संगीत का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां और मुस्कान लेकर आए। अच्छे संगीत को सुनते रहिए हमेशा और मुस्कुराते रहिए। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और सुकून भरा ये नगमा छोड़े जाती हूँ, अलविदा कहना चाहती हूँ। आप खुश रहिए और आपका आज का दिन खुशनुमा हो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा

0: पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माही के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

0: आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आरा मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
7: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिन्दुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रूपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान। समिति ने कहा, हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कड़ी खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरू। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
1: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारतीय एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी।
0: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरीन, कुवैत और उर्दू में जहां अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान की मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक़वामे मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौमीन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। लोकनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफर अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतादिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफे अव्वल पर नुमाया किया है कि जमीनी सतह पर कवानीन और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही समत में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। यह वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का। अब इसमें सुनते हैं राग जौनपुरी, कलाकार है उस्ताद जावेद अली खान। आपके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर जहीर अहमद और तबले पर अख्तर हसन।

Thank you.

Bye.

आप सुन रहे थे राग जौनपुरी, कलाकार थे उस्ताद जावेद अली खान। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पर जहीर अहमद और तबले पर अख्तर हुसैन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं उद्योग पत्रिका।

0: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। यह केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
0: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे

0: परिभाषित करेंगे, कहां कहां इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
1: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा होता है, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा है। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि प्रबंधन का जो बात है वो जीवन के हर पहलू में है, चाहे समय का प्रबंधन करना हो, चाहे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना हो, चाहे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को प्रबंधन करना हो, या जीवन का अपने आप में प्रबंधन का स्थान है सर।
0: लेकिन हेमेंद्र जी, आजकल के दौर में, आज इस भागम भाग जिंदगी में और सबको आगे और आगे निकल जाने की दौड़ लगी हुई है, इस दौर में सबको यही चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा मिले, तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है, इसे आप किस प्रकार देखेंगे?
1: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू ये है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फॉर्मेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से, अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेज की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते हैं।
0: तो एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए?
1: एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे मैनेजर को मेरे ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम जरूर एक बिजनेस स्कूल में भी ट्रेन करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, सबसे बड़ी बात है कि वो इनोवेटिव, नई सोच विकसित करे, लीक से हटके करे।
0: लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि नई सोच हमने विकसित तो कर ली, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें?
1: बहुत ही अच्छी बात है आपने कही, और वही चीज जो है आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया जैसे है, या एक हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार है, अगर आइडिया है, तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बन सकता है, अब इसमें कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। जैसे बड़े बड़े संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIT IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए, और अब Tier 2 Tier 3 सिटीज में, छोटे विश्वविद्यालयों में, इनमें भी एक कल्चर आ रहा है। और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा, तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा, तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं और सरकार कर रही है।
0: हेमेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं, शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है, और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आइडिया है, अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसे किस प्रकार मैनेज किया जाए?
1: ये आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट बात बोली है कि गांव की समस्याएं अलग है, शहरों की समस्याएं अलग है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अलग समस्याएं हैं। पर जब ये उद्यमिता का आइडिया आया या एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया आया, तो पहले हमने कुछ समय तक ये देखा कि ज्यादातर लोग जो है जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान निकला, जैसे ये टैक्सी के एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहां पर भी

0: कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग है, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया कहीं डिस्कस करे, फोरम पर डिस्कस करे और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई और वो आर डूइंग ग्रेट।
1: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए?
0: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती हैं, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी तब नई शुरुआत करते हैं, और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकते हैं।
1: हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन की जो कार्यशैली है, स्टाइल है, काम करने की जो शैली है, वो किस प्रकार से आज का जो डिजिटल युग है वो प्रभावित कर रहा है?
0: AI को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है, और प्रबंधन में आपने बिल्कुल कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
1: तो इसका मतलब हम ये समझे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब जगह ले रही है तो कुछ काम आसान हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है?
0: कुछ काम बहुत आसान हो गया है, पर इसके प्रति जो एक ये नेगेटिव माइंडसेट बन गया है कि ये जॉब ले लेगा, मुझे लगता है कि ये ओवरस्टेटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन आया तब भी एक डर था। हाँ, ये जरूर है कि AI का मोमेंटम स्पेक्ट्रम जो आ रहा है वो बहुत हाई है, और अब वही व्यक्ति सर्वाइव करेंगे जो AI को रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एडवांटेजेस तरीके से यूज कर पाएंगे। आप अगर ये कहेंगे मैं समय के बदलाव के साथ AI के साथ लिटरेट नहीं होना चाहता हूँ, मैं AI के कंधे के साथ कन्ना मिला के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो आप डिफरेंशिएटर ये बन जाएगा कि मैं AI को अच्छा यूज कर पाता हूँ, कोई और AI को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, AI में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे ये कहूंगा, हमें AI में भी ये समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ AI का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, AI का यूजर मार्केट नहीं बनना है, AI के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। पॉइंट है कि हमें देखना है कि हम AI की बात कर रहे हैं तो हम AI के यूजर हैं या AI के सर्विस प्रोवाइडर हैं।
1: तो कंप्लीटली हमें AI पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता है कि हमें AI पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम AI पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI रहेगा और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब AI को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और कब ये डेंजरस हो सके।
1: और आज जो है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है?
0: सोशल मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उद्यमों को, बिजनेसों को फायदा किया है। आज मेरा आइडिया है, प्रोडक्ट है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं एक्सेस है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मैं कैटर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट की नीड को कैटर कर पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया एक डबल एज्ड सोर्ड है, क्योंकि इससे मेरा रीच एंड कवरेज तो बढ़ गया, पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन सोशल

0: मीडिया, तो रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है,
1: ऐश से फर्श पे आ सकते हैं,
0: ऐश से फर्श पे आ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
1: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
0: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे खेलने से टीम नहीं जीत जाती है। देखिए, प्लेयर्स अगर अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही, स्टार्टअप में सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है या एक जो एंटरप्रेन्योर है जिसने फंड रेज किया है उसके करने से अच्छा नहीं चल रहा है। टीम वर्क एक नेसेसिटी है। परिवार को भी अच्छा चलाने के लिए सारे परिवार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास होता है, समाज को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है, देश को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है, उसी तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है।
1: हेमेंद्र डांगी जी, उसे समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होता है कि रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
0: टाइम भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज में जब हम बात करते हैं तो जनरली मेन मटेरियल, मशीन, मनी और आज की डेट में मैं कहूंगा इन्फॉर्मेशन। तो हम हिस्टोरिकली ये बोलते थे कि एम्स होते हैं, मेन मटेरियल, मशीन, मनी, पर आज की डेट में अब इसको मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम, क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी। व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट। तो उस टाइम को जो बेहतर मैनेज कर लेता है वो इतिहास रच लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो एक साधारण बन के रह जाता है।
1: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स है और प्राइवेट सेक्टर्स है, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों, और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
0: प्रबंधन की भूमिका दोनों में सेम है। ओनली थिंग इज जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को प्राइवेट में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरली मॉनिटर किया जाता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। एक समय पे इतना नहीं मैनेज किया जा सकता है, पर परिस्थितियां वहां पे भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस में एफिशिएंसी आ रही है, पर एक कल्चरल शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। पर अब जो देख रहे हैं हम, अब वो फर्क नहीं रह गया है।
1: तो उसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: उसका कारण यही है सर कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन इसीलिए आ रहा है कि अब जो है स्टेक होल्डर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब ओवरऑल जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही अकाउंटेबल होते जा रहे हैं और होना भी चाहिए, ये एक एफिशिएंसी का पैरामीटर।
1: हमारे देश की युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और सक्षम भी है, तो इसे प्रबंधन कौशल कैसे उनसे विकसित करवाया जा सकता है या फिर कर सकती है?
0: हमारी जो शक्ति है वो यही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। हमारी शायद एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है यूथ का जो बोलबाला है वो बहुत अच्छा है, और इस यूथ को ठीक से चैनलाइज किया जाए तो ये एक कीर्तिमान रह सकते हैं, और मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
1: प्रबंधन केवल एक सामाजिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि किसी भी संगठन की सफलता का आधार होता है, और प्रभावी प्रबंधन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना ये सुनिश्चित करता है, कार्यकुशलता को बढ़ाता है और संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण

भारत में यादावर्ज है, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का अब आगाज होता है।

आइए नजर डालें आज की मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबहगाही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे हम्द बारिए ताला और नाते रसूल। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम सुनिएगा। खबरें नश्र होंगी 9:50 पर और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में सुनिएगा गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम चर्चा का विषय है। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में फिल्मी नगमे नश्र होंगे और 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे ड्रामा बाजीराव पेशवा और मस्तानी। दिन में 12 बजे खबरें नश्र की जाएंगी। 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरान प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम होगा। आज का मौजू है सारनाथ। आलमी खबरें 1 बजे नश्र होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब पेशो खदमत है प्रोग्राम सुबहदाही। आज के प्रोग्राम में समात फरमाइए डॉक्टर माजिद देवबंदी से हम्द बारी ताला और नाते रसूल करीम।
1: उर्दू सर्विस के सामईन की खिदमत में मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी आदाब पेश कर रहा हूं, हमदे बारी ताला पेश करता हूं, समाअत फरमाएं।
2: हवा करे है बयां

आजाद होने का सपना देखता था। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़े तो उन्होंने कलम के साथ संघर्ष का रास्ता चुना और लिख दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों ने क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की चाह को और बढ़ा दिया था। जिन क्रांतिकारियों से विदेशी हुकूमत भयभीत रहती थी उनमें थे रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान जैसे वीर। इन्हीं वीरों ने 1925 में काकोरी ट्रेन लूटी, उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के संसाधन जुटाना था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपने साहस और देशभक्ति को कभी कमजोर नहीं होने दिया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई और ऐसे असंख्य राष्ट्र सेवियों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

0: भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपनी सेवा से समृद्ध किया। ऐसा ही एक नाम है कि सदानंद हेगड़े का। उन्होंने न्यायपालिका, संसद और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। 11 जून 1909 को जन्मे के एस हेगड़े एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और समर्पित शिक्षाविद थे। उनका जीवन सत्य, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत राज्यसभा सदस्य के रूप में की और 1957 में जब मैसूर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए तो उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। और हम स्मरण कर रहे हैं मराठी साहित्य और इतिहास जगत के एक अनमोल रत्न वासुदेव वामन शास्त्री खरे का। वर्ष 1859 में जन्मे खरे इतिहासकार, एक संवेदनशील कवि, प्रतिभाशाली नाटककार और प्रेरक जीवनी लेखक थे। उन्होंने अपने लेखन से इतिहास को जीवंत बनाया और समाज को अपनी विरासत से जोड़ने का काम किया। 11 जून 1924 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके शब्द और विचार आज भी ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश फैलाते हैं। लंबी दूरी के भारतीय तैराक मिहिर सेन को भी हम नमन कर रहे हैं। वो 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले पहले भारतीय थे और चौथे सबसे तेज तैराक बने, जिन्होंने ये उपलब्धि 14 घंटे 45 मिनट में हासिल की। वो एक कैलेंडर वर्ष 1966 में पांच महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। और इन्हीं महान विभूतियों को नमन करते हुए अब आपसे चाहेंगे आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न करने की अनुमति।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब से चंद ही लम्हों में खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से यह जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही समत में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशरक मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते ओडिशा केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म के नजरिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की

सबके लिए मुसावात और वकार शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की उमंगें यकीनन पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के भरोसे को तकवियत बख्शी है। जनाब मोदी कल शाम नई दिल्ली में वाकई भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 में उभरती हुई उम्मीद की किरण आज एक नए एतमाद की किरण में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने पहली बार इसका मुशाहिदा किया है कि जब हुकूमत सही नीयत के साथ चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया, जिससे यह जाहिर होता है कि हुकूमत की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और ये सही संत में गामजन है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे वक्त में कि जब दुनिया भर के बड़े ममालिक इक्तिसादी मसाइल से दोचार हैं, भारत ने साल 2025-26 में 7.7% की शरह तरक्की हासिल की। उन्होंने जनाब मोदी ने कहा कि 2014 से 2026 तक का सफर सिर्फ आदादोशुमार ही जाहिर नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसे भारत का सफर है जिसने बड़े अहदाफ मुकर्रर करके और आलमी अदम इस्तेहकाम के हालात में भी इन अहदाफ को हासिल करने की अथक कोशिश करके पहली बार अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाना शुरू किया। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली में एनडीए के कॉन्क्लेव में 35 सियासी पार्टियों के 75 मंदूबीन ने शिरकत की। नामा निगारों से बात करते हुए जनाब नवीन ने कहा कि एनडीए के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया और तारीखी संगे मील पर उन्हें मुबारकबाद दी और इसे मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। जनाब नितिन नवीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत विकसित भारत के नजरिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के वज़ीर-ए-आज़म के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़श्त 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई इकदाम किए हैं। गुज़श्त 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों को 5 लाख रूपये का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखती है, जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनअतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रजभूषण अग्रवाल के जेर क्यादत सनअती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज पर तबादले ख्याल किया गया। मस्कूरा ऐवान तिजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स के लिए बड़े मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत पेशावर खेलों के एक बड़े मरकज के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियों से भारत की उमंगों का इजहार होता है। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरीन, कुवैत और उर्दुन में जहां अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटे बाद
یہ امریکی

0: हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और कश्म जजीरे में धमाके होने की इत्तला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अकवामे मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारा ने इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुर्मुज के बंद होने का दावा किया है, जबकि अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाज बदस्तूर वहां से गुजर रहे हैं। ईरान के पासदारा ने इनकलाब ने यह भी कहा है कि उन्होंने ईरान पर अमरीकी फौज के हमलों के बाद कल आबनाए हुर्मुज में दो बहरी जहाजों को निशाना बनाया। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरला, माहे, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। इधर मगरबी राजस्थान में शदीद गर्मी के हालात रहने की पेशगोई की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज शुरू हो रहा है और 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के मैच अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप की तारीख में यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि साबिका टूर्नामेंट्स में 32 टीमें थीं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से यह जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही समत में आगे बढ़ रही हैं। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रूपये मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरक मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, ओडिशा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। पेशो खिदमत है अखबारे जरिए का प्रोग्राम शम्मी फरोजा।
2: ईमानदारी एक आला इंसानी सिफत है। अमानतदार होने के लिए किसी खास मजहब, किसी खास कौम या किसी खास मुल्क का होना जरूरी नहीं है, बल्कि हर इंसान अमानतदार हो सकता है। हर वो इंसान जिसकी फितरत में टेढ़पन नहीं होगा वो अमानतदारी को पसंद करेगा। यानी ये इंसानी फितरत है कि वो अमानतदारी को पसंद करता है और अमानतदारी न करने को नापसंद करता है। 6वीं सदी ईस्वी में कुरान और हदीस के जरिए इंसानों ने अमानतदारी का दर्स लिया और इसके नतीजे में एक ऐसा माशरा पैदा हो गया जिससे ज्यादा अमानतदार माशरा पूरी दुनिया में न कभी पैदा हुआ और न होगा। आमतौर पर हम लोग अमानत या ईमानदारी का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि कोई शख्स हमारे पास अपनी कोई चीज रखवाए और हम उसको पूरी हिफाजत के साथ रखें, फिर जब वो अपनी चीज वापस मांगे तो उसे लौटा दें। हमारे नजदीक बस इसी का नाम अमानत या अमानतदारी है। हालांकि अमानत एक बहुत वसी और फैला हुआ लफ्ज है। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जिस किसी का भी कोई हक हो उसको अच्छी तरह अदा करने का नाम ईमानदारी है। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म का हमारे ऊपर हक है कि हम उसकी हिफाजत करें। कुरान करीम का हमारे ऊपर हक है कि हम उसकी तिलावत करें और उस पर अमल करें। हमारे बाल बच्चों का हमारे ऊपर हक है कि हम उनके खाने पीने, ओढ़ने पहनने और अच्छी तरबियत करने की फिक्र करें। हमारे पड़ोसियों का हम पर हक है कि हम उनको कोई तकलीफ न पहुंचाएं। अगर हम दुकानदार या ताजिर हैं तो हमारे ग्राहकों का हम पर हक है।

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम चर्चा का विषय है।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर के जी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा

0: की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है। भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता, बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
1: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैगाम लगे, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली के प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
0: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्युनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं,

0: हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे वो हमारे महिला सेना के अधिकारी ही थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था, सरहदों में खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो बर्फबारी हो आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ हमारे सेना के साथ उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा ये रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह के आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई।

0: कैसे मिलेगी। मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व तो दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको

0: पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, आप हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते हैं, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी। देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इम्पोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसीलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेगा, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेगी, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी ज्वाइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की

0: के जो लोग हैं प्रवासी भारतीय हैं उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए निश्चित लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात देवानंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए।

0: और भारत के भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारे नशरियात जारी हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

तारायण और साथियों की आवाजों में तेरे नाम फिल्म से ये नगमा अभी आपने सुना। अब सुनिए सोनू निगम को, फिल्म है गरम मसाला।

थी सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की। अब सुनिए अगली पेशकश। आशिक बनाया आपने फिल्म से, आवाज है के की।

कुमार सानू की आवाज में ये नगमा भी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर। इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद का ये शुमारा अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब सुनिए जनाब MM राजेंद्र का तहरीर करदा ड्रामा, जिसका उन्वान है बाजीराव पेशवा और मस्तानी। पेशकश सरफराज अहमद की है।

0: जय
1: जय
0: महाराज अधिराज छत्रसाल की जय
1: जय
2: बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल की जय
1: जय
3: शेरे बुंदेला महाराज छत्रसाल की जय
1: जय।
4: आप सब लोग बैठ जाइए। ये तो आप जानते ही हैं कि हमने अपने जाबाज सिपाहियों की दिलेरी और आप सब की मदद से मुगल फौजों को शिकस्त फाश दी है और बुंदेलखंड और मालवा में अब कुछ अरसे के लिए अमन चैन रहेगा।
5: महाराज
4: कहिए मंत्री सियाजी, क्या कहना चाहते हैं?
5: महाराज आज हम सब बहुत खुश हैं, सारे बुंदेलखंड वासियों को आप पर फख्र है और वो सब आपके गुण गा रहे हैं। आपने अपनी बेमिसाल शुजात और बहादुरी से हम बुंदेलियों की लाज रख ली। महाराज हमारी सबकी यही प्रार्थना है कि आप जुग जुग जिए और बुंदेलखंड पर हमेशा आपकी छत्र छाया बनी रहे।
4: शुक्रिया सियाजी, मगर हम आप सबको ये बताना तो भूल ही गए कि मुगल फौजों पर हमारी ये फतह हमारे दोस्त बाजीराव पेशवा की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। उन्होंने हमारी भरपूर मदद की और मैदान जंग में खुद भी अपनी शुजात के जौहर दिखाए। वो एक बहादुर मराठा सरदार हैं। इस मौके पर हम उन्हें कोई खास तोहफा भिजवाना चाहते हैं। सियाजी आपका क्या ख्याल है?
5: महाराज आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बाजीराव पेशवा तो हमारे गहरे दोस्त हैं, उनकी बहादुरी से कौन इनकार कर सकता है। आप हुक्म फरमाइए, शाही खजाने से नायाब हीरे जवाहरात और दूसरी नादर एशिया उन्हें आपकी तरफ से तोहफे के तौर पर भिजवा दी जाए।
4: नहीं नहीं सियाजी नहीं, धन दौलत की तो उनके पास भी कोई कमी नहीं, हम तो उन्हें कोई नायाब तोहफा पेश करना चाहते हैं। खैर अभी तो दरबारी रक्कासा मस्तानी को बुलवाया जाए, हम इस मौके पर उसका रक्स देखने के लिए बेताब हैं।
5: अभी लीजिए हुजूर।
6: हुजूर
5: मस्तानी रक्कासा को दरबार में हाजिर किया जाए।
6: जो हुक्म।
7: बंदी महाराज की खिदमत में आदाब बचा लाती है और अगर आपकी इजाजत हो तो इस खुशी के मौके पर रक्स पेश करना चाहती है।
4: इजाजत है।

0: वाह मस्तानी वाह, तुम वाकई बाग कमाल रक्कासा हो। जी खुश कर दिया, परमात्मा ने तुम्हें लासानी हुस्न तो दिया ही है, फन्ने रक्स में भी तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। सच तो यह है कि इस जमीन पर तुम कुदरत का एक नायाब तोहफा हो। सियाजी,
1: महाराज
0: हमने सोच लिया, हम मस्तानी को ही तोहफे के तौर पर अपने दोस्त बाजीराव पेशवा को पेश करेंगे। मस्तानी, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं?
2: ये कनीज तो आपके दरबार में बहुत खुश है महाराज, जिसे आपकी नवाजिशें नसीब हो उसे और क्या चाहिए, मगर आपके हुक्म की तामील करना भी मेरा फर्ज है। आप में और महाराज बाजीराव पेशवा में क्या फर्क है? अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो खुशी से मुझे उनके दरबार में भिजवा दीजिए, उनकी शुजात के किस्से मैं भी सुन चुकी हूँ।
0: शाबाश मस्तानी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सियाजी,
1: महाराज
0: आप मस्तानी को हमारे सवारों की हिफाजत में बाजीराव पेशवा जी की खिदमत में तोहफे के तौर पर भिजवाने का इंतजाम करें। बेहतर हो कि आप खुद चले जाएं, हम उनको इसकी इतला आज ही भिजवा देते हैं।
1: जो हुक्म महाराज।

0: महाराज बाजीराव पेशवा की जय। महाराज बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के मंत्री सयाजी आए हैं, वो दरबार में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। उनके साथ रकासा मस्तानी भी है।
1: जाओ उन्हें इज्जत से यहां ले आओ, हमें राजा छत्रसाल से खबर मिल गई है, वो नृत्य की ही हमारा तोहफा है।
0: जो हुक्म महाराज।
2: महाराज अधिराज बाजीराव पेशवा की जय। मैं महाराज छत्रसाल की तरफ से मस्तानी रक्कासा को, जिसका सारे हिंदुस्तान में कोई जवाब नहीं, आपकी खिदमत में पहुंचाने आया हूं। महाराज मुझे फौरन वापस जाना है, आपकी इजाजत चाहता हूं।
1: सिया जी।
2: महाराज
1: आप महाराजा छत्रसाल जी को बताएं कि हम उनका तोहफा पाकर बेहद खुश हुए हैं और दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: जो हुक्म महाराज।
1: मंत्री जी।
0: महाराज
1: आप सिया जी को भोजन वगैरह करा के इज्जत से रुखसत करें।
0: जी महाराज।
1: अब दूसरे दरबारी भी हमें अकेला छोड़ दें। नृत्य की नहीं नहीं मस्तानी, अपनी नजरें उठाओ, हमें अपने बेपनाह हुस्न का नजारा करने दो। हमने तुम्हारे हुस्न और रक्स की बड़ी तारीफ सुनी है, मालवा और बुंदेलखंड में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी तुम्हारे हुस्न का डंका बजता है। हमें तो यह भी पता चला है कि मुगल हुक्मरान भी तुम्हें हासिल करने के ख्वाब देख रहे हैं। वाह कितनी हसीन हो तुम, जैसे चौधरी का चांद धरती पर उतर आया है। मस्तानी अब सिर्फ चंद लम्हों के लिए अपने रक्स की ही एक झलक दिखा दो, ताकि हम मस्ती के आलम में डूब जाएं।

0: तुम्हें दीवाना बना दिया। तुम ऐसे ही रक्स करती रही तो हम कहीं के ना रहेंगे।
1: महाराज, इस मामूली लौंडी की, इस कनीज की इतनी तारीफ, आप तो हमें शर्मिंदा किए दे रहे हैं।
0: मस्तानी, आज से तुम राज नर्तकी के तौर पर एक अलग महल में रहोगी और सिर्फ हमारे लिए रक्स करोगी।
1: इस बांदी को किसी महल में नहीं, अपनी निगरानी में किसी भी मकान में ठहरा दीजिए महाराज।
0: नहीं मस्तानी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाही बाग में जो हमारी आरामगाह है, तुम उसमें रहोगी। हमारा जब जी चाहेगा तुम्हें बुलवा लेंगे या तुमसे मिलने खुद चले आएंगे। वहां तुम्हारे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होगी।
2: हुक्म महाराज।
0: ये राजनर्तकी मस्तानी है, इन्हें ले जाओ और हमारी आरामगाह में इनके ठहरने का बंदोबस्त करो। और देखो, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ये जहां भी जाएंगी शाही पालकी में जाएंगी।
2: जो हुक्म महाराज।

0: काशी भाई, क्या तुम सो गई हो?
1: नहीं महाराज, जब आपकी ही आंख नहीं लगी तो मेरी कैसे लगेगी? मैं आपकी धर्म पत्नी हूं।
0: काशी भाई, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा है।
1: महाराज,
0: तुम हमारी रानी हो, खूबसूरत खूबसीरत। तुमने हमें बेपनाह प्यार दिया है, मगर हमने अपना प्यार तुमने और मस्तानी में बांट दिया है। मस्तानी ने न जाने हम पर कैसा जादू कर दिया है कि हम उसकी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गए हैं। काशी भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है, तुम हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे कसूरवार हैं।
1: ये आप क्या कह रहे हैं? जब आपका मन ही आपके बस में नहीं रहा तो इसमें आपका क्या दोष? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि आप मुझे भी ना भूलिएगा। आप मस्तानी के बगैर नहीं रह सकते तो शौक से उसके साथ विवाह कर लें। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाजत है। आप दोनों की मोहब्बत का चर्चा तो सारे महाराष्ट्र में हो रहा है। बदनामी से तो अच्छा है आप उसे अपनी दूसरी रानी बना ले। राजा को तो कई शादियां करने का अधिकार है। महाराज, मुझे तो ये भी खबर मिली है कि जैसे मैं गर्भवती हूं वैसे ही वो भी आपके बच्चे की मां बनने वाली है।
0: तुमने ठीक सुना है काशी भाई, उसके कोख में भी हमारा ही बच्चा पल रहा है। हम तो बेबस और लाचार हो गए हैं। हम तुम्हें भी बेहद चाहते हैं और मस्तानी को भी।
1: महाराज,
0: हम तुम दोनों के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। हमने तो मस्तानी की मोहब्बत में शराब पीनी भी शुरू कर दी है और ये लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मगर हम मस्तानी से शादी करके रुसवा नहीं होना चाहते। लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं। और सच तो ये है महारानी कि हम अब हुकूमत करने के भी अहल नहीं रहे।
1: मेरे सरताज, इतने परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब सो जाइए।

0: हर खास आम को इत्तला दी जाती है कि कल सुबह महाराजा धीराज के एक और बेटा पैदा हुआ है और उसका नाम शमशेर सिंह रखा गया है। इस खुशी के मौके पर महल से मिठाइयां, खाने और कपड़े बांटे जा रहे हैं। सब गरीब लोग महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर अपना हिस्सा ले ले।
1: अरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ जो महाराज के लड़का हुआ था, ये और बेटा कहाँ से पैदा हो गया?
2: भाई वो लड़का महारानी काशीबाई से था, वो तो युवराज है, उसका नाम राघोबा रखा गया था।
1: तो ये लड़का शमशेर सिंह कहाँ से टपक पड़ा?
3: अरे भाई मैं बताता हूँ,
1: तुम लोग नगर में रहते हो या नहीं?
3: महाराज ने एक मुसलमान नर्तकी मस्तानी को अपनी रखेल बनाकर अपने महल में जो रखा हुआ है, ये उसी पाप का फल है। शमशेर सिंह उनका नाजायज बेटा है।
2: भाई महाराज का ऐसा अपमान ना करो, वो तो मस्तानी से सच्चा प्यार करते हैं। ये बेटा भी महाराज का ही खून है और उनका ही माना जाएगा।
3: नहीं हरगिज नहीं, इस बेटे को जिसे एक मुसलमान नर्तकी ने जन्म दिया है, हम महाराज का बेटा नहीं मान सकते। ये हमारे धर्म और हमारी मर्यादा के खिलाफ है। चलो हम सब राजपुरोहित के पास चलते हैं।
2: हाँ। लो लो राजपुरोहित तो आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, चलो उनसे पूछ लेते हैं।
3: राजपुरोहित जी प्रणाम।
4: प्रणाम नगरवासियों, क्या समस्या है?
1: हम महाराज के दूसरे लड़के शमशेर सिंह को राजकुमार नहीं मानेंगे।
3: वो एक मुसलमान औरत से उनकी नाजायज औलाद है।
4: बात मुसलमान औरत से नाजायज औलाद की नहीं है, मैं इस समस्या में हिंदू मुसलमान की बात उठाना भी नहीं चाहता। मस्तानी की मां मुसलमान थी लेकिन उसका पिता हिंदू था। हिंदुओं में वंश पिता से चलता है, मस्तानी हिंदू हो या मुसलमान इससे अंतर नहीं पड़ता। मेरा तो ये विचार है कि यदि उसे महाराज रानी बनाकर यानी विवाह करके महल में ले आते तो शमशेर सिंह के भी वही अधिकार होते जो दूसरे बेटे राघोबा के हैं। आप सबको एक बात और बता दूं कि महाराज ने मुझे बुलाया था, वो दोनों बेटों को जनेऊ पहनाने की रस्म करना चाहते थे। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा और महल में ये रीति केवल राघोबा की होगी। आप लोग चिंता न करें, महाराज चाहे मेरा सर कटवा दे, मैं धर्म और न्याय के खिलाफ उनका साथ नहीं दूंगा।
5: राजद्रोही की जय। राजद्रोही।

0: जाएंगी, मगर मैंने उन्हें समझा दिया था। यकीन मानिए मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए महाराज, आपके मुखालिफ अब आपके अपने राज्य में पैदा हो गए हैं, और सुना है कि मुगल फौजें भी आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर हमला करने वाली हैं। खुदा आपको हर बला से महफूज रखे। आप मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़े ये मैं हरगिज नहीं चाहती। आप नहीं जानते मैं आपको कितना चाहती
1: हूँ।
2: महाराज मैं इस वक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ।
1: बोलो सेनापति, क्या बात है?
2: महाराज मुगलों ने हमारी सरहद पर हमला कर दिया है और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी फौजें भी तैयार हैं। मैं आपको एक खबर देने और फौजों को कूच करने के लिए आपका हुक्म लेने हाजिर हुआ हूँ।
1: ठहरो सेनापति, हम भी मैदानी जंग में तुम्हारे साथ चलेंगे। प्यारी मस्तानी हमें रुख्सत दो।
0: मेरे सरताज, खुदा करे आप सुरखुरू होकर मैदानी जंग से लौटे। खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।

0: दरबान परे हटो और हमें अंदर जाने दो, वरना तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा।
1: मगर भाई तुम हो कौन और क्या चाहते हो? और फिर ये तो महाराज की नर्तकी का महल है और वो सो रही है।
2: नहीं दरबान, जब मेरे सरदार मैदान जंग में हो तो मेरी आंख कैसे लग सकती है? ये घुड़सवार कौन है और क्या चाहता है?
0: बीबी, मुझे महाराज ने भेजा है, आपको उन्होंने फौरन बुलाया है, वक्त कम है, आप जैसी हैं चली चलिए, महाराज सरहद पर अपने खेमे में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, आप मेरे घोड़े पर मेरे पीछे बैठ जाइए।
2: मैं खुद घुड़सवारी और तलवार चलाना जानती हूँ और अपने घोड़े पर चलूंगी, मगर अपने जिगर के टुकड़े शमशेर सिंह के बारे में क्या फरमाया है उन्होंने? वो सो रहा है, क्या उसे भी साथ जाना है?
0: आप उसे किसी कनीज की निगरानी में छोड़ दीजिए, महाराज ने कहा है कि आप मेरे घोड़े पर मेरे पीछे ही बैठ कर आए और अपने चेहरे पर नकाब डाल लें ताकि किसी को पता ना लग सके कि आप उनसे मिलने जा रही हैं।
2: चलो, जैसा महाराज ने कहा है वही करती हूँ। चलो भैया, तुम्हारे घोड़े पर ही बैठ जाती हूँ, चेहरे को अपनी चादर से ढक लूंगी। मुर्खा छोड़े तो एक मुद्दत हो गई है,

0: ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो सतारा का कला मालूम होता है। सालेम, क्या तुम मुझे धोखे से यहाँ लेकर आए हो?
1: हाँ हाँ मस्तानी, हमने महाराजा की गैर हाजिरी में तेरा अगवा किया है। अब तू इस किले में हमेशा के लिए कैद रहेगी। हम महाराज के मुखालिफ हैं और हमने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। तू नहीं, महाराज की जिंदगी अपने हुस्न फरेब के जाल में फांस कर खराब की है। वो अब एक नाकारा राजा है। चल दाखिल हो इस किले में और अपने किए की सजा भुगत।
0: भाई सुनो, मेरे लिए तुम इतना खाना न लाया करो, मुझे अब भूख कहाँ लगती है। इस कोठरी में तो वैसे ही दम घुटता है।
2: आप तो

0: क्या तुम उसे मेरे पास ला सकते हो?
1: दीदी, रहमदिली सिपाहियों में कहां होती है? इस किले में आपको महाराज के मुखालिफों ने बंद किया है और यहां उन्हीं के सिपाही मौजूद हैं। वो शाम से सिपाही इधर आ रहा है, बड़ा मर्दूद और लालची है। अच्छा, मैं चलता हूं, मैं चलता हूं।
0: भैया सलाम।
2: बीवी मस्तानी, तुम तो रानी हो और मैं मामूली सिपाही। मुझे तुमने भैया भी कहा और सलाम भी किया। सलाम तो मैं करता, लेकिन हम सिपाहियों को कैदियों को सलाम की इजाजत नहीं है। कोई तकलीफ तो नहीं बीवी?
0: भैया, कोई महाराज की खबर हो तो बताओ।
2: हमारे पास तो बीबी उड़ती उड़ती खबर आती है, झूठी होती है या सच्ची है ये तो राम जानता है। पर सुन रहे हैं कि मुगलों को तो महाराज ने हरा दिया है।
0: हाँ?
2: लेकिन खुद यहाँ से 30 कोस परे अपने खेमे में बीमार पड़े हैं।
0: क्या?
2: बड़ा तेज बुखार बताते हैं। उधर राजधानी में भी उनके खिलाफ बगावत ने जोर पकड़ लिया है।
0: अल्लाह,
2: हालात उनके अब अच्छे नहीं है।
0: भैया, मेरा एक काम करोगे?
2: बोलो बीबी।
0: मुझे सिर्फ चंद घंटों के लिए कले से बाहर जाने दो।
2: हाँ?
0: मेरे लिए फसील के बाहर एक घोड़े का इंतजाम भी कर दो। मैं वादा करती हूँ कि महाराज को देखकर यही वापस आऊंगी और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी।
2: बड़ा जान जोखम का काम है। ना बाबा, ना मुझसे ना होगा, इतना खतरा मैं क्यों मोल लूं?
0: अपनी बहन की खातिर भैया, मेरे पास ये 2 हीरे की अंगूठियां हैं और ये हीरे जवाहरात के कंगन हैं।
2: हीरे?
0: लो, इन्हें तुम रख लो, बेचोगे तो माला माल हो जाओगे।
2: हीरा? खैर, रात के 3 बजे तैयार रहना, मैं चोर दरवाजे से तुम्हें ले जाऊंगा। बाहर निकलते ही तुम्हें घोड़ा भी बंधा हुआ मिलेगा।
0: शुक्रिया भैया। भाई राहगीर, जरा रुकिए।
1: बोलो।
0: मैं एक मुसीबत ज़दा औरत हूँ और रातों रात चलकर बाजीराव पेशवा के पास फरियाद लेकर आई हूँ। सुबह हो गई है मगर महाराज का पड़ाव कहीं दिखाई नहीं देता। तुम्हें कुछ पता हो तो बता दो भाई।
1: बीबी, मुझे तो पता नहीं है। ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, वो सामने घोड़े पर सवार इधर आता हुआ कोई फौजी मालूम होता है, उससे पता लग जाएगा। भैया, ये औरत राजा के खेमे के बारे में पूछ रही है, उनके लिए अपनी फरियाद लेकर दूर से आई है। भैया, तुम्हें कुछ पता हो तो बता दो।
3: महाराज का खेमा तो यहाँ से सिर्फ 5 कोस पर इसी रास्ते पर है।
1: अच्छा।
3: मगर अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं।
0: हा?
3: महाराज का तो कल शाम देहांत हो गया और उनकी मैयत आज राजधानी ले जाई जा रही है। यही शोक समाचार देने के लिए मैं पुणे जा रहा हूँ। मरते दम तक अपनी महबूबा मस्तानी को पुकारते रहे। अच्छा, चलता हूँ।
0: खुदा, ईश्वरी, तूने क्या किया? मेरे मिलने से पहले मेरे सरताज को उठा ले। मेरे मौला, मुझे भी अब अपनी पनाह में ले ले। मैं उनके बगैर अभी एक पल नहीं जी सकती, नहीं जी सकती।
3: अरे अरे, क्या ये औरत तो गिर पड़ी? शायद रात भर भूखी प्यासी सफर करती रही है। भाई भाई, जरा सुनना, जरा पानी लाना। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये तो खत्म ही हो गई।
1: अरे हटो भैया, हटना हटना पड़े को जरा सा।

0: अरे मैं इसे पहचान सकता हूँ, ये तो मस्तानी नर्तकी है, महाराज की प्रेमिका। हाँ, ये महाराज की प्रेमिका है, वही है।
1: तुम ठीक कहते हो, ये महाराज की महबूबा और दूसरी रानी मस्तानी रक्कासा ही है। इस दीवानी ने आखिरकार महाराज की मोहब्बत में अपनी जान भी दे दी। मस्तानी कोई मामूली औरत नहीं थी भैया, इसे तो सब लोग प्रेम की देवी

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब एम राजेंद्र का तहरीर करदा ड्रामा बाजीराव पेशवा और मस्तानी। पेशकश थी प्रेम वोरा की और मुआविन थे सरफराज अहमद। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज सिटबेलो पर हमले के तनाजुर में अमरीकी सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर को तलब किया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि बुल्गारिया के साथ भारत के ताल्लुकात तवील अरसे से कायम मजबूत रवाबित हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 फीफा वर्ल्ड कप आज रात शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का उनके नए ख्वाहिशात और पैगामात के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। उधर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक अजीम शख्सियत करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि जनाब मोदी एक मजबूत, सेहतमंद और दानिशमंद लीडर हैं और उनके लिए आने वाले कई साल इसी तरह की कामयाबी और अजमत के रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखबा पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पंडित नेहरू का दौरे हुकूमत 4398वें दिन का था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399वें दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC अपने मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है, जिससे रियासत की इक्तसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनअतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की जेर क्यादत सनअती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज पर तबादले ख्याल किया गया। मजकूरा ऐवान तिजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मदद मिल सकती है।

0: भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, नाहे, उड़ीसा, मोहिनी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। इधर मगरबी राजस्थान में शदीद गर्मी के हालात रहने की पेशगोई की गई है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स के लिए बढ़ते मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया। कल नई दिल्ली में मुनक़िदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। भारत में ओमान के साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज सेटबेलो पर हमले के तनाजुर में अमरीकी सफारतखाने के नाजिमुल उमूर को तलब किया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एजय शंकर ने कहा है कि बुल्गारिया के साथ भारत के ताल्लुक तवील अरसे से कायम मजबूत प्रभावित हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब पेश खिदमत है फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम। दिल सुर मेरा तुम्हारा।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बुद्धा मिल गया। इससे पहले आपने सुना एक फूल दो माली, फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म है सीआईडी।

मिलन फिल्म का नगमा भी आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म है तलाश।

0: फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है सारनाथ।
1: हिंदुस्तान का कौमी निशान जिस चार शेरों की तस्वीर है और नीचे के हिस्से में एक चक्र नजर आता है, सारनाथ के अजायब घर में महफूज अशोक के अहद से मुतालिक संतराशी के एक नमूने से माखूज है। ये कौमी निशान बुद्ध मत के अकाइद में मौजूद इंसानी रवादारी और बाहमी रफाकत के एहसास को पेश करता है। सारनाथ बनारस से चंद मील के फासले पर वाक़ है। यहाँ महात्मा बुद्ध के अहद की बाज अहम निशानियां मौजूद हैं और बुद्ध मत के कई अहम मंदिर हैं जिनमें इबादत के लिए दुनिया के दीगर ममालिक से बेशुमार अफराद सारनाथ आते हैं। सारनाथ महात्मा बुद्ध की जिंदगी और शख्सियत नीज बुद्ध मत में खुसूसी अहमियत का हामिल है। बौद्ध गया में ज्ञान हासिल करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने अकाइद की तबलीग के लिए सफर शुरू किया था और उनका पहला पड़ाव सारनाथ में हुआ था। इसी मकाम पर महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का पहला प्रचार किया था और ऐलान किया था कि उनका मसलक म्याना रवि का मसलक है। यही म्याना रवि और रवादारी हमारी तहजीब का मिजाज है और हमारी तारीख के तमाम नुमाया किरदारों में यही म्याना रवि कारफरमा है। सारनाथ को अमन आश्ती और रवादारी का महवर और गहवारा कहा जाता है। यहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला खुतबा देते हुए कहा था, भिक्षुओं दो तरीके हैं एक दूसरे की जिद, जिनसे उस शख्स को पहचानना चाहिए जिसने दुनिया को तज दिया है। एक तो वो जिंदगी है जो लुत्फानंदोजी के लिए वक्फ कर दी गई हो और दूसरी वो है जो नफ्स को ईजा पहुंचाने में गुजरे। महात्मा बुद्ध ने त्याग और जिंदगी में रवादारी के तस्वुर को बयान करते हुए अपने चेले भिक्षु सोन को नसीहत करते हुए एक नहायत लतीफ मिसाल के जरिए समझाया था, क्यों सोन, जब तुम दुनियादार थे भिक्षु नहीं थे, उस वक्त तुम्हें सितार बजाना बहुत अच्छा आता था। सच है हुजूर। क्यों सोन, जब तुम्हारे सांस के तार बहुत कस जाते थे तो क्या उनसे कोई सुर निकलता था? क्या सांस इस काबिल होता था कि बजाया जा सके? जी नहीं हुजूर। क्यों सोन, जब तुम्हारे सांस के तार बहुत ढीले होते तो क्या उनसे कोई सुर निकलता था? क्या सांस इस काबिल होता था कि बजाया जा सके? जी नहीं हुजूर। और क्यों सोन, अगर तुम्हारे सांस के तार न ज्यादा कसे होते न ढीले बल्कि उतने ही खिसे होते जितना के चाहिए तो सितार से कोई सुर निकलता था, क्या वो इस काबिल होता था कि बजाया जा सके? जी हां हुजूर। इसी तरह सोन, बहुत सख्त कोशिश करने से तबीयत पर ज्यादा जोर पड़ता है, बहुत कम कोशिश करने से मस्ती पैदा होती है। इसलिए सोन, तुम्हें चाहिए के इत्तेदाल के साथ जिद्दोजहद करने में साबित कदम रहो, कोशिश करके अपने ज़हन कुव्वतों में हमवारी पैदा करो। म्याना रवि का ये दर्स सारनाथ के खुतबे के नाम से मशहूर है और इस खुतबे का मतन बुद्ध मत की किताब धम्मपद में शामिल है। सदियां गुजर चुकी हैं, रवादारी का ये दर्स तारीख के मुख्तलिफ अदवार से गुजरता हुआ नए हिंदुस्तान के जमहूरी और सेकुलर मिजाज का हिस्सा बन चुका है और यही म्याना रवि दुनिया के दीगर ममालिक से हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बुनियाद है। इस म्याना रवि की बुनियाद सारनाथ के मकाम पर पड़ी थी। ये मकाम आज भी कायम व दायम है।
0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजूद था सारनाथ। तहरीर थी महमूद हाशमी की और रावी थे एस एम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मैं सर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब पेश है कुछ और फिल्मी नगमे।

0: वेलकम फिल्म का नगमा, अभी आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाजों में। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज सेट्टो बेलो पर हमले के तनाजुर में अमरीकी सफारतखाने के नाजिमुल उमूर को तलब किया। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि बुल्गारिया के साथ भारत के ताल्लुकात तवील अरसे तक कायम मजबूत रवाबित हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज, कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कर्नी और इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का उनकी नेक ख्वाहिशात और पैगामात के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। उधर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक अजीम शख्सियत करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि जनाब मोदी एक मजबूत, सेहतमंद और दानिशमंद लीडर हैं और उनके लिए आने वाले कई साल इसी तरह की कामयाबी और अजमत के रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमात अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखबा पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकार्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर पंडित नेहरू का दौर हुकूमत 4398 दिन का था, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बन गए हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने ओमान के साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज सेट बेलो पर हमले के तनाजुर में अमरीकी सफारतखाना के नाजिमुल उमूर जैसन मेक्स को तलब किया। एक बयान में वज़ारत ख़ारिजा ने कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। इस बहरी जहाज में अमले के 24 भारतीय अहलकारों में से 21 को बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय अहलकार लापता हो गए हैं। भारत ने खित्ते में बहरी जहाजों पर लगातार हमलों के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। भारत ने कशीदगी फौरी तौर पर दूर किए जाने और मुजाकरात के जरिए सफारती हल निकाले जाने की बात दोहराई है। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरीन, कुवैत और उर्दन में जहां अमरीकी फौजी मुतायन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तला दी। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकानी होगी, जबकि अकवामे मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदों ने कहा कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर

0: भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरला, माहे, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेन्द्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज सेटो बेलो पर हमले के तनाजुर में अमरीकी सफारतखाना के नाजिमुल उमूर को तलब किया। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि बुल्गारिया के साथ भारत के ताल्लुकात तवील अरसे से कायम मजबूत रवाबित हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 फीफा वर्ल्ड कप आज रात शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रेडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आप आकाशवाणी से उर्दू सर्विस सुन रहे हैं।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज सेडबेलो पर हमले के तनाजुर में अमरीकी सफारतखाने के नाजिमुल उमूर को तलब किया। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में कशीदगी फिर से बढ़ गई है।

कई सारे संदेश हमें बता रहे हैं कि आपने हमेशा की तरह फिल्म पहचानी कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1973 की वो फिल्म जो सुपर डुपर हिट थी सौदागर। जी हाँ, और ये फिल्म 131 मिनट की अवधि वाली फिल्म जो कि मोती की कहानी पर आधारित थी। मोती जो खजूर का रस निकालकर अपना जीवन यापन करता है। नरेंद्रनाथ मित्रा की बंगाली लघु कहानी रस पर आधारित ये फिल्म संदेश छोड़ती है कि किसी दूसरे को दुखी करके खुशी हासिल नहीं की जा सकती। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपने एंग्री यंग मैन की छवि से निकलकर खजूर के रस से बने गुड़ को बेचने वाले मोती की भूमिका निभाई थी। नूतन, जिन्होंने महजुबीन नामक एक गरीब विधवा और मोती की व्यापारिक साझेदारी की एक सशक्त भूमिका निभाई थी। वही पद्मा खन्ना, जिन्होंने अपनी खलनायिका वाली छवि से हटकर फूलबानो की भूमिका निभाई, जिनके अभिनय की सभी ने तारीफ की।

सुंदर संगीत तैयार किया था रविंद्र जैन ने, और गीत भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे, जिन्हें अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफी साहब ने। फिल्म का सबसे हिट सॉन्ग रहा सजना है मुझे सजना के लिए, जो आज भी लड़कियां, महिलाएं इन सब की जुआ पर रटा हुआ है। किशोर दा की आवाज में अभी आप जो गीत सुन रहे थे हसीन चीज का, और लता दी की आवाज में तेरा मेरा साथ रहे जैसे गीतों ने फिल्म सौदागर को यादगार बना दिया। फिल्म में पद्मा खन्ना ने खूब नाम कमाया। सजना है मुझे सजना के लिए गीत इन्हीं पर फिल्माया गया था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगी थी। आपको याद होगा पद्मा खन्ना, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में केकई का रोल प्ले किया था और दर्शकों की खूब वाहवाही भी लूटी थी, और इन्हीं पर ये हिट सॉन्ग भी चॉइस किया था। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को आशा जी की आवाज में।

0: Chimilingue. Como é isso?
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एटी फिल्म से। आज हम लेकर आए हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म सौदागर। आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पर, जी हाँ आपके अपने इंद्रप्रस्थ चैनल पर, हर रोज दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक एक और नया प्रोग्राम सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का। तो इस बार भी आप हमेशा की तरह अपने संदेशों के जरिए उस प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो आपके साथ 3:30 बजकर 3:30 बजे तक एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगी। फिलहाल इसी फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंचा रही हूं।

छोटा घर जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन और नूतन की जोड़ी ने दर्शकों को जरूर इम्प्रेस किया। अमिताभ बच्चन का मोती का किरदार आज भी हिट है। ये अमिताभ बच्चन की करियर की पहली फिल्म थी जिसे 46वें एकेडमी अवार्ड्स में भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री ली थी। फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए चुनी गई थी, लेकिन इसे ऑस्कर में नॉमिनेशन नहीं मिल पाया था। फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के गांव में हुई थी।

बता दें कि 1969 में ये फिल्म मोहतान और संजीव कुमार के साथ बनाई जानी थी, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें कुछ तकरार, कुछ अनबन और नूतन और संजीव कुमार का कुछ ऐसा झगड़ा हो गया जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में नहीं की। मगर 1972 में अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनाई गई। प्रेम, विश्वासघात, लालच, पितृसत्ता और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे विषयों को उजागर करती ये फिल्म सौदागर आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म की लिस्ट में शामिल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये फिल्म हमेशा की तरह जरूर पसंद आई होगी। ढेर सारे संदेश भी आपके पहुंचे हैं, उन्हें बस मैं शामिल कर रही हूँ।

नाल देवनगन कौशल हेमलता डिंपल जी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पिंकी सोनकर मुन्ना भाई शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ हैं। राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरसिंह गिल दलजीत राजदीप गुरनूल गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं। और नीतीश कुमार तनुजा ईशांत लखन पांडा पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। अजीत भापसर जी वीरनगांव गुजरात से प्रमिला भापसर और सनी जी के साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव ज्योति रानी गुरमीत हमारे साथ हैं। निसार अली

नौशाद जी के साथ घनौरी तेली वाला उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से साथ में हैं। फिल्म का पंजाब खेड़ा परिवार भूषण खेड़ा विष्णु विशाल जी हमारे साथ हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। ये संदेश समदीन नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रद्धा अदिति राधे गुप्ता का है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी जी हैं। देवशंकर तांवरिया जी देव जी कवि रेडियो श्रोता संघ डोंगी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश मंगनेजा पूनम जी हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन डिंगिया पार जी हैं। गुरमीत सिंह मीटा साउथ एक्सटेंशन से शालीमार बाग दिल्ली से अशोक कुमार सहगल जुड़े हुए हैं और सुरेश जाधव अनिता जी हमारे साथ नेहरू चौक पैटर्न से जुड़े हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शेरवास फरदीन सुहान अरजान अबान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। जीवी राणा जी नेहरू विहार दिल्ली से हैं। संदीप मक्कर ज्योति मक्कर जी हमारे साथ पिंगा वाला चौक गोवालग जालंधर से जुड़े हुए हैं। पोचियल गला कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता साहू जी हमारे साथ हैं। ये संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंशी पा कपिल पूजा परिहार का है। पहाड़गढ़ मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन उषा मोहन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। मुकेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश बबलेश पवार जी का आया है और उन्होंने भी ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है। डेनी पवार और मनीष जी इनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और संदेश भी हमारे पास पहुंचे हैं, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। हीरामणि वर्मा दत्तरंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम और उनके परिवार के सदस्य हैं। स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप लोगा ठाकुरवाला से हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हमलता हिना हर्षित खुशी जी हमारे साथ हैं। नागरकोला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा आराध्या जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी जी का एक बार फिर संदेश आया है तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हम सफर बनने के लिए। और आपसे इतना ही हमेशा की तरह कहेंगे कि अगर आपने अभी तक फिल्म सौदागर को मिस किया है नहीं देखा है तो वक्त निकालिए। बहुत खूबसूरत सी फिल्म है और भले ही उस वक्त ये फिल्म हिट नहीं रही लेकिन उसके बाद लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। दो अब हम आपकी और मेरी मुलाकात 3 बजे होगी। जी हाँ, आज दोपहर 3 बजे खूबसूरत गीतों के साथ एक महफिल सजेगी जिसमें आप होंगे हम होंगे और हमारी खूबसूरत जो फिल्मी दुनिया है उसके गीत होंगे। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कौन तो कुछ नहीं कहेगा, मैं तो बनाऊंगा, ऐसा कह देता है। केंद्रीय सूचना के प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कश्मीर को कब्जकर देश के सरहदी इलाके में आकाशवाणी और दूरदर्शन कवरेज में मजबूत करने के लिए विशेष प्रबंध विकसित किए जा रहे हैं। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दिया कुछ किस्मत के एक्साइज ड्यूटी माफ कर चुकी है, तो इतना

0: across that, or don't feel that they can recruit the task to help a person to convert his skill to starting the month of the month. Shamanil. The social media post is from the network of Sotari Sankar Kitabla, Rahi Sankalit, Kendra Kira, the Parad Vikas Yatra, Tis Kremi, Rajo Kanta, the Hine, and the Turk, Kendra Kira Jandi, some of the Kyoto Vikas, which is part of this country to Kuno, Sakar Kurundi Sukhi Hatta Kurundi Kurundi Kurundi Kurundi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि किसानों के भलाई सरकार दिया प्रमुख तरजीहों विचों एक तरह की सरकार उन्होंने जीवन में सुखाला बनाने लिए हर संभव यत्न कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने किया कि किसान देश की खुराक सुरक्षा पोषण को खुशहाली भी दे रहे। प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना वर्गियों परिस्थितियां न सिर्फ किसानों की आमदन दिलासा कर रही है सदर खेती बाड़ी में भी मजबूत बना रही है। किसान क्रेडिट कार्ड भी महत्व जोर देते हुए उन्हें दसवा कि यह कार्ड किसानों पशुपालकों के मछुआरों ने खेती तो हो जरूरी जरूरत ने बहुत घट ब्याज दर के कर्जे पर आसान पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सरकार भी बीज तो बाजार पहल फसलों ने उचित कीमतों में यकीन बनाने के बेहद प्रभावशाली साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के किसानों ने आधुनिक खेती बाड़ी सहूलता प्रदान करने के लगातार जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि खेती बाड़ी सिर्फ उपजीविका का साधन नहीं सगो समाज के राष्ट्र के पोषण का मूल आधार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है कि भारत के बुल्गारिया नाल संबंध लंबे समय तो चल रहे अत्याचार ने तो हम दोनों देशों का काम उन्होंने होर गतिशील गांव वजह संबंधा मूल मुहार देना। उन्होंने कल बुल्गारिया के साथ में बुल्गारियाई हमेटा वेलिस्लावा पेत्रोवा चामोवा ने मुलाकात तो बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने चर्चा के तीन पहले सन पहला भारत के बुल्गारिया विस्तार वाला सहयोग दूजा भारत यूरोपियन विस्तार भाईवाली के आखिर ए कि किवें मजबूत देश विश्व स्थिरता को तरक्की ले रल के काम कर सकते ने।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग, दूसरा भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और तीसरा वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने जोर देते किया कि भारत की आर्थिक सुरक्षा विघन के हालिया अनुभव और दहशतगर्दी के बदल हुए खतरे बारे स्पष्ट स्थिति है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि जंग का युग नहीं है तो टकराव का कोई हल गाय भारत के खेत में के लिए। केंद्रीय सूचना के प्रसारण मंत्री श्री वैष्णव ने आज राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ विखे जयपुर के आकाशवाणी कॉम्प्लेक्स के सराय के प्रोग्राम दौरान 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस वादे के नाम राज्य चौथम

convierte un tal hijo de Dios. No va a transmitir sobre el futuro de este que no puede querer ver. Padre Escudar, que era que es un loco, ¿no? Ya han parido de su madre que manaron en programa de visajes militares. जो कि कश्मीर को लेकर सारे पासे खाली हो गए। श्री डॉक्टर ने प्रसार भारती के समुचे ढांचे में बदलन का सद्दा दिन दिया। टेक्नोलॉजी युग में रेडियो ने प्रासंगिक रखने लिए डिजिटल पोस्ट के हाइपर लोकल पहुंच की लोड़ को जोर दिया। उन्होंने स्थानीय कलाकारों के कारीगरों को प्रसारण प्लेटफॉर्म में जोड़ने की महत्ता की भी जोर दिया। श्री राठी ने जयपुर के चाउन वाले एआई डेटा सेंटर का भी जोर कर दिया। इसमें भविष्य टेक्नोलॉजी वाले एक महत्वपूर्ण कदम दिखाया।

फिर सुनिधि का यानी की तथ्य थी। केंद्रीय मंत्री श्रीवास्तव ने बाद एमएनआईटी जयपुर का दौरा किया। ये खेवड़ा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैनिक मतदा और क्वांटम टेक्नोलॉजी नया नेचर लैब की सहूलत का उद्घाटन किया। यह खबर आकाशवाणी को सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल @EIR। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दिए कुछ किस्मों के एक्साइज ड्यूटी माफ कर दी है। केंद्रीय खजाना मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में 22, 25, 23 और 3 cc इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह छोट देने का ऐलान किया है। मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम में मजबूत करना, जिसका टीचा बरामद की तो कच्चे तेल की निर्भरता घटाना, कार्बन निकासी की कटौती करना और घरेलू तौर से विकसित कीते इथेनॉल की मांग घटाना। लाहौर झंडे वाले वपारक जहाज और तेज छोटे बोले तेज यात्री डिस्ट्राइक घटना के बाद सिरे लापता हुए तीन भारतीय नाविका की हम मौत की पुष्टि हो गई है। टैंकर के ओमान के साहिल के शक्ति अमरीकी मिजाइल हमले में मार गई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय बंदरगाह जहाजा ने जलमार्ग मंत्री सुब्रत सोनोवाल ने किया कि तीन नाविका की अड्डी हाँ मिल गई ने तो उन्हें पहचान कर ली गई है। श्री सोनोवाल ने सफाई घटना से दुस्साहित किया कि इसमें समुद्री भाईचारे में डूंगा नुकसान दसिया। उन्हें कहा कि सरकार इस मुश्किल समय दौरान दुखी परिवार मजबूती न खड़ी है। उन्हें भरोसा दिता कि मृतकों के रिश्तेदारों को हर जरूरी सहायता दी जाएगी। ओमान के भारतीय दूतकर ने कहा कि उसने सवेरे ओमान देश के नाम समंदरगाह के नेड़े एक जहाज न संबंधित एक होर घटना बारे जानकारी मिली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दूतकर ने कहा कि स्थिति को नेड़े नजर रख रहे तो होर वेरवे ने स्थानक अधिकारियों तालमेल किया जा रहा है। सरकार ने 29 केंद्रीय सुरक्षा कानूनों में तत्संगत सभी बनाया और उन्होंने 4 व्यापक सुरक्षा कानून जोड़िया। इसका उद्देश्य पालना में सरल बनाना, कानून की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, कारोबार करने आसानी में उत्साहित करना। तिरक रोजगार राज मंत्री शोभा करण दलाजे ने कल स्विटरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के पूर्ण सत्र में संबोधन करते हुए यह गल कही। सरकार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान सरहद नेड़े भारतीय हवाई फौज से जहाज से हादसाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह गुमराह है। प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा झूठा है तो वीडियो पाकिस्तानी दूरप्रचार खातों वालों प्रसारित किया जा रहा है। पीआईबी ने नागरिकों ने अपील की थी कि जनता को गुमराह करने के उद्देश्य सरहद पार से चलाई जा रही दूरप्रचार मुहिमों को सावधान रहें।

0: Navigation from Jadwe. Udbat Mimatis made from Mexico Group A Demogable, which is Doctrinic Africa Flat, Melanche Trika. Melanche Party Samukita Bifu, the Pad Badi, Sabi Barabaji, Suruko Quaker. After the past Brank was paid. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग भी प्रदान कर रही है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत बुल्गेरिया संबंधों में होर गतिशील के आधार बजे बनाने का सदा दिखा है। केंद्रीय सूचना के प्रसारण मंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि कश्मीर चौकाच तक देश के सभी इलाके में आकाशवाणी से दूरदर्शन कवरेज में मजबूत करने के विशेष प्रबंध विकसित किए जा रहे हैं। इस दौरान ही साधा ए बुलेटिन खत्म होता है। साधा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6 बजे भी मिलते होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खितों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। टीएमसी रुकन पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारी ने वडोदरा

0: शेखर रे और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी आबादी के वजीर राममोहन नायडू ने आज गुजरात में वडोदरा से भारत में तैयार की गई पहली एयरबस C-295 की पहली आजमाइशी परवाज पर खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि यह आसमान में उड़ने वाला महज एक हवाई जहाज नहीं है, बल्कि इससे हवाई जहाजों की तैयारी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का भी इजहार होता है। शहरी आबादी के वजीर ने इस कामयाबी पर एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय फिजाइया और सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्करों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अदीब और कंसल्टेंसी फर्म काउंसिलेज इंडिया के बानी और मैनेजिंग पार्टनर का मजमून शेयर किया है। ये मजमून वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुद्दत-ए-कार का अहाता करता है और इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने मुश्किल रास्ते को चुना और हुक्मरानी के तरीक़ेकार के जरिए बदलाव लाते हुए वक़ार और खिदमात की फराहमी को अवामी तहरीक बना दिया। ये मजमून इस बात को भी नुमाया करता है कि जनाब मोदी ज्यादा बाअसर वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए और वो बदलाव लाने वाले शख्स बने जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग टोब्गे ने आज कौमी रोजनामे में एक मजमून लिखा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी गई। अपने मजमून में भूटान के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को काबिल एतबार दोस्त, बड़ा भाई और रहबर करार दिया। जनाब टोब्गे ने 26 मई 2014 को जनाब मोदी की हलफबरदारी की तकरीब के दौरान उनसे हुई मुलाकात को याद किया और वज़ीर-ए-आज़म के पहले गैर मुल्की दौरे के लिए भारत की जानिब से भूटान को चुने जाने की अहमियत पर रोशनी डाली। जनाब टोब्गे ने जोर देकर कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में गहरे होते दोतरफा ताल्लुकात के दौरान भारत भूटान का सबसे करीब तरीन दोस्त और सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी बना रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ फिल्मसाज भारती राजा के इंतकाल पर आज अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारती राजा सिनेमा की दुनिया की कद्दावर शख्सियत थे जिनके काम ने तमिल सिनेमा को बदल कर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फिल्मसाज भारती राजा की जानिब से पेश की गई देही जिंदगी को खूब सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारती राजा के अफराद खानदान और मद्दाहों से ताजियत का इजहार किया है। हुकूमत ने उस जाली वीडियो की तर्दीद की है जिसमें भारतीय फिजाइया के तैयारे के पाकिस्तान सरहद के करीब तबाह होने का दावा किया गया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की हकायक की जांच करने वाली इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और इस वीडियो को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स की जानिब से फैलाया जा रहा है। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजु में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म करने के लिए मुजाकिरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आदमाए हुरमुज के बंद होने का ऐलान किया है, जबकि अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाज बदस्तूर आदमाए हुरमुज से गुजर रहे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कल आदमाए हुरमुज में दो बहरी जहाजों को निशाना बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज रात मेक्सिको सिटी में तारीखी स्टेडियो अजटेका के मकाम पर शुरू हो रहा है और जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के मैच अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वर्ल्ड कप की तारीख में यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि सबका टूर्नामेंट्स में 32 टीमें थी। इस टूर्नामेंट में चार चार टीमों के 12 ग्रुप होंगे। हर ग्रुप से चोटी की दो टीमें नॉकआउट मरहले में पहुंच जाएंगी। इस टूर्नामेंट में ग्रुप मरहले में 72 मैचों समेत मजमुई तौर पर 104 मैच खेले जाएंगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। वर्ल्ड का फाइनल 19 जुलाई को होगा। स्पोर्ट डेस्क से शर्मन चोपड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: इस दौरान फीफा आलमी कप में पहला मैच ग्रुप ए में मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खित्तों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रही है। जनरल वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल

0: Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमा

0: सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, तो जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉ जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एंटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमरीका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इसे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट है। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और के शिपिंग लाइन्स पर

0: बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में हैंडल कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20

वाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वो आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। बड़ी में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
1: सच कह रहा है दीवाना।
0: नमस्कार दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की, ऐसे एक्टर की, जिसने अपनी मोहक मुस्कान और कमाल की एक्टिंग से उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर दिल पर राज किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने मैडी यानी आर माधवन साहब की। जमशेदपुर के एक साधारण परिवार से निकलकर नेशनल अवार्ड विनर बनने तक का यह सफर कैसा रहा, आज जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी उस फिल्म से जिसने उन्हें रातों रात एक लड़की का क्रश बना दिया और हजारों युवाओं के दिल में उन्हें मशहूर कर दिया।

सच कह रहा है दीवाना। जी हाँ, मैडी और रीना की वो लव स्टोरी आंखों के सामने आ जाती है जब हम ये गीत सुनते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि माधवन कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? वो तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर चुके थे और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, मगर किस्मत उन्हें मुंबई ले आई और टीवी सीरियल जैसे बनेगी अपनी बात और सी हॉक से उन्होंने शुरुआत की। फिर मणिरत्नम की फिल्म अलाई पायुथे जिसने साउथ में तहलका मचा दिया और उसी का हिंदी रिमेक था रहना है तेरे दिल में। चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और बेहद ही खूबसूरत गाना और यादें ताजा करते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, और एक एक नगर कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आर माधवन साहब की। बड़ी खासियत यह है कि वो सिर्फ रोमांटिक किरदारों में नहीं बंधे। बात करें साल 2006 में आई उनकी फिल्म रंग दे बसंती की, उनका रोल सिर्फ 9 मिनट का था, फ्लैट लेफ्टिनेंट अजय राठौर का, लेकिन उस 9 मिनट के रोल में उन्होंने जो किरदार निभाया वो बहुत ही खास था और जिसने करोड़ों दर्शकों को भावुक कर दिया, यूं कहें कि रुला दिया। इसके बाद मणि रत्नम साहब की फिल्म आई गुरु, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन के सामने के ईमानदार पत्रकार श्याम सक्सेना का किरदार निभाया, और रंग दे बसंती में जो उन्होंने किरदार निभाया, आज भी जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए आपको इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं ताकि आप भी एंजॉय करें।

0: एक ही कलाकार हमारे श्रोता सुन रहे हैं आज ये कार्यक्रम और आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब बात उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2009 की फिल्म, ये फिल्म थी थ्री इडियट्स। माधवन साहब ने निभाया फरहान कुरैशी का दमदार किरदार, जो इंजीनियरिंग तो कर रहा है पर उसकी असली दिली ख्वाहिश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने की है। श्रोताओं, वो सीन आपको याद ही होगा जहां पर वो अपने अब्बा को समझाते हुए कहता है, अब्बा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो क्या होगा, कम पैसे कमाऊंगा, छोटी गाड़ी होगी, लेकिन मैं खुश रहूंगा अब्बा। इस एक सीन ने देश के लाखों युवाओं को अपने सपने जीने की हिम्मत दी। तो चलिए कॉलेज के उन दिनों को याद करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।
1: जाने नहीं देंगे तू।

14 अभी तक हमने माधवन साहब को चौबले और सेरे सुर में देखा है, लेकिन 2011 में आनंद एल राय लेकर आए तनु बैट्समैन हूं। लंदन रिटर्न सीधे साधे डॉक्टर यानी मनु के रोल में माधवन ने कमाल कर दिया। कंगना रनौत की तनु के नखरों के बीच मनु की सादगी ने सबका दिल जीता। यह फिल्म और इसका सीक्वल तनु वेट्स मनु रिटर्न ब्लॉकबस्टर रही। चले इसी देसी शादी के माहौल का मजा लेते हैं और सुनते हैं यह सुपरहिट गाना।

दोस्तों, आज का हमारा ये शो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। चलते चलते आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म का एक और खूबसूरत गाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति अपने दोस्त मनोज को। तब तक के लिए सुनते रहिए एक गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मैं के कलाकार, और आज के हमारे कलाकार थे आर माधवन साहब। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, विनम्र 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।

सामिन अदावर्स, ये आकाशवाणी है। सपेर के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशियात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

साढ़े तीन बजे अंदाज़े नज़र प्रोग्राम के तहत एक मुबाहिसा आप सुनेंगे। मौजू है फासलाती निज़ाम तालीम और उर्दू। पांच बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाही कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तेलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खित्तों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। जहां वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की।

एथेनॉल की आमिजिश वाले बास किस्म के पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल की आमिजिश वाले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि इस कदम का मकसद भारत के एथेनॉल की

0: इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि यह आसमान में उड़ने वाला महज एक हवाई जहाज नहीं है, बल्कि इससे हवाई जहाजों की तैयारी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का इजहार भी होता है। शहरी हवाबाजी के वजीर ने इस कामयाबी पर एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय फजाइया और सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्करों को मुबारकबाद दी है। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रकाश चिकब्राइट ने राज्यसभा के रुकने के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सदरनशी सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। जम्मू में तैयार किए जाने वाले वेस्ट टू वंडर पार्क के काम में तेजी लाई जा रही है ताकि सालाना अमरनाथ यात्रा से पहले इसे मुकम्मल किया जा सके। हुकाम इसे अकीदतमंदों और सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाना चाहते हैं। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। उधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए अब नए हुरमूज के बंद होने का दावा किया है, जबकि अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाज बदस्तूर वहां से गुजर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 फीफा वर्ल्ड कप आज रात मेक्सिको सिटी में शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के मैच अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेले जाएंगे। पहला मैच ग्रुप ए में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप की तारीख में यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि सबका टूर्नामेंट्स में 32 टीमें थीं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तला-ओ- नशरियात के वजीर अश्वनी वैश्रम ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खित्तों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। जनाब वैश्रम ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के किया। मरकज ने एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है और पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर। मेरी पसंद यह प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम का आगाज एक गजल के साथ। कलाम हसन कमाल का, मौसीकी रवि की और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। फिल्म दहलीज़।

0: जो रिवायती तरीके तदरीस से कामयाब होने के बाद मेरे पास आते हैं या डिस्टेंस सिस्टम से आते हैं फासलाती निज़ाम तालीम को हासिल करने के, बल्कि मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद भी जाते हैं इस तरह के कोर्सेज करने, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए, और वो मुझसे उस बारे में जानना भी चाहते हैं। और मेरा ताल्लुक दोनों ही तरह के सिस्टम से रहा है, मेरी PhD डिस्टेंस एजुकेशन में रही है और मैं उर्दू पढ़ाता हूँ।
1: आपने बहुत काम किया हमें मालूम है, NIOS में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन का भी काम किया है, तो आपने ये फर्क देखा कि आपके यहाँ दोनों तरह के तालिबे इल्म आ रहे। जैसा मैंने काम किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, हम ये महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क में ये बेहतरीन निज़ाम हमारी हुकूमत ने कायम किया और ये बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफा है एक तरीके से। पूरी दुनिया में लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग है जहां लाखों बच्चे तालीम हासिल करते हैं। दरअसल किसी भी तालिब इल्म की किसी नामुसाद हालात के बिना पर तालीम छूट गई और वो किसी काम में लग गया, किसी घर में उसके वालिद का इंतकाल

0: कर सकता है और किसी भी इलाके से, किसी भी कोने से, मुल्क के किसी भी कोने से वो इससे इस्तेफादा कर सकता है। तो इसमें ये एज ग्रुप जो है ये बैरियर खत्म हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस हैं जो जिस पे हम आगे चल के जिक्र करेंगे, बात करेंगे उस पर भी किस तरह से तरसील का जो जरिया है। अब फासलाती निज़ाम तालीम के तरसील का जो एक जरिया है वो आप देख रहे हैं कि आज जिस माध्यम से या जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो सबसे अहम रोल उसने अदा किया है रेडियो ने। रेडियो ही के जरिए आए फासलाती निज़ाम तालीम जो है वो कामयाब हुई है, और यानी कि लाजिम और मलजूम है ये एक दूसरे के साथ।
1: जी जी।
0: ना अब रेडियो का सहारा लिए बिना तरसील जो है हम फासलाती निज़ाम की नहीं कर सकते हैं। रेडियो का अहम किरदार इसमें रहा है। अब रेडियो का आप देखें कि रेडियो का जो मकासिद है, अब उसमें इतलात और तालीम और तरसील, देखिए कितना हसीन इम्तिजाज है,
1: बहुत बढ़िया।
0: और इस तालीम को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना, और रेडियो को अब आज के वक्त में, आज इस अहद में हम बात कर रहे हैं जिस जमाने में, ये एक डिजिटलाइज यानी कि हम जिसको आलमी गांव कह लें या फिर इसको दूसरे अल्फाज में हम कह लें कि ये एक मीडिया कल्चर में हम जी रहे हैं। अब एआई का जमाना है, सब चीजें हैं, लेकिन रेडियो इस बात के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि 100 साल के आसपास जो आपने एक सफर इसने तय किया है, और कोई भी ईजाद जो है वो आपने एक तशख्खुस इस तरह से बरकरार रखा उसने कि आज भी उसकी मानवीयत और उसकी अफादियत उसी तरह से है जिसके जरिए से हम फासलाती निज़ाम तालीम की तरसील कर सकते हैं
1: और दिलचस्प बात
0: सहारे लेते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है उनके अपने अपने चैनल हैं, उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं, जिससे आप ज्ञानवाणी का जिक्र आप कर रहे हैं,
1: कम्युनिटी रेडियो बहुत चल रहे हैं हर यूनिवर्सिटी के,
0: हर यूनिवर्सिटी का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे कि ज्ञानवाणी एक चैनल है,
1: बहुत जमाने से काम,
0: 7 से 8 घंटे तक जो है तालीम, जो हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसको आसान सहल जबान में, रवा जबान में तालिब इल्म को मुखातिब करके वो एक लेक्चर हम उस पर प्ले करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, उससे बहुत सारे तलबा मुस्तफीद होते हैं।
1: उसी तरीके से एनआईओएस में मुक्त विद्यावाणी रेडियो चैनल है जिससे लाखों की तादाद में बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। जी
0: बिल्कुल।
1: तो असगर अली साहब, आपने अभी एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, चूंकि उसे मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि फासलाती निज़ाम तालीम की वो अहमियत नहीं है जो एक रेगुलर सिस्टम की, और ये हमने महसूस भी किया, जहां भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। मैं बताना चाहता हूं अपने सामीन को, तालिब इल्मों को, ठीक उसी तरह जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सर्टिफिकेट की वैल्यू, उसी तरह से एनआईयूएस की भी सर्टिफिकेट की वही वैल्यू है जो सीबीएसई की है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की भी और मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी की भी वही वैल्यू है जो दूसरे यूनिवर्सिटीज और बोर्ड की वैल्यू है। इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपके साथ कोई ज्यादती कहीं करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, वहां ग्रीवेंसेस सेल बने हुए, शिकायत के ऑफिस हैं हमारे यहां भी, इंदिरा गांधी में भी होंगे, हर जगह हैं, तो आप बात कर सकते हैं। देखिए, किसी इस बुनियाद पे कि हम आपको नहीं लेंगे, आप एनआईओ से आए या इग्नू से आए हैं, तो ऐसा नहीं है। नदीम साहब, जो अभी लियाकत अली साहब ने कहा कि एक रेगुलर सिस्टम और फासलाती निज़ाम तालीम में जो मुख्तलिफ तरह के ड्रॉप आउट बच्चे जो अभी हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, इसमें भी फासलाती निज़ाम तालीम बहुत मदद करता है। तो जो ड्रॉप आउट हैं आपके, आप महसूस करते हैं, जैसे आपने कहा हमारे यहां से भी, क्या ऐसे भी तालिब इल्म हैं जो उसमें बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं?
2: देखिए, हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी हमारे यहाँ है, और फासलाती निज़ाम तालीम का तो मकसद ही ये है कि किसी भी तरह या जिस भी तरह से तालीम दी जाए वो दे दी जाए और लोगों को मिल जाए। हम अगर माजी में जाते हैं हिंदुस्तान से इतर अलग, तो हम ये देखेंगे कि रशिया के अंदर लिटरेसी मिशन चला तो फासलाती निज़ाम तालीम के तहत ही चला, और ये रेडियो ने बहुत बड़ा किरदार उसके अंदर अदा किया है। हम क्यूबा की मिसाल ले सकते हैं, वहां पर सोशल एजुकेशन दी गई खास तौर पर बालिग लोगों को, तो उसके लिए भी रेडियो का ही सहारा लिया गया। और ड्रॉप आउट की जहां तक बात है, तो हमारे पास आज़ादी का इतना लंबा वक्फा गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी तरह से हम हर बच्चे को, सर्व शिक्षा अभियान हमने चलाया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी चला दिया जो बालिग लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए चलाया, सोशल अवेयरनेस के लिए, और लोग कुछ पढ़ लिख लें, बावजूद उसके अभी भी हम उस तरह की तालीम हर किसी को नहीं दे सकते जिस तरह की तालीम दरकार है।

0: पाकिस्तान के हर बच्चे को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो फासलाती निज़ाम तालीम से जुड़े। और ये हमारी मोरल ड्यूटी है बीइंग ए टीचर कि हम लोग अगर किसी मजबूरी के तहत बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ पा रहा है जुड़कर हमसे, यानी वो अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, घर की परेशानी है, उसकी दीगर परेशानियां हैं, खासतौर पर लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है और वो देही इलाकों की लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा परेशानियां रहती है, तो हम कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करें, तरगीब दें कि वो फासलाती निज़ाम तालीम की जानिब आए। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए तो ये एक, मैं बोलूं अगर हिंदी में, तो वरदान है,
1: नेमत है, ये
0: नेमत है, एक बड़ी नेमत है।
1: डॉक्टर असगर अली साहब, आप तो ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे दोनों तरह के सिस्टम है, फासलाती निज़ाम तालीम आप देख रहे हैं और रेगुलर सिस्टम, तो आप क्या इसमें महसूस करते हैं? इधर से उधर, उधर से इधर लोग आते हैं, या आप किसी को मशवरा देते हैं कि आप वहां चले जाइए, वहां से आ जाइए?
2: इस तरह का निज़ाम है मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि अगर कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि जो है ना हम रेगुलर सिस्टम से जुड़े, तो इस तरह का प्रावधान जो है ना, इस तरह का निज़ाम है। रहा सवाल कि, और ये पहले से भी होता रहा और अभी भी जो है ना, ये फर्स्ट ईयर में जो है ना बच्चे जो है ना स्विच ओवर कर सकते हैं अगर जगह खाली है तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो दीगर जो फासिलाती निज़ाम तालीम का जो इदारा है उसमें एक फर्क आप ये महसूस करेंगे, जैसे एज के हवाले से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं वो ज्यादातर जो है ना सब फ्रेशर हैं, यंग बच्चे मिलेंगे अक्रॉस द कोर्स। मोस्ट ऑफ द बच्चे वो हैं जो जिनको क्या कहते हैं कि रेगुलर में एडमिशन नहीं मिला, वो बच्चे जो है ना इसमें
1: सीधे ट्वेल्थ करके आपके यहाँ फ्रेशर तालिबिल आ जाते
2: हैं। रहा सवाल, एक सवाल आपने किया था कि ये जो नोशन है कि अभी भी जो है ना ये फासिलाती निज़ाम तालीम को हकीर समझा जाता है, तो ये नोशन था या है भी कुछ हद तक,
1: ऐसा ऐसा खत्म हो गया।
2: सोशल मीडिया के जरिए जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है ना दूर हो गई हैं, जो क्या कहते हैं कि फासिलाती निज़ाम तालीम के बच्चों को एक मतलब महदूद कर देता था, वो जो है ना बिल्कुल उस बैरियर को तोड़ दिया है, वो बैरियर खत्म हो गया है, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बिल्कुल एक आजाद माहौल में अपनी तबीयत के हिसाब से, अपने च्वाइस के हिसाब से सिलेक्ट, अपना सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है और अपना गोल भी सेट करना है, तो ये चीजें हैं। और ये जो ये नोशन भी खत्म हो रहा है। तीसरी चीज के पहले कोर्सेज वगैरह भी जो है ना, जैसे मैं अपने खासतौर से डीयू के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ महदूद कोर्सेज थे, ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, रवायती कोर्सेज थे, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, एमकॉम, एमए, मैनेजमेंट नहीं था, बीलिब नहीं था, क्या कहते हैं कि और भी दीगर जो है ना इस तरह के कोर्सेज नहीं थे। वो सारे कोर्सेज जो है ना अब मतलब कि शुरू हो रहे हैं, शुरू हुए हैं, अच्छे खासे कोर्सेज शुरू हुए हैं और उसमें एक बड़ी तादाद है बच्चों की। और कहीं कहीं तो अब ऐसा लगता है कि जो रेगुलर के जो बच्चे हैं उन बच्चों से जो है ना आगे है जो है ना ये फासिलाती निज़ाम तालीम के बच्चे।
1: क्या बात है नदीम साहब, आप कुछ कहना चाहते थे?
0: देखिए, सबसे पहले तो जो तलबा है हमारे यामोजगार हैं फासिलाती निज़ाम से जुड़े हुए, मैं उन्हें इस बात के लिए भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी तालीम किसी भी तरह से रिवायती तालीम के मेयार के हिसाब से कम नहीं है। अपने अंदर खुद एतमादी लेकर आएं। और जहां तक अभी बात हो रही है, हमारे दोनों ही मेहमानों ने बताया, साथियों ने मेरे, कि उम्र वाला एक मामला है, तो वो मामला अभी मेरे सामने ही आया है क्योंकि उम्र की एक हद है डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली एजुकेशन की तरफ से। तो ये जो फाउंडेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं और ये जरूरत भी है कि उसे कुछ हद तक कम करना चाहिए, खासतौर पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें भी।
1: मैं किसी भी उम्र का बच्चा आ सकता है, मैं उधर ही आता हूं। पहले मैं बुनियादी तौर पर बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता है, यहां बुनियादी तालीम भी है। इसमें सिस्टम यह है 3-5-8 जिसे एबीसी लेवल कहते हैं, इसके अलावा 10-12 है। 10-12 जो है नेशनल लेवल पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मीडियम में है, इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी वहां पर है सारा कोर्स। जैसे हम उर्दू पे ही अब आ जाते हैं एकदम, अगर कोई तालिब इल्म हमारा 10वीं उर्दू मीडियम में करना चाहता है तो सारे जबानों की, सारे सब्जेक्ट की किताबें जो हैं, सॉरी जबान नहीं, सारे मजामीन की किताबें जो हैं वो उर्दू में मौजूद हैं। उर्दू में एडमिशन हो जाएगा, उर्दू में ही इम्तिहान होता है। उसी तरीके से अच्छा, यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं है, मतलब 14 साल से आपकी 100 साल की उम्र,
0: ये सबसे अच्छी बात है,
1: ये रेगुलर सिस्टम की तरह नहीं है। दूसरे, आपका दाखिला 5 साल की नहीं हो गया, आप 1 साल में करिए,

0: दो में करिए, पांच में करिए, और पास किए हुए मजामीन जमा होते रहते हैं। फौरन अगर आप 5 साल में भी नहीं कर पाए तो री एडमिशन मिल जाता है। ये तो हमारे यहाँ 10वीं 12वीं ओपन स्कूल में है, और दूसरे बोर्ड में भी जो तालिब इल्म अगर किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो उनके पास किए हुए दो मजामीन NIOS में ट्रांसफर करा के और 3 फौरन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है उससे दे के भी सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। ये तो स्कूलिंग की बात हुई। डॉक्टर लियाकत साहब, अब आते हैं हम आपकी तरफ, चूंकि आपके यहाँ ग्रेजुएशन होता है, आपके यहाँ क्या तरीका है?
1: देखिए इसमें सबसे,
0: और उर्दू के ताल्लुक से भी बात,
1: उर्दू के ताल्लुक से ही हम बात करेंगे इसमें। देखिए NIOS जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट जो है हमारे लिए पैदा करता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हायर एजुकेशन है, 12th करने के बाद ही बच्चा दाखिला ले सकता है, और 12th जो है NIOS करवा के हमारे पास स्टूडेंट्स को भेज देता है। जो बच्चे 12th नहीं कर सकते हैं वो एज बैरियर की वजह से, जो अभी नदीम साहब ने जिसका जिक्र किया है, तो ये एक हमारे लिए खुशाइंद बात है। दूसरी बात, एक वजाहत में ये करना चाहूंगा कि अभी आपने जो जिसका जिक्र किया था कि ये बहुत सारे ऐसे शक व शुबहात हैं या बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि क्या ये हमारे डिस्टेंस या ओपन लर्निंग की जो डिग्री है वो वैलिड होती है कि नहीं होती है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल जो है मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैलिड है। और इसमें आप देखिए अभी जो ट्रेंड चला है, अब बड़ी दिलचस्प बात है डॉक्टर साहब, देखिए कि अभी इस वक्त में जितने भी तलबा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना वक्त रवायती तालीम में जाया नहीं कर रहे हैं, वो साथ साथ में अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डिस्टेंस से वो अपनी तालीम जो है उसको भी हायर एजुकेशन जो है,
0: बात बताइए, मैंने भी देखा है
1: बिल्कुल उससे। आप देख रहे हैं कि 1-2 साल से जो इनरोलमेंट का जो एक दायरा कितना बढ़ गया है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन में, बहुत सारे तलबा इसमें हमारे तरफ आ रहे हैं। अब उर्दू की बात करते हैं हम, अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्वयं पे, आप देखिए कि कम से कम 7 या 8 कोर्सेज हमारे उर्दू के चल रहे हैं। और मैं आपको ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए कि हमारे यहाँ यूजी लेवल की कम से कम 4 या 5 डिग्रियां हैं उर्दू की, बीए ऑनर्स है, बीए अप्लाइड। ये देखिए कि हमारे यहाँ सबसे पहली फासलाती निजाम तालीम के तहत जो है किसी भी रवायती तालीम के जरिए आपको उर्दू में बीए अप्लाइड नहीं मिलेगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने यह पहल की है कि उसने बीए अप्लाइड उर्दू एक प्रोग्राम लॉन्च किया और अच्छी खासी इनरोलमेंट भी हमारी उसमें हो रही है। वो क्या है कि उसमें स्किल बेस्ड ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो तलबा को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल जो है वो बना सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उससे हमने कुछ MOU किया है, उनसे हमने कुछ कोर्सेज लिए हैं, उसमें हम उर्दू के तलबा को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप भी देते हैं, बच्चे उसे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं।
0: NIOS में उर्दू में कोर्सेज बहुत सारे हैं जो उर्दू मीडियम में हैं, वोकेशनल कोर्सेज। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू की क्या सूरत हाल है?
2: मेरे यहाँ जो है
0: फासलाती निज़ाम तालीम के
2: तहत जी वो बीए प्रोग्राम है
0: जी,
2: और ऑनर्स वगैरह नहीं है। कुछ कोर्सेज हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है ना अप्लाइड उर्दू जो

0: लीजिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि अच्छा हमारी मादरी जबान है हमसे कर लेंगे, लेकिन जहां ऑनर्स और ग्रेजुएशन और इसकी बात आती है तो फिर मामला बिल्कुल बड़क्स हो जाता है। वहां पे शायरी पढ़नी है, वहां पे सारे जो भी अदब का जो मतलब नॉवेल पढ़ने हैं, मुख्तसर अफसाने पढ़ने हैं, कसीदे पढ़ने हैं, तो जबान से बिल्कुल इसका मामला जो है ना अलग हो जाता है। और दूसरी चीज जो मैंने एक चीज और महसूस किया है कि जो हमारे स्कूल्स हैं जैसे NIOS हैं या और भी जो रेगुलर स्कूल्स हैं, वहां पे भी थोड़ा सा जो है ना हमें उनसे कनेक्ट करके, थोड़ा सा जो है ना उससे इंटरेक्ट करके, उनसे जो है ना कि थोड़ा सा जो है ना कुछ कुछ चीजों पे तवज्जो दी जाए कि बच्चों के अंदर कम से कम जो है ना वो लिखने वाली जो वो तहरीरी सलाहियत हो वो पैदा हो जो है ना,
1: बहुत इम्पोर्टेंट
0: उसकी
1: बात।
0: उसकी बड़ी कमी महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब आमतौर पे जो है ना आपने इवेल्युएशन किया होगा जो है ना आंसर शीट वगैरह जो है ना, तो उसमें बहुत ही खराब सूरत हाल रहती है। एक चीज और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ सर कि अब जैसे रहा सवाल जैसे बुक के हिसाब से देख किताब के हवाले से उर्दू एज ए मीडियम और उर्दू एज ए डिसिप्लिन, तो उर्दू एज ए डिसिप्लिन में तो क्या कहते हैं अगर एज ए डिसिप्लिन हम अगर उसको अडॉप्ट करते हैं अख्तियार करते हैं तो वहां पे तो कमोबेश मटेरियल जो मवाद है स्टडी मटेरियल वगैरह है वो सब काफी है और उसमें भी कमी है, लेकिन जहां बात आती है उर्दू एज ए मीडियम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ना जैसे पॉलिटिकल साइंस हो हिस्ट्री हो या और दीगर जो सब्जेक्ट हैं वहां पे कमी महसूस होती है, हमारे बच्चों को उतनी आसानी नहीं होती है, सोशल मीडिया से भी उतना हेल्प नहीं मिल पाता है जितने और दीगर सब्जेक्ट में बच्चे करते हैं, मतलब हेल्प ले लेते हैं सोशल मीडिया से या और दीगर इदारे से या वेबसाइट से, या तो वहां पे भी थोड़ा सा जो है ना तवज्जो देने की जरूरत है।
1: एक
0: चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि जो फासिलाती निजाम तालीम है उसमें जो टीचर की ट्रेनिंग है, जो फासिलाती निजाम तालीम से जुड़े हुए हैं उनकी जो ट्रेनिंग है एक स्पेशलाइज्ड नहीज पे होनी चाहिए,
1: ये
0: वहां पे जो है ना उर्दू में उस तरह से जो है ना एक बेहतर निजाम नहीं है। आपने जिक्र किया है कि मौलाना आजाद इस पे अच्छा खासा काम कर रहा है,
1: वहां पर उर्दू मीडियम में काम हो रहा है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: वक्त हमारा जो है बहुत करीब आ गया प्रोग्राम खत्म करने का, एक बात कहकर हम प्रोग्राम को यहां पे खत्म करेंगे कि एक तो यह है कि जो उसका निसाब है फासला निजाम तालीम का, चाहे NIOS का हो या इंदिरा गांधी का हो या मानू का हो, इनका खुद सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। तालिब इल्म को टीचर की यहां जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से न सिर्फ जबान की पढ़ सकते हैं बल्कि जो दूसरे मजामीन जिनकी मीडियम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है। फिर भी इसके अलावा पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम यानी जाती राबता प्रोग्राम छुट्टी के दिनों में तालिब इल्मों के लिए होते हैं, जैसा अभी हमने जिक्र किया रेडियो के जरिए होते हैं, टेलीविजन के जरिए होते हैं जाती राबता प्रोग्राम, और उनके स्टडी सेंटर पे भी होते हैं। खैर आप लोग यहां तशरीफ लाए डॉक्टर लियाकत अली साहब, डॉक्टर असगर अली साहब, डॉक्टर नदीम अहमद और मैं आपका यहां पे ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छे मौजू पे हमने गुफ्तगू की, यकीनन हमारे सामीन को इससे बहुत मुस्तफीद होंगे और इससे फायदा उठाएंगे। आज का ये प्रोग्राम अब हम यहीं खत्म करते हैं, इजाजत दें, खुदा हाफिज।
2: अंदाजे नजर इस प्रोग्राम के तहत अभी आप एक मुजाकरा सुन रहे थे मौजूदा फासलाती निजाम तालीम और उर्दू, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल एप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशियात जारी है। लीजिए सुनिए फिल्मी नाम में फिल्मी मौसीकी का आगाज काला पत्थर फिल्म के नगमे से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, नगमा निगार साहिल लुधियानवी, मौसीकी राजेश रोशन की।

भरपूर फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ओली जब सुनिए लता मंगेशकर के साथ महेंद्र कपूर को, फिल्म है बदलते रिश्ते।

0: और ये प्रोग्राम के आखिर में सुनिए घरौंदा फिल्म का दो गाना, भूपेंद्र और रूना लैला का गाया हुआ, नगमा निगार गुलजार मौसीकी जयदेव की।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

0: मरकजी कमान ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाज बदस्तूर वहां से गुजर रहे हैं। भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोबगे ने आज कौमी रोजनामे में एक मजमून लिखा जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी गई। अपने मजमून में भूटान के वजीर आजम ने वजीर आजम मोदी को काबिल एतबार दोस्त, बड़ा भाई और रहबर करार दिया। जनाब टोबगे ने 26 मई 2014 को जनाब मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान उनसे हुई मुलाकात को याद किया और वजीर आजम के पहले गैर मुल्की दौरे के लिए भारत की जानिब से भूटान को चुने जाने की अहमियत पर रोशनी डाली। जनाब टोबगे ने जोर देकर कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में गहरे होते दो तरफा ताल्लुकात के दौरान भारत भूटान का सबसे करीब तरीन दोस्त और सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी बना रहेगा। जनाब टोबगे ने खास तौर पर मेलेपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट के लिए भारत की इमदाद को तस्लीम किया। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि बुल्गारिया के साथ भारत के ताल्लुकात तवील अरसे से कायम मजबूत रवाबित हैं और अब दोनों मुल्कों का ये काम है कि उन ताल्लुकात को और ज्यादा वलवला अंगेज और दूरंदेशी पर मबनी रिश्तों में तब्दील किया जाए। उन्होंने बुल्गारिया में वहां की वज़ीर ख़ारिजा वेली सलावा पेटोरोवा चमोवा के साथ मुलाकात के बाद यह बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि उनकी बातचीत तीन पहलुओं पर मरकूज रही जिसमें भारत और बुल्गारिया के दरमियान बाहमी इश्तराक, भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान साझेदारी, नीज ये मामला शामिल है कि आलमी इस्तेहकाम और पेशरफ्त के लिए ज्यादा मजबूत मुल्क किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 फीफा वर्ल्ड कप आज रात मैक्सिको सिटी में तारीखी स्टेडियो एजिटिका के मुकाम पर शुरू हो रहा है और 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के मैच अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेले जाएंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तला और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत भारत के सरहदी खितों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C-295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने अब नए हुर्मुज बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नशरियात के साथ
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस चल रही है पंजाबी सेवाएं। शाम के 5 बजे होगी दूसरी सेवा शुरू हो रही है। सेवा का आगाज कर दिया सुरेश के प्रोग्राम झोंक माहिती बनारस।

0: एक बहुत बड़ी नियामत है। प्यार कितना नहीं वेंदा एक थींदा है। नजदीक या प्यार विच बदल वेंदिया हैं ते दूरियां आते मिट वेंदिया हैं। इस प्यार विच बोली धर्म जात रंग दी के थन छा नहीं। जरूरी नहीं रंग गोरा थी वे सामने रंग विच भी खूबसूरती लुकी थींदी है। गल तां प्यार दी है। जदन हां को कोई चंगा लगेंदा है ना तो मन करेंदा है कोल कोल बहवण दा गाला करेंदा। गल तां हां को चंगी लगेण दी है भावे उदे नैन नक्श किहो जे भी होवन रंग किहो जिहा भी थी वे। प्रोग्राम दा अगला गीत मैं तुहां को कुछ इसी तरह दा सुनवेंदी पई हां। गीत है मैं आप वे रंग दी सावली मेरा यार वे रंग दा सावला। भाई वाह फिर तो बहुत सोहनी जोड़ी है। आओ गीत दी चस गिनो।
1: मैं आप रंग दी सावली

भाजपाच्या असून वन गार वीज कोळी माडी संगत वीज पोंडा वेदा तो तजुर्बे आले लोग गाल को संभाल घेंदे हिन साझे परिवारा वीच बालन को चंगे संस्कार मिलेंदे हिन दादी नानी दिया कहानियां सुनेंदे हिन इकट्ठे घर विच खाना खाओ दे हिन तो एक साझ बनेंदी है तीसरे के भानो भरावो कोशिश करो मिलजुल के रावण दी तो हूं मैं तुहा को सुनेंदी हाँ सोफिया मलिक दा गाया एक बहुत वधिया गीत।

क्योंकि आई हां एक बहुत या गीत जिस विच छुहर को छुहेर नाल प्यार है पर छुहेर को है कि नहीं पता के नहीं कदई कदई ता इंज थींदा है कि छुहर इंतजार करेंदा है छुहर दी कि आज उस मिलन दा वादा कीता है वो जरूर आवन आली है पर छुहेर नहीं आंदी अगले दिन मिलन दा वादा करेंदी है वल भी नहीं आंदी इनको के आखसू करार करेंदी है पर आंदी नहीं इस हाल को देते हुए एक गीत जिस विच छुहर सोचेंदा है कदे यार होंदा साडा कदे प्यार होंदा साडा आओ चस गिनेंदे हां इस गीत दे कलाकार हैं महक मलिक।

चुना ने कपाल तो बाद है ना। अगली ते आखरी आवाज सुगम संगीत विच हरविंदर सहगल हरा दी।

0: अब मैं कह रही राम जी लंग आइए
1: आजू संधु साहब आजू बचानो आजू
0: आगे जी आगे जय हिंद जी रुड़िया राम जी जय हिंद
1: जय जी जय जी संधु साहब बचारो की हाल चाल है तेडा
0: बहुत बढ़िया जी अपना सुनाओ
1: हाल चाल तकड़ा देखो बचत हर पक्ष ते और अज दी बचत कल दा भविख ताडा तय कर दी है
0: अज दी बचत कल दी सुरक्षा
1: सुरक्षा सो इस करके गल कहन नूं या सुन नूं बड़ी छोटी लगती है पर संधु साहब जेड़े लोग इस ते अमल करदे है इहदी कदर और कीमत उही जानदे है
0: जदों लोड़ पैंदी है ना उदों पता लगदा है
1: बिलकुल
0: कई बार बंदा कह दिंदा मैं किहदे वास्ते बचावां मैनूं की लोड़ फिर जदों लोड़ पैंदी है
1: फिर पता लगदा
0: भी इस वक्त वास्ते जेड़े थोड़े थोड़े बचाउण दी लोड़ पैंदी है
1: सो इस करके संधु

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
1: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ PSU ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ। ਜਾਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181-298-3036। ਈਮੇਲ ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਕਮਾਲ
0: ਕਰੋ। RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
2: ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾਈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖਬਰਾਂ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सेटवेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
4: We attach high importance to the welfare and well-being.
5: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को MT सेटवेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कत स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को MT मारीवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम। अतुल भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में जानकारी होगी, मनोरंजन भी होगा, जानकारी ज्यादा होगी आज।
1: बिल्कुल, देखिए जानकारी ये है कि देखिए हमारे जीवन में और जीवन में क्या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है कि देखिए सब्जियों का और हमारे खान पान का, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, सभी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है।
0: एक संतुलन बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, है ना, संतुलित
1: आहार। बड़े बड़े कहते हैं कि जो समय के अनुसार सब्जियां चलती हैं, फल
0: मौसमी फल,
1: मौसमी फल, ये बात वो हमेशा हमें अपने जो है भोजन में इस्तेमाल करनी चाहिए,
0: क्योंकि ना प्रकृति वही देती है जिस वक्त आपको जब जिसकी जरूरत हो, है ना। आम सर्दियों में नहीं होता, गर्मियों में होता है और उसको वो गर्मियों में ही खाना है। तो कई बार क्या होता है, बेमौसमी चीजें जो हम खाने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारा शरीर कहता है कि यह गलत है, तो रुक जाओ।
1: तो ऐसी एक जानकारी हम भी लेकर के आए हैं, वर्तमान समय में सब्जियों की देखभाल एवं सब्जी उत्पादन और आगे की उनकी तैयारी, और इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गोगरा सिंह जाट और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो प्रीति बहन लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जिस तरीके से इस समय गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में जो हमारे सब्जियां होते हैं उनकी आवक कम हो जाती है, और कारण ये रहता है कि हमारे किसान भाई तो पूरी मेहनत से उगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गर्मी का प्रभाव सब्जियों पर पड़ता है, और ये उत्पादन पे ज्यादा प्रभाव न पड़े उसकी किस तरीके से देखभाल की जाए, कौन से उसमें कृषि क्रियाएं की जाए और किस तरीके

0: से उसकी तैयारी की जाए, इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गोगराज सिंह जाट जी को। और आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, इस समय जो मौसम है, ऐसे मौसम में हमारे किसान भाइयों की जो सब्जियां लगी हुई है, क्या उनको आप उपयुक्त सलाह देना चाहेंगे?
1: अभी आप देख रहे हैं कि तापमान निरंतर बढ़ रहा है और लू चल रही है, गर्मी अधिक पड़ रही है। तो इस मौसम में अभी जो किसानों के खेत में अगर सब्जियां हैं तो उनमें प्रमुख सब्जियां हैं जो बेल वाली सब्जियां हैं, जिनमें करेला, तोरई, लौकी, कद्दू और भी अन्य जो बेलदार सब्जियां हैं वो खेतों में किसानों की लगी हुई है। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी तुड़ाई हो चुकी है और वो समाप्त हो चुकी है। कुछ वो है जो मार्च और अप्रैल में जिनकी बुआई की गई थी, किसान जो अच्छी आमदनी लेने के लिए जो लेट लगाते हैं वो सब्जियां अभी भी चल रही है, लेकिन अधिक तापमान की वजह से उनमें उत्पादन जरूर कम होता है। लेकिन उत्पादन जो कम होता है वो महंगे दाम पर बेचकर किसान उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन सबसे बात यह है कि अभी उत्पादन को अच्छे से बनाए रखने के लिए किसान को क्या क्या करना चाहिए इन सब्जियों में, क्योंकि लू अधिक हो रही है, गर्मी अधिक हो रही है, तो बेलदार जो सब्जियां हैं इनमें जो नर पुष्प है उनकी संख्या बढ़ जाती है और मादा पुष्प की जो संख्या है वो कम हो जाती है। तो अधिक तापमान होने की वजह से जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब तापमान जाता है तो इसके लिए किसानों को सबसे जो प्रमुख है कि निरंतर सिंचाई करें। हर दूसरे दिन बेलदार सब्जियों में इस समय सिंचाई करते रहें। अगर ड्रिप में है तो 3 से 4 घंटे तक वो ड्रिप जो प्रणाली से सिंचाई कर रहे हैं वो लगा करते रहें। अगर नालियां हैं तो 2 दिन के अंतराल से नालियों को पूरा पानी से भरकर सिंचाई करते रहें। और इसके साथ साथ उनमें जो प्रत्येक तुड़ाई होती है उसके बाद में जो उर्वरक है, जैसे रासायनिक उर्वरकों में बात करें तो जैसे डीएपी की कुछ मात्रा पोटास की मिलाकर नालियों में डालकर हल्की मिट्टी चढ़ा दें, उसके बाद में फिर सिंचाई कर दें। तो लगभग ये कार्य करने से जो फल है उनकी लंबाई बढ़ जाएगी और उनका आकार भी अच्छा रहेगा और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ जो दूसरा कार्य है वो यह है कि जो फल मक्खी है, क्योंकि फल मक्खी छोटे फलों में अंडे देती है जिसे लार्वा उनके अंदर जाकर पूरे फल को खराब कर देते हैं और ये मुख्यतः समस्या आती है जैसे खरबूजा है, करेला है और इसके साथ साथ जो पंपकिन है जिसको हम कद्दू बोलते हैं। तो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए एक तो जो फेरोमोन ट्रैप बाजार में आजकल आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये ट्रैप लगभग 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रैप ये लगा दें जिससे कि उसमें मक्खी फंस जाती है और फिर वो उसी में मर जाती है, तो फलों को बहुत कम नुकसान होता है। इसके साथ साथ अगर किसी किसान भाई ने अगर लेट ये फसलें लगाई है और अभी बंटवार की अवस्था में है और अभी 1 या 2 तुड़ाई की है तो उनमें रेड पंपकिन जो बिटल है, कद्दू का जो लाल भ्रंग कीड़ा है, उसकी बीमारी भी कीट उसमें आता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सुबह के समय अगर आप खेत में निरंतर विजिट करते हैं तो वो सतरंगी रंग का एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको आप आसानी से हाथ से पकड़ के उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आप जो रासायनिक दवाएं हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यही सलाह देते हैं कि कम से कम दवाएं हैं उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जो ये दोनों कीट है इनका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आगे भी किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि जब इस मौसम में अगर कोई लगाना चाहता है तो वो मचान पे या ट्रेलिंग पर बेलदार सब्जियों की खेती करे जिनसे उनका उत्पादन 20% तक आराम से बढ़ जाता है। क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं नालियों में जब बुआई करते हैं और नालियों से बाहर पौधे निकलते हैं तो वहां पर पानी नहीं पहुंचता है तो जो फल होता है वो मृदा के सीधे संपर्क में आता है और उसका रंग थोड़ा लाइट ग्रीन हो जाता है और वो खराब भी होने लग जाता है। तो वो गलती ना करे किसान भाई।
0: और डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई सब्जियां तो हमेशा जरूरत पड़ती है
1: जी,
0: और आगे की तैयारी कर रहे हैं
1: जी,
0: तो आगे इस समय क्या तैयारी कर सकते
1: जी? तो इस समय जो भी किसान सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन थोड़ा यह है कि पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए किसान के पास में। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो किसान अभी थोड़ा और इंतजार करें बारिश का। तो इस समय जैसे पहली बारिश हो तो जो खाली खेत पड़े हैं उनमें ढेंचा लगा दें। ढेंचा लगभग 6 से 7 सप्ताह का जब हो जाता है तो उसको अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि उसमें प्रति हेक्टेयर लगभग 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन उस खेत में आ जाती है। तो ढेंचा लगाने के लिए पहले अच्छे से ठीक ठाक उसमें पलेवा कर दें और फिर ढेंचा का बीज बिखेर कर लगभग 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से फिर उसमें पाटा चलाकर समतल कर दें और जब लगभग 1 से 1.25 महीने की फसल हो जाए ढेंचे की उसको मिला दें। उस समय क्या होगा, जैसे जुलाई का महीना आ जाएगा तो फिर उपयुक्त समय आ जाएगा बेलदार सब्जियों को लगाने का। लेकिन जिन किसानों के पास में अगर पानी की अच्छी उपलब्धता है तो लगभग 15 से 20 जून के आसपास या उसके बाद में बेलदार सब्जियों की दोबारा बुआई शुरू कर सकते हैं और इनकी बुआई करने के लिए जो ऐसी किस्मों का चयन करें जो अच्छा उत्पादन दें और कीट व बीमारियां जिनमें कम लगे। जैसे अगर हम बात करें किस्मों की तो पूसा संस्थान में भी इनका बीज उपलब्ध है, जैसे लौकी में पूसा नवीन ले सकते हैं, पूसा संदेश ले सकते हैं, पूसा समृद्धि ले सकते हैं, पूसा संतुष्टि ले सकते हैं। अगर कद्दू की बात करें तो पूसा विश्वास ले सकते हैं, पूसा विकास ले सकते हैं। करेले की भी हमारे पास ऐसी किस्म है जो इस मौसम

0: अच्छी चलती है बारिश के मौसम में, जिनमें पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष प्रमुख है। अगर तोरी की खेती करना तो पूसा स्नेहा, पूसा चिकनी ले सकते हैं। तो ये किस्में किसान अभी अगर लगाना चाहते हैं तो उनका चयन कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैं कहूंगा जहां पर पानी की उपलब्धता कम है या व्यवस्था नहीं है, अभी किसान को इंतजार करना चाहिए बारिश का, और 15-20 जुलाई के लगभग वो इन फसलों की बिजाई जारी रख सकते हैं और लगभग 15 से 20 अगस्त तक इनकी बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसानों के पास में अभी लगाने का ऑप्शन है, जैसे बैंगन की फसल है, तो बैंगन की फसल की अभी नर्सरी किसान भाई डाल सकते हैं। तो नर्सरी डालने के लिए नर्सरी की जो भी तैयारियां हैं, अगर बैंगन का कितना बीज लगेगा प्रति हेक्टेयर के दर से, उस हिसाब से 300 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बैंगन का सफिशियंट होता है, तो उसके हिसाब से किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी का ऐसे स्थान पर चयन करना चाहिए जहां पर जमीन उठी हुई हो, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे मानसून आने वाला है, और लगभग 15 सेंटीमीटर के बेड बनाकर मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी कर अभी उसमें लगभग फॉर्मेल्डिहाइड जो दवा होती है उसका 25 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर जो नर्सरी का एरिया है उसके ऊपर अच्छे से छिटक कर पूरा उसको मिलाकर मिक्स करके जमीन में उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन है वो बिछा दें लगभग 10 से 12 दिन के लिए। उसके बाद में उसको हटाकर उस स्थान पर नर्सरी बनाएंगे तो जो फंगल बीमारी आती है, जो फफूंदनाशक बीमारी आती है, डैम्पिंग ऑफ है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, ऐसी बीमारियां नहीं आती है। और नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को अच्छे प्रकार से उपचारित करें, फफूंदनाशक दवा है चाहे उसमें थायरम हो, बाविस्टिन हो, केप्टान हो, केप्टाफ हो, 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, अगर आपको 500 ग्राम बीज अगर चाहिए 1 हेक्टेयर में तो लगभग उसमें 1 ग्राम दवा को मिलाकर अच्छे से सूखा उपचार कर फिर ही पौधशाला में बुआई करें। और पौधशाला में जब भी बीजों की आप बुआई करते हैं ये जरूर ध्यान रखें बीज की जो गहराई है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, और जैसे ही बुआई करें उसके बाद में उसके ऊपर अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी दोनों मिलाकर उसके ऊपर एक परत बना दें और फैला दें, और उसके ऊपर एक सूखी घास बिछा दें, फिर पानी लगाएं, जिससे क्या होगा बीजों का जो अंकुरण है एक समान होगा, अच्छा जमाव होगा, और जब बीज निकलने लग जाए उस समय सूखी घास को वहां से हटा दें। तो इस प्रकार बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो खरीफ जो प्याज लगेगा उसकी नर्सरी भी इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं, जिनके जो बेड होते हैं उनकी लंबाई आवश्यकता अनुसार कितनी भी रख सकते हैं किसान, और उनकी जो चौड़ाई है लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर रखें ताकि खरपतवार निकालने में आसानी से रहें, और जो बीजों की बुआई है वो प्याज हो चाहे बैंगन हो नर्सरी में कतार से कतार की जो दूरी है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर रखें और कतारों में ही इनकी बुआई करें नर्सरी में, जिससे कि खरपतवार निकालने में आसानी रहती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चौलाई की जो फसल है वो भी जैसे ही बारिश हो उसमें भी चौलाई की बिजाई किसान भाई अभी कर सकते हैं। तो बहुत सारे किसानों के पास अभी भी ऑप्शन है, किसान भाई इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब जो किसान भाई गोभी की तैयारी करते हैं जी, तो नर्सरी डालने का समय
0: जी, देखिए जो किसान भाई अगेती गोभी लेना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में जिसकी तुड़ाई हो जाती है लगभग 85 से 90 दिन की जाती है, उसकी नर्सरी डालने का सही समय चल रहा है अभी। तो इनकी अगर नर्सरी डालना चाहते हैं तो जैसे प्याज और मैंने बताया बैंगन की, उसी तरीके से उठे हुए बेड बनाकर नर्सरी इनके तैयार कर सकते हैं। और ये किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी किस्मों का चयन करें तो वही किस्में लें जो अगेती हो, जिनकी नर्सरी अभी डल रही हो और 1 से 1.25 महीने के बाद में उनकी रोपाई होगी लगभग 40 से 45 दिन बाद में, और उसमें लगभग 85 से 90 दिन में वो फसल पक जाएगी। क्योंकि किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं बाजार से जब बीज लाते हैं तो उसका अभाव होता है तो वो किस्में ले लेते हैं जो लेट सीजन में लगती है जैसे नवम्बर और दिसंबर में
1: जी।
0: तो उसमें फूल बहुत छोटे से आकार का बनता है और उसका बाजार मूल्य नहीं होता, तो ये अक्सर किसान भाई गलती कर देते हैं। क्योंकि जो गोभी होती है उसमें 4 प्रकार की किस्में होती है, अगेती, मध्य अगेती, मध्य पचेती और पचेती किस्में। जो गोभी की जो बुआई का समय शुरू होता है मई अंतिम और जून के शुरुआत से नर्सरी डलती है और ये लगभग 9 दिसंबर तक डलती है, तो अगेती किस्मों का ही चयन करें जिसमें अरली कुंवारी है और पूसा सिंथेटिक है, इसके साथ साथ जो कार्तिक शंकर हाइब्रिड वो ले सकते हैं, और भी पूसा संस्थान की जो भी किस्में जो अगेती किस्में उन्हीं का चयन करें। ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि जो बीज हम लगा रहे हैं वो अगेती किस्मों का ही है।
1: तो इसमें जो नर्सरी डालते हैं तो उसमें कोई बीमारी भी आती है
0: जी? देखिए नर्सरी अगर हम डालते हैं तो उसमें एक प्रमुख बीमारी आती है जिसको नर्सरी की मुख्य बीमारी कहते हैं, वो होती है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं और उसको हिंदी में आर्द्र गलन बोलते हैं, जिसको किसान बोलते हैं कि जैसे ही बीज निकलने लगता है पौधे गिर के मर जाते हैं। तो उसमें अगर सही समय पर उसका उपचार नहीं किया गया तो लगभग 24 से 48 घंटे में पूरी नर्सरी है वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए सबसे जो उपाय है बीजों को उपचारित करके ही बोए। तो मैंने पहले भी बताया था कि बीज उपचारित करने के लिए जैसे अगर आपको 300 से 400 ग्राम गोभी का फूल या पत्ता गोभी का जो भी बीज लगाना है उसको लगभग 1 ग्राम दवा ले लें, अच्छे से उसको मिक्स कर लें उसमें सूखा उपचार करके, और फिर नर्सरी में उसकी कतारों में बुआई करें। और जब भी आप पानी लगाएं उसमें भी आप अगर फफूंदनाशक दवा है केप्टान, थायरम, बाविस्टिन, केप्टाप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो 10 लीटर का जार आता है उसमें

0: लगभग 10 लीटर में 20 ग्राम दवा डाल के घोल बना के उससे सिंचाई करें तो वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका जो बीज है वो उपचारित होना चाहिए। तो अगर ये 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो वो बीमारी नहीं आएगी। अगर वो आ जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान किसान को झेलना पड़ता है, उसका बीज भी खत्म हो जाता है, समय भी चला जाता है, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, फिर उसके बाद में उसको जो मध्य फचेती किस्में होती है वो लगानी पड़ती है। तो इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है 25 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका अच्छे से नर्सरी की जमीन पर स्प्रे करके 10 दिन तक जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है उससे ढककर रखना चाहिए। तो उसी में सभी प्रकार के जो भी फंगस बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल क्रॉप के लिए वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये इसी 3-4 चीजों से इसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा है कि नर्सरी में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उसमें एक कीड़ा लगता है जो उसको काट देता है।
0: जी जी,
1: तो उसकी रोकथाम के लिए
0: जी देखिए, जो नर्सरी में आप बता रहे हैं एक छोटा सा कीड़ा लगता है, तो सबसे पहले तो यह है कि जब भी हम नर्सरी लगाएं तो एक ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर जैसे हम कोई नेट हाउस होता है उसके अंदर हम अगर करते हैं तो वो प्रोटेक्शन देता है आपको कीड़ों से छोटे, क्योंकि जून और जुलाई में जैसी बारिश शुरू होती है कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पत्तों को काटता है, धीरे धीरे जालीनुमा बना देता है, तो पूरी नर्सरी खराब हो जाती है उससे। तो नेट के अंदर बनाए और उसके ऊपर एक ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो। पौधों को शुरुआती अवस्था में थोड़ा हमें उनकी केयर करना होता है। इसके बाद में भी अगर पत्तों को कोई काट रहा है तो बहुत प्रकार के जैसे रासायनिक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध होते हैं, उस अवस्था पर हम उनको डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं इंडोक्सीकार्ब है, उसको 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी के जो छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन हमें कम रखना चाहिए जब पौधे छोटे होते हैं। 1 ml को 3 लीटर पानी में मिलाकर डालते हैं तो इस प्रकार के जो भी कीड़े आते हैं जो पौधों को खाते हैं पत्तियों को जाली बना देते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
1: तो और कोई खास बात बताना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई इस समय सब्जियों की खेती कर रहे हैं?
0: देखिए, मैं किसान भाइयों के लिए यही बताऊंगा कि सबसे पहले तो जब भी आप खेत की तैयारी करें आप पहले उसमें पलेवा करें। सूखे खेत में हैरो कल्टीवेटर ये नहीं चलाना चाहिए, उसमें अच्छे से पलेवा करके उसको 2-3 बार जो मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है उससे उसकी गहरी जुताई कर दें। जब आप पलेवा करते हैं उससे पहले जरूर आप उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, चाहे वो कोई सी भी सब्जी फसल लगा रहे हैं, लगभग 20 से 25 टन जिसमें हम कहते हैं कि 8 से 10 ट्रोली हम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर डालते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद में, कच्ची गोबर की खाद किसानों को कभी भी प्रयोग में नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सी भी सब्जी लगा रहे वो डाल दें, उसमें अच्छी प्रकार से मिला दें। और आप पहले जो फसल लगाना चाह रहे हैं तो उसकी जो सबसे अच्छी से अच्छी जो किस्म बाजार में उपलब्ध है या किसी संस्थान से आप लेना चाहते हैं तो उसका चयन करना चाहिए। आप किस मौसम में लगा रहे हैं, उसमें कौन सी बीमारी आती है, उस बीमारी के प्रति वो सहनशील है या नहीं है तो वो कर ले सुनी से। दूसरा ये देख लें कि बीज उपचारित है या नहीं है, आपके पास पानी का क्या सोर्स है, पानी की आप जांच करा सकते हैं। किसान भाई अभी मिट्टी की जांच करा सकते हैं, आजकल मिट्टी की जांच भी बहुत जगह फ्री हो रही है। आप जो मिट्टी प्रयोगशाला है राज्य की है, चाहे हमारे पूसा संस्थान में भी किसान भाई आकर अपने मिट्टी का सैंपल देकर मिट्टी और पानी उन दोनों की जांच भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कि जो बेलदार सब्जियां हैं उनकी जो बुआई है वो हमेशा मचान सिस्टम पर करें या ट्रेलिंग में करें, जिससे कि उत्पादन निरंतर मिलता रहे और अच्छा उत्पादन मिले। और नर्सरी का जो एरिया है वो उठा हुआ होना चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सिंचाई की व्यवस्था भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। और जो खरपतवार है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है सब्जियों में, तो इसके नियंत्रण के लिए भी जो पेंडामिथिलिन नाम की एक दवा आती है उसकी 0.5 लीटर दवा को लगभग 400 लीटर पानी में घोलकर आप रोपाई करते हैं या बिजाई के तुरंत बाद में उसमें स्प्रे कर दें तो शुरुआती तौर पर खरपतवार बहुत कम आते हैं। और जिस खेत में ज्यादा खरपतवार आते हैं जैसे मोथा, उस खेत में पत्तेदार सब्जियां ज्यादा लगानी चाहिए जिससे कि बिल्कुल छाया बनी रहे और मोथा पूरा जड़ से खत्म हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों को ध्यान रखनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि खेत बचाओ अभियान पे क्या बोलना चाहेंगे?
0: जी देखिए, ये बहुत अच्छा भारत सरकार का और कृषि मंत्रालय का अच्छा अभियान है और बहुत ही आईसीआर इस पे बल दे रहा है कि ये किसानों तक पहुंचकर बहुत इसमें टीमें बनाई गई है। आईसीआर के जो भी संस्थान है या राज्य सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके जो वैज्ञानिक है वो किसानों के खेतों तक जा रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप खेत बचाओ, मतलब खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको हमें बचाना है, क्योंकि किसान अंधाधुंध उसमें रासायनिक खादें उनका प्रयोग लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिक अनुशंसा उसमें अगर जितना है उससे ज्यादा किसान कर रहा है तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, उसमें जो माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज है मृदा में वो कम हो रही है, तो हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है बल्कि उसी जगह पे उसी लेवल पर है। तो इससे क्या होगा, किसान की बचत भी होगी, जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहा किसान चाहे वो रासायनिक खाद हो चाहे कीटनाशक हो उसकी बचत भी कम होगी। इसमें किसानों की भी गलती नहीं है, इसमें जहां से किसान खरीद रहा है उनको भी नहीं पता है कि दवाई किस काम आती है, ये वेंडिसाइड है, कहां स्प्रे करना है, कब करना है। तो हम किसानों को इसमें यही कर रहे हैं कि राइट अमाउंट, राइट प्लेस और राइट डोज, ये आपको डालना है। तो कृषि मंत्रालय का यही है।

0: कि इसमें संतुलित प्रयोग करना है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। यही उद्देश्य है खेत बचाओ अभियान आईसीआर का।
1: जी डॉक्टर बोगराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई इस जानकारी का फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आपने ये बातचीत सुनी, विषय था वर्तमान समय में सब्जियों की देखभाल एवं सब्जी उत्पादन और आगे की तैयारी कैसे करें। इस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोगराज सिंह जाट, जो इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों को मिली है प्रीति बहन। और देखिए अब बात करते हैं खरीफ दलहन के बारे में, चाहे वो अरहर हो, मूंग हो या उड़द हो।
2: खरीफ मौसम में दलहनी फसलों जैसे कि आपने बताया कि अरहर, मूंग और उड़द, ये किसानों के लिए कम लागत में और अधिक लाभ देने वाली फसलें मानी जाती हैं।
3: बिल्कुल,
2: और ये फसलें मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में भी बहुत सहायक होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी होती हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही वृद्धि होती है।
3: बिल्कुल, देखिए और ये जो इनकी जो जलवायु और मिट्टी की अगर बात की जाए तो देखिए अरहर को गर्म एवं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतर रहती है प्रीति बहन, और मूंग के लिए हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपयुक्त होती है। उड़द की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है ये दाल, लेकिन जल भराव से इसका भी बचाव बहुत जरूरी है।
2: और अगर बुवाई के समय की बात करें तो अरहर जो है जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई से मध्य तक बोई जा सकती है। मूंग की बात करें तो जून जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ ही इसकी बुवाई हो सकती है। और उड़द की बात करें तो जून के अंत में जुलाई तक बुवाई का जो समय रहता है वो सबसे सही रहता है।
3: बिल्कुल, और बात करें देखिए इनकी किस्मों की, तो देखिए पूसा 992, पूसा 991, नरेंद्र अरहर 1 और ICPL 88039 हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। मूंग सम्राट, पूसा विशाल, ऐसी बहुत सी किस्में हैं जिनको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं।
2: और अगर हम बीज की मात्रा की बात करें और उपचार की बात करें तो अरहर की बात है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मूंग की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उड़द 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
3: यानी कि बीज की मात्रा हमारे किसान भाई ले सकते हैं
2: जी।
3: और देखिए बुवाई से पहले बीज को जो है फफूंदी नाशक दवा से जो है उपचारित कर लें। और देखिए कहते हैं ना कि जिससे पौधे को जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है बेहतर हो जाता है उससे।
2: और खेत की तैयारी और बुवाई कैसे करनी है, मान लीजिए खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी जो है वो पहले भुरभुरी बनाए और उसके बाद अरहर का जो दूरी है ना पौधे की वो 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मूंग और उड़द की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर की बीच की दूरी पौधे के बीच में होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
3: बिल्कुल, खाद और उर्वरक की बात करें प्रीति बहन, तो गोबर की सड़ी खाद हमारे जो किसान भाई हैं वो ले सकते हैं। देखिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित प्रयोग जो है हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और दलहनी फसलें कम नाइट्रोजन मांगती हैं, इसलिए अधिक यूरिया का प्रयोग जो है हमारे किसान भाई
2: नहीं करें। सिंचाई और खरपतवार का नियंत्रण समय समय पर करते रहें, जैसे कि वर्षा आधारित फसलें हैं ये, और लंबे सूखे में हल्की सिंचाई करते रहें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई बहुत जरूरी होती है, उसका ध्यान रखें। खेत में जल जमा जो होता है, जल भराव जो हो जाता है, उसे बिल्कुल ना होने दें।
3: बिल्कुल, और देखिए कोशिश ये करें, देखिए जब फसल है तो कीट भी लगने की संभावना ज्यादा होती है प्रीति बहन, तो कोशिश ये करें कि जैसे अरहर है, अरहर की पत्तियों में फली छेदक कीट प्रमुख हो जाता है, इसका समय पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मूंग और उड़द की जो फसलें होती हैं उनमें पीला मोजेक रोग से जो है बचाव के लिए रोगरोधी किस्में लगाएं और सफेद मक्खी का जो है नियंत्रण हमारे किसान भाई जरूर करें।
2: अब अगर हम कटाई की बात कर लें तो जब 80 से 85% जो फलियां हैं वो पक जाएं, कटाई तभी करें। और वैज्ञानिक प्रबंधन से अच्छी पैदावार तो पाई ही जा सकती है, और इससे क्या है कि जो किसान की आय है ना वो उसमें भी वृद्धि हो सकती है।
3: बिल्कुल, तो ये तो रही जानकारी भाई खरीफ दलहन अरहर मूंग और उड़द की वैज्ञानिक खेती के बारे में। और देखिए अब बात करते हैं बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए चलाई गई हैं, तो उन्हीं में से एक योजना है संरक्षित खेती योजना
2: जी।
3: देखिए जलवायु, देश में जलवायु परिवर्तन और तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच प्रीति बहन किसानों में संरक्षित खेती का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और सेड नेट हाउस जैसे आधुनिक तकनीकों का मदद से

0: किसान नियंत्रण वातावरण में उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती कर बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल जो है हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
1: और अगर हम आधुनिक और अधिक मुनाफा देने वाली इस खेती तकनीक के बारे में बात ही कर रहे हैं तो ये इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो किसानों को जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। राज्य में विशेष योजना लागू करके किसानों को 70% तक की सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें।
0: बिल्कुल, और देखिए संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि तापमान, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश जैसे कृषि जलवायु कारकों को नियंत्रित करके फसलों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना
1: जी।
0: और इस तकनीकी से जो किसान महंगी सब्जियां, फूलों और बागवानी फसलों की बेमौसमी खेती का हमारे जो किसान भाई वो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसे पॉली हाउस की बात आपने की, पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, और इन्हीं ऐसी ही आधुनिक संरचनाओं में किसान टमाटर है, शिमला मिर्च, खीरा, गुलाब, स्ट्रॉबेरी जैसी बहुत ही उन्नत तकनीक वाली फसलें पूरे साल सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, यानी कि ये जो फसलें बिना मौसम के भी बेहतर तरीके से उगेंगी।
0: बिल्कुल, तो संरक्षित खेती करके हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। और घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है प्रीति बहन अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का, तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।

कृषि जगत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

0: वारसी ब्रदर्स की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। इसी के साथ गजल और कव्वाली का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। और संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसरों के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को महिलाओं की

0: शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मंच के तहत राज्य अपना अनुभव, कार्य पद्धतियां और सामूहिक विचार साझा कर विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार इस महीने की 18 से 20 तारीख तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
2: इन शिविरों के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर परवेश साहिब सिंह ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को किसी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये शिविर केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है बल्कि जनता के साथ संवाद और समस्याओं के समाधान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। श्री सिंह ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका अधिकतम लाभ उठाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए निशु के साथ सौम्य शरण।
1: केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है, जिसका उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल की मांग को बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज एक बैठक में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
3: उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बैठक में अधिकारियों को मॉनसून से पहले सभी वर्षा जल संचयन प्रणालियों को पूरी तरह कार्यशील बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त बैठक में अधिकारियों को भूजल पुनर्भरण और जल संचयन के प्रयासों को और भी मजबूत करने के लिए पूरी दिल्ली में वर्षा जल संचयन करने वाले सभी ढांचों की कुल क्षमता का पूरी तरह से आकलन करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: श्री संधू ने आज दिल्ली में लू से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का भी निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि उन्होंने कूलिंग सेंटर्स की तैयारियों का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, विशेषकर अंतर्राज्यीय बस अड्डा तथा मेट्रो स्टेशनों पर तैनात मोबाइल रिलीफ वैन के पूरी क्षमता से काम करने और उनमें नागरिकों को जरूरी राहत और मदद देने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं रखने के निर्देश दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए आज एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये बैठक दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के प्रशासन और निगरानी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। श्री सूद ने बताया कि नीति नियम की प्रक्रिया के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री सूद ने बताया कि राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार कर उसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके लिए एक बहुविषयक समिति का गठन किया जाएगा जो कोचिंग संस्थानों की शुल्क संरचना, विद्यार्थी सुरक्षा और कल्याण तथा अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था जैसे विषयों पर दिशा निर्देश तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि ये नियम दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित, पारदर्शी

0: का जवाबदेही तथा छात्र केंद्रित वातावरण सुनिश्चित करेगा और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग सेवाओं को बढ़ावा देगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विकासपुरी विधानसभा के अंतर्गत अपने कैंप कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से बातचीत की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कैंप में उन्होंने सभी लोगों की समस्याओं, सुझावों और जनहित से जुड़े विषयों को सुना। श्री सिंह ने नागरिक समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों के साथ अपने आवास पर संवाद किया। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संवाद में जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा कर उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण, सुशासन और विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर आज राजौरी गार्डन विधानसभा में स्वच्छता अभियान चलाया। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छता को भी जन जन से जोड़ा है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज रोहिणी क्षेत्र के विभिन्न वार्डो का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वच्छता और धूल की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री खिरवार ने कहा कि निगम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार की भी घोषणा की गई है।
1: समन्वय परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक, लोक, आदिवासी और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। चयनित फेलोशिप और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकादमी की समन्वय परिषद ने वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए 106 युवा और कलाकारों का चयन किया है। ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम का अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज भगोड़े वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के सहयोग से की गई। सीबीआई के अनुसार वेंकट गर्ग एक कुख्यात गैंगस्टर है और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज हत्या, रंगदारी, सुनियोजित अपराध तथा अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े कई मामलों में वांछित था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया और देश छोड़कर भाग गया। सीबीआई ने कहा कि हरियाणा पुलिस और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम जॉर्जिया गई, जहां आरोपी को औपचारिक रूप से पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबोलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया।
1: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद जनक है। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं, ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।

श्रीमती गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिस्मिल का बलिदान और राष्ट्रभक्ति का संदेश हर पीढ़ी को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह और आशीष सूद ने भी राम प्रसाद बिस्मिल को नमन किया। दिल्ली में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की और संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम।
1: विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत दुनिया का एक बड़ा पावर हाउस बन चुका है, जो अब सिर्फ विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि खुद नई तकनीकें बना रहा है। अंतरिक्ष और रॉकेट तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोटेक और क्लीन एनर्जी, रिसर्च और पेटेंट में तो भारत तीव्र गति से अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान और नवाचार को स्थानीय समस्याओं के समाधान से जोड़ने के लिए जय अनुसंधान का नारा दिया और अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 38वां स्थान है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सुनिए ये प्रेरक भेंटवार्ता। वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के पूर्व सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से भेंट कर रही हैं दीपशिखा गुप्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, प्रोफेसर शर्मा का परिचय आप सबको दे दूं। आप IIT कानपुर से BTech करने के उपरांत पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने MTech किया केमिकल इंजीनियरिंग में, इसके पश्चात बफेलो यूनिवर्सिटी से आपने PhD किया। साइंस के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हुए आपने नैनो साइंसेज, कोलाइड्स आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यूनेस्को पदक आदि के साथ साथ 2025 में भारत सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। ये तो हुआ डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी का परिचय, लेकिन आज उनके बारे में और जानेंगे, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर शर्मा आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर दीपशिखा जी।
2: प्रोफेसर शर्मा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं, कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी साइंस के क्षेत्र में।
3: तो साइंस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, स्कूल डेज से साइंस में, मतलब साइंस की फिलोसॉफी में बहुत इंटरेस्ट था मुझे उस वक्त से। मैं इनफैक्ट साइंस सब्जेक्ट मैंने लिए थे, 11th में मैं बोर्ड का टॉपर था, तो उस वक्त लोग कहते थे कि IAS बनना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ साइंस में था और मेरा इंटरेस्ट था रिसर्च और टीचिंग में। तो मैंने कहा कि मुझे टीचर बनना है, तो पहला मैं सोचता था कि फिलोसॉफी करूंगा, तो लोगों ने कहा कि अगर फिलोसॉफी करोगे तो टीचर बनोगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग करके बन जाएंगे टीचर, डजंट मैटर। ये नहीं है कि साइंस में कुछ बहुत एक्सेप्शनल चीज है, हम जो भी चीज जिसमें हमारी रुचि हो उस पे पूरा ध्यान देके थोड़ा उसमें अपना पूरी तरह से कर्तव्य की तरह उसको करेंगे तो निसंदेह हमें सफलता मिलेगी और हम खुश भी रहेंगे। तो साइंस में जैसा मैंने बताया लगाव था, क्योंकि मुझे नए शोध में इंटरेस्ट आता है और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि और चीजों में बहुत ज्यादा शोध होता है, मतलब नई चीजें सीखने की, नई चीजें खोजने की जितनी संभावना मुझे साइंस में दिखी उस वक्त।

और मुझे उतनी नहीं दिख रही थी और चीजों में, तो इसलिए मैंने साइंस किया। और साइंस में भी मेरा ज्यादा इंटरेस्ट खाली एक चीज को समझने में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजों को समझ सकें साथ साथ में। तो जैसा कि मैंने बीटेक, एमएस और पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग में किया, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत तरह तरह की चीजें की। तो लोग सोचते थे कि मैं फिजिकल केमिस्ट हूँ, कुछ लोग सोचते थे मैं कि कंडेंस्ड मैटर फिजिसिस्ट हूँ, कुछ लोग सोचते थे कि मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूँ। इनफैक्ट इन द टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कंट्री मैं मटेरियल साइंस के अंतर्गत ही लिखा हुआ है मेरा नाम। तो जैसे कि पूरे देश के अंदर मैं 15वां साइंटिस्ट हूँ, 15वें नंबर पे हूँ मटेरियल साइंस के अंदर। तो ये मैंने वहीं से देखा, मैंने उनको नहीं बोला कि मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूँ, पर उन्होंने मतलब कुछ भी समझ के अपना वो उसमें किया। ऐसे बायोमेडिकल साइंस में कार्य किया, नैनो टेक्नोलॉजी में कार्य किया, और मैंने कुछ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में भी रिसर्च किया। तो इस तरह से जहां भी आपको क्यूरियोसिटी हो, जहां भी आपको लगता हो कि ये नई चीज है, उसमें आपकी रुचि हो, तो आप उसमें कार्य कर सकते हैं। वैसे भी आजकल जो साइंस है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया है। पहले जो हुआ करता था कि भाई एक ही, जैसे आप केमिस्ट हैं, फिर कहते किस तरह के केमिस्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, फिजिकल हैं, ग्रीन हैं, रेड हैं, क्या हैं, तो उसमें ही हम सिमट कर जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा का और जो मतलब कार्य करने का, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसका उद्देश्य नहीं है कि मैं कौन हूं। तो अगर मान लो मैं फिजिकल केमिस्ट हूँ लेकिन मैं पानी साफ नहीं कर सकता, तो मेरा कोई उपयोग नहीं है। तो अगर हो सकता है कि कुछ चीजें मैं जानता हूँ कि पानी को कैसे साफ किया जाए, लेकिन मैं सब चीज नहीं जानता पानी को कैसे साफ किया जाए। तो कुछ इसमें आएगा फिजिक्स का, इसमें आएगा बायोलॉजी का, कुछ इंजीनियरिंग आएगी, कुछ इनफैक्ट सोशल साइंस आएगी। क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने एक सोल्यूशन खोज लिया पानी को साफ करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य में आएगा। उसकी इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देनी पड़ेगी, उसका मार्केट देखना पड़ेगा, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में क्या है वो देखना पड़ेगा, उसका डिजाइन देखना पड़ेगा, उसकी एस्थेटिक्स देखनी पड़ेगी, उसकी सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंगल देखना पड़ेगा। तो ये सब जब तक नहीं होगा हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। खाली ये कहना कि बस मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर ही है, तो उससे मतलब कि शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा क्या अनुभव रहा। मेरा अनुभव ये रहा कि चाहे आप उसको फिलोसॉफी कहें या हिस्ट्री कहें, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, उसके सीखने के अंदर इंटरेस्ट है, और मैं जो भी कार्य करता हूँ उसको भी प्रभावित करता है। अगर मैंने कहीं बाहर से सीखा तो वो जो चीज है जो उस क्षेत्र में अभी तक लोगों को पता नहीं है, बाहर वालों को पता है, उस क्षेत्र में पता नहीं है, तो मैं उसको नया कोई आइडिया बाहर से लेके आऊं तो उसमें उससे ज्यादा मतलब अच्छे शोध होता है, उससे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैंने हरदम यही किया है। तो मैं हरदम डाइवर्सिटी, विविधता जिसको कहते हैं, तो चाहे वो ज्ञान में हो विविधता, चाहे वो हमारी नॉलेज में हो, चाहे वो हमारे आसपास किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो विविधता जेंडर की हो, वेमेन मैन सभी को मिलके जो प्रॉब्लम डिफाइन और सॉल्व करनी पड़ेगी, चाहे वो एज की हो। तो ये है कि जैसे कमेटी के अंदर क्या ये क्यों है कि सिर्फ 50 साल के ऊपर लोग ही होते हैं कोई भी कमेटी के अंदर। मैं जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था तो मैंने इसके लिए रूल बना दिए थे कि हर कमेटी के अंदर कम उम्र के भी हो, ज्यादा उम्र के भी हो, जेंडर भी हो उसके अंदर, जो वुमेन साइंटिस्ट है वो भी हो, मैन भी हो, और मतलब कि जो दूसरे मतलब रीजन के हैं जिनकी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो सभी हो। तो उसका ये कारण है कि हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो एक तरह के लोग ही नहीं समझ सकते, उसके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव कब आएंगे, जब हमें थोड़ा टॉलरेंस हो और लोगों के लिए, न केवल ये कहें अरे इसको क्या आता है, ये तो बहुत यंग है, इसको क्या पता है, वो कहते हैं। इस तरह के जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं जिनको स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, उसके कारण हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो मेरा लाइफ का लेसन शुरू से रहा कि विविधता। अब उसका कैसे डेवलप हुआ, मेरे पिताजी जो थे वो इरिगेशन में इंजीनियर थे, वो थोड़े ज्यादा ही ऑनेस्ट थे, तो उनका ट्रांसफर हर साल में हो जाता था। तो मैंने मतलब 11वीं क्लास करने तक करीब 8 स्कूल चेंज किए, तो कभी इधर पढ़े कभी उधर पढ़े, कभी हिंदी में पढ़े कभी इंग्लिश में पढ़े, कभी सेंट्रल बोर्ड में पढ़े कभी राजस्थान बोर्ड में पढ़े। हर साल नए दोस्त होते थे, कभी कोएड था कभी नहीं था, नए टीचर होते थे, उनकी पढ़ाने की शैली अलग अलग थी सबकी। तो लेकिन उससे मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि उससे विविधता का मतलब समझ में आया, कि बजाय ये कहने के कि नहीं नहीं मुझे एक ही तरह की चीज पसंद है, एक ही तरह का खाना पसंद है, एक ही रेस्टोरेंट पसंद है। आजकल क्या मैं देख रहा हूँ कई जगह कि हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड हैं, 12वीं क्लास तक साथ साथ रहे, फिर वो कॉलेज भी साथ साथ चले गए, और उसके बाद ठीक है अलग अलग जगह चले गए, लेकिन जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है विविधता को समझने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अब जो लोग हमारे जैसे नहीं है उनसे बात नहीं करेंगे तो हमें कोई नई चीज सीखने को नहीं मिल सकती। तो जो लोग 17 साल साथ साथ रहे उन्होंने एक दूसरे से सीखना बंद कर दिया, क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे की तरह ही थे, उनकी एज भी बराबर थी। अच्छा मैंने ये भी देखा जिनकी एज बहुत अलग
अलग हो हमसे, उनसे अच्छा।

0: संवाद स्थापित नहीं कर पाते। मैं 3 साल अपने नाना के साथ रहा, तो वहाँ पर वो 60 साल के ऊपर लोग रहते थे सारे, और मैं था 6 साल का, तो मेरे को उनसे बहुत कंफर्ट था। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा ये तो बुढ़ा आदमी ऐसे कैसे बात करेंगे। अभी जो मेरे दोस्त हैं वो 5 साल से लेके 95 साल तक के हैं, ओके, उन्हीं से मुझे वो सीखने को मिलता है। और खासकर पीपल 20s में है, 30s में, 40s में, माय यंगर फ्रेंड्स, उनसे मुझे साइंस भी सीखने को मिलती है। अब AI है, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो रही है, कुछ भी है, तो मैं हरदम उतना जानता हूँ जितना हमारे यंगर लोग जानते हैं। और मैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई देखो, आजकल लोग बहुत ये कहते हैं कि मैं जेन जी हूँ, मैं जेन अल्फा हूँ, मैं मिलीनियल हूँ, मैं बेबी बूमर हूँ, आप बेबी बूमर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बना लिया है, मतलब उस जैसा कि ऐसे है कि लोग सोचते हैं कि ये बुढ़ा आदमी है। मैं कहा ऐसा है कि ओल्ड आदमी कोई नहीं होता इस दुनिया के अंदर। आई एम यंग एंड यू आर यंगर, और भी लोग हैं जो मुझसे, वो यंग है, मैं यंगर हूँ और मेरे से यंगर है। तो विविधता को समझने का मतलब ये है कि हम उनका स्टीरियोटाइप नहीं बना लें। तो अगर ये हम समझ लेंगे ये आदमी बहुत यंग है, ये बुढ़ा है, ये औरत है, ये आदमी है, तो उनसे जो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो उसमें हमारा जो संवाद है वो ना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना हो सकता है। तो ये सबसे गहन जो चीज मैंने दुनिया में देखी है, समझी है, सोची है, वो सिर्फ यही है कि चाहे साइंस हो, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, लेकिन हमें डाइवर्सिटी, विविधता जब हम समझेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उसके द्वारा एक्साइटमेंट होगा, उसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये सबसे अहम बात है सोसाइटी में। हमारी जो कल्चरल रिचनेस है, भारत में एकदम ऐसा ही था कि हमारी कल्चरल रिचनेस डाइवर्सिटी से आई, जबकि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे वो मोनोलिथ बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यही स्टैंडर्ड है, ऐसा ही रंग हो, ऐसा ही मतलब कि परिपाटी हो, यही कल्चर हो, इसी भगवान को माने, इसी बुक में विश्वास करें। तो वो सभ्यता अलग है। हमारी जो सभ्यता थी वो सभ्यता बहुत स्टेबल है, क्योंकि डाइवर्सिटी के द्वारा स्टेबिलिटी आती है, और जो एक दूसरे की मतलब नकल की हुई सोसाइटी होती है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती कभी, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड हो। जब कोई नया चैलेंज आएगा वो कॉलेप्स हो जाएगी। डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शर्मा आपने कि डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया, तो सामान्य भाषा में हमारे उन लिसनर्स के लिए क्या आप बता सकते हैं कि इस फील्ड में क्या काम आपने किया और क्या प्रभाव रहा उसका?
0: तो पहले मैं बताऊं कि नैनो क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो का मतलब है कि 1 मीटर लें, नैनोमीटर, 1 मीटर लें उसका 1 बिलियन टाइम स्मॉलर, छोटा उससे 1 बिलियन टाइम स्मॉलर जो चीज होगी उसको हम बोलेंगे नैनोमीटर। तो कई चीजें जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटी छोटी चीजें, इनको देखा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा उसको देखते हैं, वो नैनो होती है। अगर उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टी समझें उसको नैनो साइंस बोलते हैं, और उसका उपयोग करें किसी चीज के लिए, जैसे कि आजकल हम नैनो ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, जो चिप्स बनती हैं, इस सब के अंदर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग होता है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसी भी नैनो जो मीटर की चीजें हैं, नैनोमीटर हो, 10 नैनोमीटर हो, 100 नैनोमीटर हो, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको कैसे समझें कि वो क्या कार्य करती हैं, उनको कैसे उपयोग में लाएं, तो ये सब नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा संभव होता है। मेरी खुद की रिसर्च जो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में थी उससे रिलेटेड है नैनो फैब्रिकेशन, नैनो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। आप कोई छोटी चीज बनानी है तो उसको कैसे बनाएंगे, वो तो आप देख भी नहीं सकते, आपको कोई मशीन ड्रिल लेके नहीं बना सकते, तो उसके लिए वो नैनो ड्रिल क्या चीज है, उसमें कोई भी आपको कोई छोटी चीज बनानी हो, उसको बनाने के 2 तरह से बनाए जाते हैं, या तो उसके अंदर आप कोई मशीन टूल यूज करें, या चाहे लेजर वेजर यूज करें, कुछ रेडिएशन यूज करें, उसके द्वारा बनाएं। एक दूसरा मेथड है बनाने का, उसको बोलते हैं सेल्फ असेंबली। जैसे कि आपने देखा कि नेचर के अंदर, हमारे नेचर के अंदर वृक्ष हो, कुछ भी चीज है, तो उसको कोई बना नहीं रहा, वो अपने आप बन रही है, और उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सेल हैं, सेल के अंदर भी चीजें हैं और भी छोटी हैं नैनो स्केल की, उनको मतलब कोई मशीन के द्वारा नहीं बन रही, अपने आप बन रही है, उसको कहते हैं सेल्फ असेंबली। तो सेल्फ असेंबली जिसके अंदर नॉलेज भी हो, जैसे DNA है, उसके अंदर नॉलेज है कि वो सेल्फ असेंबल कैसे होगा, तो हम इस तरह के नए मेथड बनाए। तो मैं सेल्फ असेंबली में कार्य करता था, तो ये चीज है कि हमने बहुत सारे कुछ चीज बनाई लेकिन वो सेल्फ असेंबल होके कोई दूसरी चीज बन गई जो हम बनाना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी मशीन को यूज किए। तो इस पे कार्य किया था, मेरे ज्यादातर कार्य इस पे है। और ये समझना कि जब चीजें बहुत छोटी होती हैं तो किस तरह का बर्ताव करती हैं, वो किस तरह का बिहेवियर उनका होता है, है, किस तरह की उनकी प्रॉपर्टी होती है, ये समझना, इसकी जो थ्योरीज होती है उस पर मैंने कार्य किया था। और फाइनली मैंने कार्य किया बायोसेंसर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने के लिए। बायोसेंसर मतलब ऐसे कि बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्शन, जब आपके पूरे बॉडी के अंदर 2-4 ही सेल हों कैंसर के, तो उनका पहले पता करना कि भाई इसकी संभावना है कैंसर होने की, इसके पहले कि वो बनना शुरू हो जाए। तो इसके लिए बहुत

0: सेंसिटिव बायो सेंसर की जरूरत होती है, तो वो हमने बहुत तरह के बायो सेंसर बनाए नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित।
1: प्रोफेसर शर्मा, अभी बहुत अच्छी बातें आपने बताई अपने कार्य के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जिस पर आपने रिसर्च किया, जिस पर आपने कार्य किया, लेकिन कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक गीत का, तो हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: हाँ, एक मेरा गीत था, बहुत प्रिय था, जब मैं चौथी कक्षा में था, तो वो था, एक मूवी थी अनोखी रात, मैंने देखी थी।

0: के जल में।
1: इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद एक बार फिर से लौट आए हैं अपने कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी से, जिन्हें 2025 में भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। साइंस के एक क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। और आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर शर्मा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बतौर सेक्रेटरी एक लंबे समय तक कार्य किया और कई सारी पॉलिसीज के भी आप मेकर रहे वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है जो करंट पॉलिसीज हैं इस समय भारत में, वो विज्ञान के प्रसार और प्रचार में कहाँ तक सहायक है?
0: बेशक बहुत सहायक है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारे देश को इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कभी आप बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बदल रहा है, देश बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है। तो जैसे कि मैं शुरू करता हूँ, मैंने 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था 2015 की जनवरी में। उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हुआ जो करीब 4,000 करोड़ रुपए का था। तो उसके द्वारा हमने बहुत सारी सुपर कंप्यूटर की चीजें भारत में ही बनाना शुरू की और उसका लक्ष्य है कि करीब 50 सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर विकसित करके उनको एस्टेब्लिश करना। उनमें से 20 से ज्यादा हो भी चुके हैं और अभी कार्य चल रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम प्रिपेयर्ड रहे, कैसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहे। दूसरा था मिशन जो कि बहुत अहम था, करीब 6 साल पहले लॉन्च हुआ, मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बेसिकली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दूसरा है उसका, क्योंकि साइबर फिजिकल का मतलब है कि साइबर लाइक AI और फिजिकल लाइक फिजिकल मशीन, उन दोनों के संगम से जो चीज बनती है, मतलब इंटेलिजेंट मशीन, उसके लिए मिशन शुरू किया, वो भी 4,000 करोड़ रुपए का। अब उसको 6 साल हो गए। तो ये जो AI अभी शुरू हुई है, तो हमने शुरू से मतलब 8 साल पहले इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि ये हो जाएगी, तो कि हमें इसमें समय नहीं गंवाना पड़ा। पिछले 6 साल के अंदर उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह इस मिशन के द्वारा डेवलप हो गए। अब वो आगे बढ़ेंगे, मतलब AI तो बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, उसका कभी अंत नहीं होगा। तो हमने उसके लिए जो फाउंडेशन, जो नींव थी, उसकी शुरुआत कर दी। इसी तरह से तीसरा मिशन शुरू हो गया, वो है क्वांटम टेक्नोलॉजीज का। वो बहुत तेज से उभर के आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत कार्य किया गया था पहले और अब वो है करीब 6,000 करोड़ रुपए का। तो उसके द्वारा जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन, और ये जो सारे अपने बैंकिंग वगैरह होती है उनको बहुत चैलेंज हो जाएगा अगर उनके कोड है जो टूटने लग गए फॉर एग्जाम्पल, तो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सब जो दिशाएं हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी मिशन के द्वारा डेवलप की जा रही है, वो सब फ्यूचरिस्टिक है, तो जिससे कि देश प्रिपेयर्ड रहे उसके लिए। उसके साथ साथ ही अभी एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है, वो है 1,00,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है जिसको RDI फंड बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड। वो क्या हुआ है कि इंडस्ट्री जो है वहां पे रिसर्च हो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो अभी तक हम सोचते थे सिर्फ यूनिवर्सिटी IIT में रिसर्च होगी, लेकिन इंडस्ट्री में जो रिसर्च होती है वो बहुत उपयोगी होती है, तो उसको भी आगे बढ़ावा मिलना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा नए प्रोडक्ट आएंगे, उसके द्वारा हम कॉम्पिटेटिव रहेंगे वर्ल्ड के अंदर। तो अब है जो 20,000 करोड़ रुपए पर साल 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया है, उसके द्वारा मुझे लगता है कि इससे बहुत परिवर्तन आएंगे। तो इस तरह बहुत सारे मतलब कार्य हो रहे हैं, काफी मंत्रालय हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में कार्य करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उनका बजट भी बढ़ता जा रहा है, हमारे साइंटिस्ट भी पहले से काफी ज्यादा एम्पावर्ड हो गए हैं और उनकी संख्या भी बढ़ गई है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया IIT कानपुर में 1990 में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर, तब हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 6 PhD स्टूडेंट थे और फैकल्टी मेंबर 20 थे। फैकल्टी मेंबर 30 हो गए लेकिन PhD स्टूडेंट 100 के ऊपर, मतलब कि रिसर्च का जो महत्व है वो बढ़ता गया। पहले रिसर्च का महत्व बहुत कम था, तो 90 के दशक के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, न रिसर्च के लिए पैसा था, न कल्चर थी, कुछ भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद ये बढ़ता गया, तो अब ये बढ़ता जा रहा है बहुत तेजी से और बढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसने बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के विकसित हुआ हो। तो ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बिना साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ भी विकास संभव नहीं है, और है जो हम वापस कॉलोनियल टाइम हो जाए।

0: अगर मान लो पीसी छूट गया तो।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रोफेसर शर्मा, लंबे समय तक आईआईटी कानपुर में आपने अध्यापन कार्य भी किया, बहुत सारे बच्चों के आप रोल मॉडल भी रहे, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कई सारे बच्चों को आपने गाइड किया, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके आइडियल कौन थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे?
0: देखिए, मेरा कोई एक आइडियल कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं हीरो वर्शिप में कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन हर आदमी गुरु है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी से ज्यादा सीखा, किसी से कम सीखा, किसी से नहीं सीखा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझे ऐसा बनना है, आपको अपना बनना है, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, एंड सो हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर आदमी की एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन अलग अलग होते हैं, तो आप किसी की नकल नहीं कर सकते। अच्छा, क्या है, मैंने प्रॉब्लम ये मेजर देखी है, सब लोग कहते हैं गांधी जी की बड़ाई करते हैं, लेकिन कर कोई नहीं सकता, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक तरह का स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाता है, क्योंकि मैं कहता तो हूं कि ये चीज बढ़िया है, इसका मुझे अनुकरण करना है, लेकिन कर नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या होता है कि थ्योरी एक हो जाती है और प्रैक्टिकलिटी और एक्सपीरियंस एक हो जाता है, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हालांकि बचपन में मेरे कुछ हीरो थे, और मेरा सबसे बड़ा हीरो था रुद्र, महाभारत में है रुद्र। तो मेरे हीरो, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई अर्जुन होगा, शिव होंगे, या कि कृष्ण होंगे, या कुछ उस तरह के ज्यादा होते हैं, राइट, लेकिन वो बहुत अलग तरह के करेक्टर थे रुद्र। उनका नाम शायद सुना हो, नहीं भी सुना हो, प्रोटो शिवा। तो जैसे कि शिव का नाम ऋग्वेद में नहीं आता, रुद्र का नाम आता है खाली। तो ऐसे है कि बट दोज आर मिथिकल हीरोज। तो रियल सी व्हाट हैपेंस इज दिस, इन रियल लाइफ आप किसी को हीरो बनाते हैं, उसको पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये तो कितना बदमाश है, देखो ये तो हमारी ही लिव अप टू आवर आइडियल्स। तो पहले आपने उसको हीरो बनाया, फिर अपने आइडियल उस पर थोप दिए, फिर कहा कि ये आदमी हमारे हिसाब से खरा नहीं उतरता, और न आप उसका अनुसरण कर पाए, न वो आपका अनुसरण कर पाया। मेरा मानना यह है कि देखिए, आपको अच्छी चीजें, इफेक्टिव चीजें बहुत सारे सोर्सेस से सीखने को मिलती है, और वो सब इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो सब हमारे हीरो हैं। तो अगर मान लो कि ये रिक्शा वाला है, मैंने देखा कई रिक्शे वालों को, तो एक बार मैं देखा, मैं वो बचपन की बात है, बचपन नहीं, मैं बीटेक कर रहा था, मैं गया था सिटी, मैंने देखा एक रिक्शा वाला बहुत तेज धूप के अंदर, बहुत गर्मी के अंदर, ऐसे एक हैंडल पे सिर लगा के और पांव गद्दी पे रख के सो रहा था। मैंने कहा देखो, दिस मैन इज सो सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। फिर मैंने ये इस पर ज्यादा रिसर्च किया कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है लाइफ के अंदर। हम सब ये सोच रहे हैं कि हैप्पीनेस के लिए हम ये करेंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगी, पर हम गलत सोच रहे हैं। तो अच्छा, अभी मैं बताऊं आपको, एक कॉन्फ्रेंस में गया दिल्ली में, उन्होंने बुलाया, वो कॉन्फ्रेंस ही हैप्पीनेस पे थी। तो सब लोग अपने अपने विद्वान लोग विचार प्रकट कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो कोई प्रोफेसर था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कुछ पेज थी, सेलिब्रिटी थे, कोई था, ये सब है ना, वो बहुत गंभीर बातें कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो मेरा नंबर आया तीसरा नंबर, तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि पहले आप सब लोग खुश हो जाओ, फिर बात करना हैप्पीनेस की। आई सी वेरी सीरियस पीपल हियर। मैंने कहा यहाँ पे कोई चीयरफुल तो दिख नहीं रहा मुझे, ये ऐसा अपनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है। मैंने कहा पहले आप हैप्पीनेस सोचो। फिर मैंने कहा कि देखिए, अभी मैंने उनको दो चार जोक सुनाए तो उन सबको पसंद आए। फिर मैंने कहा देखिए, अब मैं जा रहा हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स नाउ, आप अपनी कॉन्फ्रेंस करो और मैं अपने फ्रेंड्स के जाके बैठता हूँ। सी द प्रॉब्लम नाउ विद आवर नॉलेज इज वेरी बुकिश एंड देन इज रीइन्फोर्स्ड। सी, अपनी बुक्स कहती है कि आप हीरो कौन होने चाहिए, तो वो बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं कि ये है हीरो, वो है हीरो, बाकी लोग बढ़िया नहीं है। सो इससे किसी का आज तक पर्पस सॉल्व नहीं हुआ हीरो बनाने से। मैं तो मतलब कि जो बॉलीवुड के हीरो उनको नहीं जानता। अभी क्या हुआ कि मैं एक पार्टी में गया था, 10-11 लोग ही थे उसमें, एक्सक्लूसिव पार्टी थी। तो मैं एक आदमी मेरे बगल में खड़ा था, मैं उसे पूछा आप क्या करते हैं, तो बोला मैं सिंगर हूँ। अरे, आई डेंट रिकॉग्नाइज हिम, टर्न आउट वो तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा सिंगर है, उसको हर आदमी जानता है, अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। तो मैं उसको पूछ रहा, मैं बोला कि कैसे सीख लिया आपने गाना, मैं उसे अधिक आता होगा मेरी तरह, और क्या है। ऐसे न मैं क्रिकेटर्स को पहचानता हूँ, न मैं बॉलीवुड के लोगों को पहचानता हूँ, पुराने लोगों को पहचानता हूँ, जैसे हेमा मालिनी, नूतन वगैरह। ओके, लेकिन अब मेरे को इन हीरो हीरो में इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी। ओके, आई वांट टू सी ए गुड मूवी, लेकिन मुझे हीरो वर्शिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत फेमस क्रिकेटर है वो मेरे साथ खड़े थे, दूसरे एक बहुत फेमस सिंगर है वो मेरे साथ बैठी थी एक एयरपोर्ट पे, किसी को मैं पहचान नहीं पाया। दे वर ऑल्सो वेरी अम्यूज्ड, बोले ये समझा एक आदमी मिला मुझे भारत में जो मुझे पहचानता नहीं है। He was very impressed, ये बॉलीवुड सिंगर। तो बोला उसने ना मेरे गले में हाथ डाला, बोला हमारी फोटो डोज से, बोला मेरा प्रोफेसर है ना, उनको कुछ पता नहीं है, बढ़िया है। सो एनी वे, वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल मेरे सभी दोस्त जो सुन रहे हैं वहाँ पे, कि किसी को हीरो बनाना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये मैं बहुत सिंसियरली बोल रहा हूँ आपको, समझ के बोल रहा हूँ, मैं खाली ऐसे नहीं बोल रहा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अच्छे गुण नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में प्रतिभा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में इंस्पिरेशन नहीं आनी चाहिए। इंस्पिरेशन बहुत सारे सोर्सेज से आती है, और हम दिन में जितने लोगों से मिलते हैं वो सभी लोग हीरो हैं अपने अपने कार्य में, है ना, और उनसे हम कुछ समझ सकते हैं, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, अगर हमें

0: पसंद आए, वो हमारे उपयुक्त हो तो आप उसे ले लीजिए और आप यू नो शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। दे सेड बट यू शुड नेवर वर्शिप ए हीरो। जब आप हीरो को वर्शिप करते हैं तो आप उसको भी डिग्रेड करते हैं। अरे मैं आपको अभी फाइनल बात बताता हूँ। देखिए इतने सारे मैंने IAS देखे हैं, ये सब देखे हैं। अब क्या है, उनके पीछे लोग शुरू से भाग रहे हैं जब से वो 22 साल के हैं, तो आपने उनको डिग्रेड कर दिया। अब आप कहते हैं कि उनकी हीरो वर्शिप करके चाहे आप मतलब दिल से करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अपने उसके लिए कार्य करवाने के लिए या अपना जो भी करने के लिए ना हर लोग जाके उनकी प्रशंसा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो भी बहक जाते हैं। न केवल आप उन बहक रहे हैं बल्कि उनको भी बहका रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे कि यू नो लेट पीपल रिमेन ह्यूमन, लेट एवरीबॉडी रिमेन ह्यूमन, एंड न आप उनको हीरो बनाए न आप उनको विलन बनाए, है ना। आप समझें कि वो ह्यूमन है और उनसे आप जो कुछ सीख सकते हैं, जो उनसे कार्य करवा सकते हैं, वो बेशक आप करवाइए।
1: बहुत अच्छी बात आपने बोली कि लेट पीपल रिमेन ह्यूमन और वी शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। तो चलते चलते प्रोफेसर शर्मा, हम चाहेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले बहुत से लोग हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, बहुत से छात्र हैं जो विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए कुछ एक संदेश हम चाहेंगे आज आप साझा करें।
0: देखिए जिज्ञासा जो है ना, क्यूरियोसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के विज्ञान में। हर नॉलेज एक्चुअली विज्ञान है, तो हमने उसको अलग कर दिया। आजकल वो सोचते हैं कि एक विज्ञान है एक फिलोसॉफी है, ऐसे सोचते हैं लोग, वो गलत है बिल्कुल। हमारी सारी जो नॉलेज है वो विज्ञान है और पहले उसको उसी तरह से लिया जाता था। हमारी संस्कृति में भी हर चीज को डिबेट करके रेशनली उसको डेटा के द्वारा उसको एक्सपीरियंस के द्वारा ऐसे तोला जाता था, ऐसा स्टैटिक नॉलेज कोई नहीं थी। तो ये जो जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी है टू लर्न मोर, वही सब कार्य करती है। पैशन, क्यूरियोसिटी कि भाई ये खाली मेरी जॉब नहीं है, ये खाली मेरी जॉब नहीं है, जॉब भी है लेकिन उसके अलावा क्या मैं एक व्यक्ति के रूप में क्या मैं डेवलप हो सकता हूँ, तो मेरा दिमाग कैसे डेवलप होगा। मेरा दिमाग सिर्फ इसे डेवलप होगा कि मेरे को नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। नई चीज सीखने को तभी मिलेगी जब मुझको क्यूरियोसिटी होगी कि ये कैसे कार्य करता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। एंड फाइनली द मीनिंग ऑफ लाइफ इज ऑल्सो साइंस, क्योंकि साइंस जो हम पढ़ते हैं वो कभी नहीं बताएगा कि इस लाइफ का मतलब क्या है। तो उसका मीनिंग ओनली वी ब्रिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज नो मीनिंग, इज व्हाट यू नो मीनिंग दैट वी ब्रिंग टू लाइफ, ये दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग। तो हाउ डू वी कल्टिवेट दैट, कि इसका क्या मतलब है, यानी इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका विजडम क्या है। तो ये सब करने के लिए हमें क्यूरियोसिटी की जरूरत है। और आपको अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज जो जिंदगी में इम्पोर्टेंट है वो ये है, पैशन, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ। बाकी चीजें बताई जाए, डाइवर्सिटी है, वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आपको अगर सीखना है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप अपने ऐसे लोगों से नहीं सीख सकते, उसे दूसरे तरह के लोगों से सीख सकते हैं। तो ये सब किस लिए है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि हमें नई चीजें सीखनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शर्मा आपने, और आज आपसे मिलकर हमें लगता है न केवल विज्ञान बल्कि जीवन और जीवन के अर्थ को भी समझने में कहीं ना कहीं हम सभी को सहायता मिली है और मिलेगी। फिलहाल आज हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातें हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं कि उनके कैरियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए, के वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, ऐसे उन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के पूर्व सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी INSA के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से दीपशिखा गुप्ता द्वारा की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आकाशवाणी कानपुर के सौजन्य से प्राप्त इस विशेष कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अजय कटियार और दिलीप झा।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं गीत मालिका।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरस्वती चंद का ये गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म नया दौर से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

0: Yeah.
1: लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। आइए सुनते हैं फिल्म उपकार का ये गीत मुकेश की आवाज में।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीत मालिका कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज, डीएलएम 810 किलोहर्ट्ज पर 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting, Governing Council की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
3: यूथ टू वर्किंग लाइफ टू ओल्ड एज।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% करकर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: This visit will provide an opportunity. यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी। पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: सबसे आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक सारा मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी स्कीम के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: करने का संबंधित सहायता पहुँचाते हैं। जब मिल जाएगा सबको अपना निश्चय मित्र तैयार, तब हो जाएगी हमारी जी और टीवी की हार।
1: निश्चय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीवी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निश्चय मित्र बनकर टीवी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीवी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं

मुकेश कुमार बल। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख

का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से 9:15 हुए हैं। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस का आगाज होता है। आइए समय अब एक नजर डालते हैं तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स पर। 9:20 पर यानी अब से कुछ ही देर में एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिसमें आज आप सुनेंगे बेगम अख्तर की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। 9:42 पर खबरें नशर की जाएंगी।

साइंस टिप्स का वक्त रहेगा रात 9:55, शाम के 10 बजे सुनिएगा प्रोग्राम हर्फ सुखन। 10:30 पर सामाइन की फरमाइशों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद पेश किया जाएगा। यह प्रोग्राम जारी रहेगा।

ग्यारह बजकर 45 मिनट तक। जी समय तमिल शाह प्रोग्राम जारी रहेगा शब के 11:45 तक। दौरानी प्रोग्राम रात 11 बजे खबरें बड़े सखीर से नशर की जाएंगी।

बज के 42 मिनट पर सुनिएगा विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया ख्याल राग तिलक कामोद में। जबकि 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी। 12 बज के 10 मिनट पर क्लासिक की मौसीकी के प्रोग्राम में सुनिएगा भावी प्रसाद का बांसुरी पर बजाया राग माज खम्माज और मारू बिहाग। 12 बजकर 30 मिनट पर पुराने फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब पेश किया जाएगा और 12 बजकर 50 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी। तो समय ये थी उन प्रोग्राम्स की जानकारी जो आज आप उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस में सुनेंगे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। और डीजी समाइन अब सुनिए प्रोग्राम एक फनकार। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे बेगम अख्तर की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं बेजा गालिब के कलाम से।

अभी आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में सुनिए सेहत के हवाले से कुछ बातें। समय आजकल हार्ट अटैक, दिल का दौरे की शरह में तश्वीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजूहत नासिक खुराक, ज़हनी दबाव, गैर मुतहरिक तर्ज जिंदगी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी खामोश बीमारियां हैं। आज हम बात करेंगे खवातीन में हार्ट अटैक का मसला। खवातीन के दिल की सेहत पर अक्सर चर्चा नहीं होती है और न ही इस पर ज्यादा मुताला किया जाता है, जबकि दिल की बीमारियों से खवातीन की शरह अमवात कैंसर से कहीं ज्यादा है। खवातीन में हार्ट अटैक की अलामतें बिल्कुल अलग होती हैं। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस खतरे को यानी खवातीन के दिल के दौरे को कम किया जा सकता है। कुछ बातें खवातीन और मर्द दोनों के लिए कारगर हैं, जैसे सेहत बख्श खुराक, मुतवातर वर्जिश, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना वगैरह। खवातीन में हार्ट अटैक के रिक्स फैक्टर यानी जोखिम का आंसर क्या है? जी हाँ, वो है हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना, डायबिटीज, किसी भी किस्म का नशा और फैमिली हिस्ट्री यानी घर के हालात। ये सारे फैक्टर मर्द और खवातीन दोनों के लिए एक वार्निंग है, होशियार हो जाइए सभी लोग। लेकिन खवातीन को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि खवातीन हिसास दिल की मालिक होती हैं, बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हैं, जरा सी बात पर हद से ज्यादा परेशान हो जाती हैं और इसका असर बराह रास दिल पर पड़ता है। जो खवातीन प्रेगनेंसी के दौरान प्रीक्लैम्पसिया बीमारी का शिकार होती हैं, उन्हें बाद में दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। प्रीक्लैम्पसिया हमल के 20वें हफ्ते से शुरू होने वाली एक संगीन सूरत हाल है, जिसमें अचानक हाई ब्लड प्रेशर और लीवर किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली अलामतें जाहिर होती हैं। इसके अलावा जिन खवातीन को 45 साल की उम्र से पहले मेनोपॉज होता है, उन्हें भी दिल की बीमारी का खतरा बना रहता है। क्या है खवातीन में हार्ट अटैक की अलामतें, बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।

लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इस पर भी जल्दी ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि किसी भी बीमारी का इलाज वक्त रहते मुमकिन है। बस जरूरत है हमें और आपको बेदार रहने की। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। किसी और दिन फिर हाजिर होंगी सेहत से जुड़ी कुछ और बातों के साथ। हेल्थ टिप्स का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मरियम बेबी 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम हरफे सुखन।
1: गजल को जदीद रंगो आहंग अता करने में हसरत मोहानी और फिराक गोरखपुरी के अस्माए ग्रामी सरे फहरिस्त हैं। फिराक की गजल में क्लासिकी आबो रंग के साथ बड़े चित्री अंदाज में जदीद आहंग दर आया है। क्लासिकी जौके गजल उसको खुशदिली के साथ इंगेज करता है। जदीदतर गजल जिस जौक पर बाज़ौकात बार गुजरती है वही जौक फिराक की गजल से पूरे तौर पर महजूज होता है बल्कि जिला पाता है। इस गजल का मतला है निगाह नाज ने पर्दे उठाए हैं क्या क्या, हिजाब अहले मोहब्बत को आए हैं क्या क्या। इस शेर की लफ्जियात और तर्ज अदा क्लासिकी रंग के हैं मगर मजमून से इन्हिराफ और इज्तिहाद का पहलू है। अंदाज़े बयान सादा और पेचीदगी से आ रही है मगर खूबसूरत रम्ज से पुर है। शायर कहता है कि निगाह महबूब जो हमेशा नाज़ो अंदाज में मशगूल रहती है उसने रफ्ता रफ्ता पर्दा नशीनी को तर्क कर दिया है और हुस्ने महबूब वाशिगाफ होकर सामने आया है। मिसरे सानी में भी रिवायत से इन्हिराफ है। उर्दू गजल में आशिक हिजाब नहीं करता बल्कि हर सूरत ताक झांक में मसरूफ रहता है। मुआशरे के बदले हुए रंग की ये शेर अक्कासी करता है। इसी गजल का एक और शेर मुलहजा फरमाए जहां में थी बस एक अफवाह तेरे जलवों की, जहां में थी बस एक अफवाह तेरे जलवों की, चरागे दैरो हरम झिल मिलाए हैं क्या क्या। इस शेर में भी कोई पेचीदगी नहीं है। मजमून भी कदीम है यानी महबूब का रुख सूरज की तरह रोशन होना। लेकिन इस शेर में भी अफवाह का लफ्ज इस्तेमाल करके फिराक साहब ने इसको नया बना दिया है। अफवाह बिलुमूम गजल का लफ्ज नहीं है। शायर का कहना है कि महबूब जलवा फरोज होगा इस खबर ने ही जो कि सही भी नहीं थी ऐसा असर किया कि मंदिर और मस्जिद के चिराग गुल होने लगे। गजल में असल शय कनाइया और इशारा है और इन चीजों को बैन सतूर दाखिल करना जिनका बयान शेर में नहीं है बड़ी बात है। इस गजल का मकता है फिराक राहे वफा में सुबुक रवि तेरी, फिराक राहे वफा में सुबुक रवि तेरी, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। ये शेर बज़ाहिर शायर ने खुद अपने से ही मुखातिब होकर अपनी तारीफ में कहा है। माने के लिहाज से शेर में कोई पेचीदगी नहीं है यानी शायर कहता है कि जिस राह में बड़े बड़े टगमगा जाते हैं उसे फिराक वफा के उस रास्ते से तो आराम से चलता हुआ गुजरता है। ये अम्र दूसरों के लिए बाईस रश्क हो सकता है। राह वफा उर्दू गजल का आम लफ्ज और इस्तियारा है। इससे मुराद इश्क का रास्ता है जिसको आशिक साबित कदमी से तय करता है। लीजिए फिराक की इस गजल के कुछ अशार सुनिए मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में।

जो पेचीदा चीजें हैं इन सब में उसको महारत है। अब ऐसे महबूब को ना अल्हड़ कहते बन पड़ता है, ना सब्र करने की तहरीक मिलती है, अलबत्ता हाथ आता है जी का जलना और कुढ़ना। इस गजल का एक और शेर मुलहजा करें। चार अगरी बीमारी दिल की रस्म शहरे हुस्न नहीं, चार अगरी बीमारी दिल की रस्म शहरे हुस्न नहीं, वरना दिलबर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। मीर तकी मीर की गजल समाप्त फरमाइए अहमद हुसैन की आवाज़ में।

शिवनगर अमरावती के ही रमाई शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गुड़ा ने वली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, अनुराग मोहन, नूरमहल मैसूर सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहां, तलत जहानाज और फरज जहां, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानंद येले, नवदीप येले और निलेश येले, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किसुतासु, घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, बामुलवाड़ी महाराज से सोपनताए दे वसंत राव भोजने, पीएस नोहानकर और तुषार करांगले, नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और रविन्दर सिंह छाबड़ा। और समय अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है संग दिल। नगमा निगार हैं राजेंद्र कृष्ण और मौसीकार हैं सज्जाद। इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है आप सबने। आप हैं नंदेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस गोहानकर, नर्मला नोहानकर, विशाल नोहानकर और सोपन ताईदे, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, खंडवा रोड सनावट से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुडाना, दादा बाबू रोड गिड्डी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और हसन नवाज, और वली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और इनके साथी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राजेश और राशि राजेश, आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर, और ये अगली फरमाइश आई है मेल के जरिए, मेरे नगर उमर के महाराज से अभिजीत गोहानकर, राही श्रीमती सरिता गोहानकर, अर्जुन गोहानकर डग्गू और इनके साथ ही। जी सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। फिल्म का नाम है संग दिल, आवाज़ें तलत महमूद और लता मंगेशकर की।

और सुमन अगला नगमा जो आप सुनेंगे उसका फिल्म का नाम है शारदा आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और अर्शा भोसले की मौसीकी तरतीब दी है सी रामाचंद्रन ने। सुनने की फरमाइश आप सबकी है। हम अपने समय को बता दें कि आज भी तमिल शाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:45 तक और इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा बबू बालूजा और सागर बालूजा ने। अनारकली बाजार जलगांव से सुनील पाठक कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीबी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा केतन हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा कालका से शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज और रनिका डवाली से बसंत सिंह चन्न राजकुमार कुलदीप गांधी सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानंद येले नवदीप येले और अशोक येले बनाई छत्तीसगढ़ से ये रिपीट मैसेज है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा ममता अरोरा और कीर्ति अरोरा और गणेशपुर झुंझुनवाड़ा एटा उत्तर प्रदेश से शेख क्षमा परवीन एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान

और पंडर कावड़ा से यानी उषा बुरांडे, अनुश्री धनुश्री बुरांडे और इंदौर से ये फरमाइश आई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और राखी कामले की। और किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन ने जी सुनी अपनी पसंद का ये नगमा फिल्म शारदा का, आवाज़ें लता मंगेशकर और आशा भोसले की।

और समय अगला नगमा आप सुनेंगे फिल्म आशियाना का। आवाज है लता मंगेशकर की, नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण और मौसीकार हैं मदन मोहन। सुनने की फरमाइश आप सबकी है। आप हैं वीरम काम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश सनी, भोपाल से चंपालाल दुबे अनंत और दक्षा दर्शित, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से स्वीटी छाबड़ा, रविंदर सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत छाबड़ा और शेरगांव गुल्डाना महाराज से संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले, मजनू कटीरा दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, कजरू अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मुमिना नाज और मुस्कान आसिफ और इनके साथी, राजगांव के अमरावती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर और अक्षय रामेकर, रामरतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, बसंत कुमार रेखा देवी अजय तनुश्री गुप्ता और नन्हे मुन्ने अंबिका बेबी बेबी, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से ये फरमाइशी बेलम तक पहुंचा है, उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल कमरा रानी और भानु प्रकाश, विजयनगर बीर शहर से विकास बंसोडे रेखा बंसोडे और आदिति बंसोडे, पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता और हार्दिक बद्दा, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी। इन्हें सुनिए अपनी पसंद का नगमा, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आशियाना।

पाली जी समय न बगला अगला नाम आप सुनेंगे फिल्म का नाम है सीआईडी। आवाजें आयशा भोसले मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की। सुनने की फरमाइश है आप सबकी रात गांव के अमरावती से अमरावती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर और अक्षय रामेकर, उत्तम नगर दिल्ली से बांद्रा आर्मा कोर्ट मुंबई से शाहीन परवीन सोनम और मारिया आयान शेख और मोहम्मद अरीफ शेख, जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी,

सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। साहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सल्ला मनवर और बेबी प्रियांशी। और ये अगली फरमाइश आई है बाबू सिंह धीमान की, और इन्होंने काफी बड़ा ईमेल भेजा है, बाद में हम इसको पढ़ेंगे, फिलहाल कुछ और नाम शामिल करते हैं। शिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री। संभल से छोटे अंसारी की फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इस्सा, खदीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक अल्ताफ। और राजधानी रायपुर से नीलम, नीलो मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार।

हमलों को इंतहाई तश्वीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाजे से है। उन्होंने इस तरह के वाकयात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खित्ते में अमन और इस्तेकाम को बहाल करने की गरज से मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। खमीजी डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी आसिम आर महाजन ने कहा कि हुकूमत मगरबी एशिया की सूरतहाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और भारतीय मिशनों से 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही है और मिशन मकामी हुकाम के साथ तालमेल कायम किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि एमटी जलवीर पर सवार अमले के सभी 22 भारतीय अफराद महफूज हैं और उन्हें बाहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि कीमियावी खाद और ईंधन की सप्लाई मुस्तकम रहेगी, इसका खातिर खा जखीरा दस्तियाब है और मुल्क की रिफाइनरीज अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं। शहरों से जोर देकर कहा जाता है कि वह घबराहट में खरीदारी से गुरेज करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनबह किया कि वह ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमले करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खार जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरैन और उर्दन में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाजे के औसत इख्तियार करने के सिलसिले में तशवीश पैदा हो गई है। इसी दौरान अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने अपनी फजाई हदूद की मुबैना खिलाफवर्जी पर सख्त एहतजाज दर्ज करने के लिए पाकिस्तान के शादी डिफेयर्स को तलब किया। इत्तेहाद मुशर्रफ के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में वाके आकाशवाणी की इमारत में मुनक्कदा एक प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ के मकाम पर वर्चुअल तरीके से 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। इस इजाफे के साथ रियासत में एफएम ट्रांसमीटरों की कुल तादाद बढ़कर 39 हो गई है। नए ट्रांसमीटर से सरहदी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो नशरियात सुनी जा सकेंगी, जिससे लोगों को वसी तर मालूमात, तालीमी मवाद और तफरीही प्रोग्राम तक रसाई हासिल होगी। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वशलम ने कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तकम करने के लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। मरकज आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सैफरी की मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलत शुरू की जा सके। इस मुआहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के वजीर आला नील फोरियु की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातिन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दो मर्तबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में ईशारानी बरुआ को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चिन सुयू से होगा एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे। तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आर्मी कप 2026 का आगाज आज मैक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम स्टाडियो एजिटिका में होगा। इसके साथ ही एक माह से ज्यादा अरसे पर मुहित इस अजीम शान मुकाबले का आगाज हो जाएगा। इब्तदाई मुकाबले के ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 पर शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार और। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरतहाल का सामना है। उन्होंने दिल्ली में नीति आयोग की

0: इस्लामी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गई। उसने अमरीका के शाज़े डीएफएस को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है और आज रात फीफा आर्मी कप 2026 शुरू हो रहा है। मेक्सिको के स्टेडियो एजटेका में पहले मैच में मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम में 1071 के ओहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। और लीजिए समय, अब सुनिए तमिल इरशाद प्रोग्राम के बाकी नगमे।

अनमोल मोती फिल्म का नामा भी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। मौसीकी तरतीब दी थी रवि ने, सुनने की फरमाइश की थी आप सबने। जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो और विलियस डिकेस्टो ने। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा और विश्व खेड़ा। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद फारूक। नागचंद रोड संडे कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर। और शेरगांव बुल्डाना महाराज से संतोष, तेजस और लोकेश। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से राजे सत्येंद्र कुमार, चंसौलिया आदर्श सार्थक और अलौकिक चंदोसिया चंसौलिया। गंजुड़वाड़ा से शमसुल कमर आई, शाहीन फातिमा और अब्दुल अदनान खान। रवनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके साथी। और अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म का नाम है रंगोली। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। मौसीकी तरतीब दी है शंकर जयकिशन ने, सुनने की फरमाइश की है आप सबने। गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिद्दा, अलका मिद्दा। और हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु और प्रतीक्षा संधु। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी खट्टक और पूजा खट्टक। और इसके अलावा ये अगली फरमाइश आई है आतिश रेडियो लिस्नर क्लब बिशनपुर गिरडी झारखंड से, इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा की। इसके अलावा बंगाली बंजर नागपुर से भारती प्रकाश अम्बाडे, जानवीर अम्बाडे और वैष्णवी हर्षा अम्बाडे। ऑक्सीजन पास राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुडाने, अर्चना ताई गुडाने और हिवामंश शिंदे। बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और कुमारी युवती। राजगांव अमरावती से श्याम किटे, वंदना किटे और कार्तिक। शासीनगर बीर शहर से किसान सबकाल, आशा सबकाल और इनके साथी। नारगढ़ छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी। महाराज से रूपेश संघाई, महेश संघाई और प्रीतेश संघाई। डीजे सुनिए अपनी पसंद का यह अगला नगमा।

मोहब्बत इसको कहते हैं, इस फिल्म का नामा भी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। अगला नामा हम आपको सुनवाएंगे फिल्म चाचा चा का। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, ये मौसिकार हैं। इकबाल कुरैशी, सुनने की फरमाइश आप सबकी। आप हैं भगवान मंजिल छोटी वलिया से नूर आयशा अहमद भगवान, इकबाल अहमद भगवान और अखलाक अहमद भगवान। जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया और इनके बहुत सारे साथी। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नागिया नासिर और साजिद शाहिद। बावन थाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता। रेलवे रोड गंजनवारा से नजमा बेगम, अहमद करीम जख्मी, बेबी फातिमा गाजी और अंकिता निकेत चौहान और तेजस्वी चौहान की फरमाइश आई है महाराष्ट्र से। पंडरपुर सिटी से यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे और ऋषि शिंदे। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से लुसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चैतन्या मस्कीन। रेलवे रोड गंजनवारा से ये रिपीट मैसेज है। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और इनके साथी। बरागवी नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा और हर्षा जेठवा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये अगला नगमा, फिल्म का नाम है चा चा चा। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

और सुमन अब आप सुनेंगे इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है मुझे जीने दो और वाजे अशा भोसले की सुनने की फरमाइश की है आप सबने। पुराना ताला अब धुमराव से वरील अंसारी, बेबी अंसारी और आसमान आज अंसारी, सुरेश चौरसिया फरमाइश आई है।

शिवा चौरसिया साहब गंजौरा यूपी से और श्रीमती सरोज चौरसिया भी हैं इनके साथ। जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और नौरीन अंसारी। और कल्पना बदंजा मानव मयंक भीलवाड़ा गुजरात से, बिलावाड़ी गुजरात से माफ कीजिएगा। और अगली फरमाइश शिमेलम तक पहुंचा है कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और रिमा सुतार। और सुशांत प्रियाजा मास्टर नवेश कुमार और लड्डू कुमारी की फरमाइशी मेल भी हम तक पहुंच चुका है। और इसी नामे को सुनने की फरमाइश आई है गोला महाराज से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, निवेश कुमारी की फरमाइश आई है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। और लाल कुर्ती रोटी कैंट से रमेश, राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभार सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह। शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा की फरमाइश आई है सब्जी मंडी बुलडाना से। और इस समय अब सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म मुझे जीने दो का नगमा। और इसी नगमे के साथ मैं नगमा आपसे इजाजत चाहूंगी।

दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के खातिन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और आज रात फीफा आर्मी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एजेटिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरतहाल और इक्तसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तां दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। वे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तहत मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया के बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तस्वीर की ताबीर की वसूलियाबी की जानब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वह एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शिनाख्त कायम कर रहा है और रियासतों को तरगीब दी कि वह इस तरक्की से रोनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वज़ा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन अशोक कुमार लहरी ने कल कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ने 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत @2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फोक के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़ीर आला ने शिरकत की। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फराइज़ अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है जो कि मुल्क के जमहूरी सफर में एक तारीखी संग मील है। सोशल मीडिया के एक सीरीज में शेख मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भारत की क्यादत करने में जनाब मोदी की मुसलसल कामयाबियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया और हालिया बरसों में मुत्तहदा अरब अमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 14 तारीख को फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं जहां वह G7 समिट में शिरकत करेंगे। आज से पहले नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि इंतहाई समर आवर और वसी तर मामला पर मुश्तमिल दौरा होगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरे में फ्रांस के 3 मकाम नाइस एवेन और पेरिस शामिल हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि इस दौरे से वज़ीर-ए-आज़म को G7 समिट में शरीक होने वाले आलमी लीडरों के साथ भारत मीज आलमी जुनूब के लिए अहमियत के हामिल मामला पर तबादले ख्याल का मौका मिलेगा। भारत ने कल अमरीका के शाज़े डी अफेयर्स को तलब किया और ओमान के साहिल से दूर पलाऊ झंडे के हामले टैंकर एंटी सेट बेलो पर हुए हमले के सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस हमले में 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलफ हुई हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने खत्ते में जहाजरानी पर जारी हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाजे से है। उन्होंने इस तरह के वाकयात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल करने की गरज से मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। खनीजी डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी आसिम आर महाजन ने कहा कि हुकूमत मगरबी एशिया की सूरतहाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और भारतीय मिशनों से 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही है और ये मिशन मकामी हुकाम के साथ तालमेल कायम किए हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि एमटी मैरीरक्स पर सवार अमले के सभी 24 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है और उनके जल्द ही भारत वापस आने की उम्मीद है। इस जहाज को इस माह की 8 तारीख को ओमान के साहिल के नजदीक निशाना बनाया गया था।

बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा कि एंटी सैट बलों से बहिफाजत निकाले गए अमले के 21 भारतीय अफराद महफूज हैं, जबकि हलाक होने वाले 3 मल्लाहों के अहले खाना को 10-10 लाख रूपये का मुआवजा मिलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसे मुतनब्बे किया है कि वह ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलआखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्ग जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दन में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खत्ते और तनाजे की वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तशवीश पैदा हो गई है। भारत और नेपाल ने दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान रकम की मुंतकली के लिए नया निजाम शुरू किया है, जिसके तहत भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस मुंसलिक कर दिया गया है। वज़ीर खजाना ने कहा कि इससे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और डिजिटल वॉलेट के जरिए बिला रुकावट महफूज और बरवक्त रकम की मुंतकली को यकीनी बनाया जा सकेगा। यूपीआई और एमपीआई के इंसलाक से दोनों मुल्कों के डिजिटल और इकतसादी रिश्तों में मजबूती आएगी, सयाहों को सहूलत मिलेगी और मकामी ताजिरों को जल्द अदायगी और नकद रकम पर कम से कम इन्हिसार जैसे फायदे हासिल होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने मालदीव के लिए खसरे के 20,000 टीके और तकरीबन 3 टन मेडिकल साजो सामान रवाना किया है, ताकि मालदीव की टीकेकारी की मुहिम को मुस्तहकम करने और अवामी सेहत को तहफ़ फराहम करने की उसकी कोशिशों को ताउन दिया जा सके। वजारत खारजा ने कहा कि इस इमदाद से मालदीव में खसरे के बढ़ते हुए मामला से निपटने में मदद मिलेगी और मालदीव की हुकूमत के जवाबी इकदाम को फरोग हासिल होगा। अफगानिस्तान में अक्वामे मुत्तहदा की इमदादी कमीशन ने मशरकी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद जंग की शोरिश में कमी करने और एक पायदार जंगबंदी करने पर जोर दिया है। इन हमलों में ख्वातीन और बच्चों समेत मुबैना तौर पर 13 शहरी हलाक हुए हैं। यूएनएएमए ने कहा कि घोष्ट, कुमार और पक्तिका सुबह में 9 और 10 जून की रात किए गए इन हमलों में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अक्वामे मुत्तहदा के मिशन ने तमाम फरीकीन पर जोर दिया कि वो कशीदगी को कम करें, शहरों की हिफाजत करें और इंसानी बुनियाद पर की जाने वाली इमदाद और मुजाकरात की राह हमवार करने के लिए सरहदों पर आमदोरफ्त को दोबारा शुरू करें। इसी दौरान अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने अपनी फजाई हदूद की मुबैना खिलाफवर्जी पर सख्त एहतजाज दर्ज करने के लिए पाकिस्तान के चार्ज शाजी डी एफर्स को तलब किया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दो मरतबा की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशानी बुरवा को 22-21, 21-12 से शिकस्त दी। एक और प्री क्वार्टर फाइनल में जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आर्मी कप 2026 का आगाज आज मैक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम एस्टेडियो एस्टेका में होगा। इसके साथ ही एक माह से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस अजीम शान मुकाबले का आगाज हो जाएगा। इफ्तिताही मुकाबले में मैक्सिको का सामना जनूबी अफ्रीका से होगा। यह मैच आज रात 12:30 पर शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार और। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरतहाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गई। उसने अमरीका के शाज़ डी एफर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये नगमा सुना। फिल्म का नाम था महल। मौसीकी तरतीब दी थी किरणचंद प्रकाश ने। अगला नगमा आप सुनेंगे शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है चांदनी रात। नगमे के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और मौसीकी तरतीब दी है नौशाद ने।

लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा भी आपने सुना। फिल्म का नाम था बरसात। नगमा निगार थे हसरत जयपुरी और मौसीकार थे शंकर जयकिशन। और लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है एक थी लड़की। आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और जी एम दुर्रानी की।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और फीफा आलमी कप 2026 का आगाज हो गया है। मैक्सिको के स्टेडियो एजेटिका में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इफ्तिताही मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरतहाल और इकतसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तां दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तहत मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तस्वीर की ताबीर की मसलियाबी की जानी पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाही जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वह एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इस ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत आमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शिनाख्त कायम कर रहा है और रियासतों को तरगीब दी कि वह इस तरक्की से रोनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वज़ा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन अशोक कुमार लहरी ने कल कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में 2047 तक भारत विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत @2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादले ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़ीर आला ने शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फराज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है जो कि मुल्क के जमहूरी सफर में एक तारीखी संग मील है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 14 तारीख से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं जहां वह G7 समिट में शरीक होंगे। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि इंतहाई समर आवर और उसी तरह मामला पर मुश्तमिल दौरा होगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरे में फ्रांस के 3 मकाम नाइस एवियान और पेरिस शामिल है। सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि इस दौरे से वज़ीर-ए-आज़म को G7 समिट में शरीक होने वाले आलमी लीडरों के साथ भारत मीज आलमी जुनूब के लिए अहमियत के हामिल मामलात पर तबादले ख्याल का मौका मिलेगा। भारत ने कल अमरीका के शाजिद एफर्ट्स को तलब किया और ओमान के साहिल से दूर प्राऊ झंडे के हामिल टैंकर एंटी सेट बेलो पर हुए हमले के सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस हमले में 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलफ हुई हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने खत्ते में जहाजरानी पर जारी हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाजा से है। उन्होंने इस तरह के वाकयात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल करने के गरज से मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया कि वह ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा जिसमें खर्ग जजीरे का आयल टर्मिनल शामिल है। यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरैन और उर्दन में निशाना

0: सरकारों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: टॉपिक फॉर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा। टू वर्किंग लाइफ टू ओल्ड एज।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कुशल वैश्विक ढांचे पर आधारित संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां दोनों साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता के परिणाम विकासशील देशों और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ देशों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उबरने में समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक लचीली, समावेशी और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने और साझा विकास के साझा समाधान आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक मैक्सिको एक गोल की बढ़त बना चुका था। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. During the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting.

गालियां दो। लो चली मैं यहाँ से अजी हो हो, मन मन में हमें न गालियां दो। लो चली मैं यहाँ से अजी हो हो।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये प्यारा सा गीत आइए सुनते हैं फिल्म हमराही से।

इसी के साथ श्रोताओं गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आगे सुनते हैं ये अंतिम गीत श्री 420 से लता मंगेशकर और मन्ना डे की मधुर आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति

0: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा में उन्होंने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के दुष्परिणाम कम करने और अनुकूल कूटनीतिक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत के ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और ये कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता से इतर विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच के सिलसिले में हरियाणा के विकास एवं पंचायत निदेशक कार्यालय के तत्कालीन अधीक्षक नरेश कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और 2 निजी स्कूलों के खातों से 645 करोड़ रूपये की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे रविवार तक 4 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by RS Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said, the theme covers all aspects of life including education, health and employment. President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. The Ministry of Panchayati Raj has said that 4 Panchayati Raj related initiatives have been selected for the National Awards for E-Governance 2026. ministry said that it highlights

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत के विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया।

0: क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एम्प्टी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 4 उम्मीदवार कल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवार तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के बश्यम रामकृष्ण, सना सतीश बाबू और चिंत कयाला विजय तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर आर वनिता रानी ने उनके चुनाव की घोषणा की। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि जैव औषधीय उत्पाद आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार दे रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम द्वारा आयोजित द्वितीय फार्मा शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत वर्ष 2047 तक जीवित जीवों से प्राप्त होने वाले सामग्री से बनाई जाने वाली 100 बायोलॉजिक्स आरंभ करने की योजना है, जो विकसित भारत और स्वस्थ भारत के दृष्टि योजना में योगदान देंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including health, education and employment. UN Finance Minister Nirmala Sitharaman has participated in the virtual meeting on Global Convergence for Growth Summit from New Delhi. Ministry of Finance in a social media post said that the summit was held to bring together leaders of advanced and emerging economies to discuss ways of supporting a balanced growth anchored in an efficient global framework. French President Emmanuel Macron presided over the summit. During her intervention at the summit representing India, Ms. Sitharaman said that in today's interconnected world, prosperity and challenges are shared, but the consequences of conflicts and uncertainty falls disproportionately on developing countries and the global south. She noted that the situation demands coordinated global action. President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun.

0: हमें आप सुनाए थे गजलें जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

समाप्त करेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना स्वर चेतकला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4:20 हुए हैं। आइए सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनाने जा रहे हैं गायन। कलाकार है TK रामाचार्य। आपने प्रस्तुत किया है रागम शंकर भरणम जो मिश्र चापोताल में निबद्ध है। आपके साथ वायलिन पर संगत किया है M चंद्रशेखरन ने। तो लीजिए सुनिए TK रंगचारी का गाया राग शंकर भरणम।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टी के रंगचारी का गाया रागम शंकर वर्ण वैभम, जो मिश्र चापुताय में निबद्ध था। आगे सद्वलन पर संगत किया एम चंद्रशेखरन ने। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। सुबह की 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की ही जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग, भ्रामरी, प्राणायाम और भुजंगासन। पांच बजकर 20 मिनट पर देशभक्ति गीत आप सुन सकेंगे। 5:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगी अम्रपाली, आपने प्रस्तुत आप सुन सकेंगे राग ललित। भक्ति संगीत का कार्यक्रम मंदना प्रसारित किया जाएगा और 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत के विचार। रामचरितमानस से पाठ इस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 84। मिनट पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज आपको आलोक कुमार झा के गाये

0: गाने सुनाए जाएंगे। गीतो भरी गुड मॉर्निंग, ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:30 बजे। ₹8:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरगंगा प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज सुनेगा गायन पंडित गोस्वामी गोकुल लोचसर जी का, और आपने प्रस्तुत किया है राग गुजरी तोड़ी। 9:15 पर गांधी चर्चा सुनाई जाएगी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय रहेगा स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। वार्ताकार होंगी मधु शर्मा। 9:30 पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक प्रसारित की जाएगी, प्रस्तुत करेंगे जसपाल कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर सेवरेज प्रसारित किया जाएगा सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे चंद्रन नाथ भट्टाचार्य का सितार वादन, आज होगा राग भीम पलासी। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, भरम नहीं हारिया, सिखी के सासवासा नाल निवाही, तना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, चेते आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षे आरे आए ता, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले।

विवेकदान विसहदान परोसादान दान सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री नानकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरु धामा दे जिना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शा हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु।

समूह संगत अते टहलियां दी अरदास। सतगुरु जीओ सर्वत साध संगत नु अपने दरों घरों सिखी सदका परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर करा प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਆ ਸੋ ਪਲ ਪਾਏ ਸੀ।

गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर्तन न जाई, धोती टिका तय जब मारी ताल में छा खाई, अंतर पूजा पड़े कते बा संयम तुरका पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा मोहल्ला पहला। मानस खाने करे नवाज छुरी वगायन तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे ओई सर, कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म शर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर, मथे टिका फेर धोती को खाई, हथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैरो परवान, मलेश धान लै पूज है पुराण, पाखिया का कुठा बकरा खाना, चौकी ऊपर कसे ना जाना, देखे चौका कड्डी कार पर बैठे कूड़े यार, मत पिटे वे मत पिटे हुआ न साडा फिटे, तन फिटे फिर करेन मन जूटे चुली करेन, कहो नानक सच त्याई है, सच हो वे ता सच पाई पौड़ी चते।

ਸੁਖਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਤਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਤਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏ।

जय महाकाल कर्म है कर्म पितरी दे वत सियाणिए पितरी चोर करे वडिये हथ लाल के मुसपिए करे नानक के सो मिले जे खटे काल दे मोहला पहला जोन जोर सुनावनी आवे वार वार झूठा झूठा मुख वसै।